मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, DRM 1233 किलोहर्ट्स, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, वेब्स OTT पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 48 सेकंड हो रहे हैं। आरंभ हो रही है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहाँ समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहाँ हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4वां वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित

0: जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में एफआईएच प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। खेती की बातें कार्यक्रम में आइए सुनते हैं तिल की खेती विषय पर दिनेश कुमार सिंह से ये जानकारी।
2: किसान भाइयों, आज हम तिल की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी बुआई का सही समय जुलाई माह का दूसरा पखवाड़ा है, अतः आप सही समय पर इसकी बुआई करें। खेत तैयार करते समय यह बात ध्यान दें कि खेत की मिट्टी मध्यम किस्म की हो और उसमें फालतू पानी के निकासी की पूरी व्यवस्था हो। बरसात के मौसम में बुआई करते हैं, अतः जब खेत जोतने लायक हो तो 3-4 बार जोतकर खेत तैयार कर लेते हैं। तिल की फसल को जिन उर्वरकों की आवश्यकता होती है उन्हें हम 2 बार में प्रयोग करते हैं, एक तो खेत की तैयारी करते समय और दूसरा खड़ी फसल में पहली बार निराई गुड़ाई के बाद। खेत की तैयारी के समय जो उर्वरक देते हैं उसे कोण में और जो उर्वरक खड़ी फसल में देते हैं उसे भूरख कर प्रयोग करते हैं। जहाँ तक उर्वरक की मात्रा का प्रश्न है तो उर्वरक की सही मात्रा तो मिट्टी की जांच कराने से ही मालूम होती है। उर्वरक देने का सबसे सही तरीका यही है और यदि मिट्टी की जाँच न करा सकें तो तिल की फसल के लिए जो सामान्य मात्रा वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित की गई है उसे प्रयोग करें। यदि मिट्टी की जांच कराए हैं तो उस अनुसार और यदि मिट्टी की जांच नहीं कराए हैं तो तत्व के रूप में 6 किलोग्राम नत्रजन और 6 किलोग्राम फास्फोरस, कहने का मतलब ये कि लगभग 14 किलोग्राम यूरिया और 36 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट खेत की तैयारी के समय और 14 किलोग्राम यूरिया पहली निकाई के बाद टॉप ड्रेसिंग करते हैं। खेत की तैयारी हो जाने के बाद अच्छी प्रजाति वाला बीज लेकर फिर बुआई करते हैं। तिल की उन्नतशील प्रजातियों में टाइप 4, टाइप 12, टाइप 10, टाइप 78, टाइप 32 और शेखर प्रमुख हैं। इनमें से जो भी प्रजातियां मिल जाएं लेकर के बुआई करें। 1 हेक्टेयर में बुआई हेतु 3 से 4 किलोग्राम बीज लगता है, कहने का मतलब ये कि 1 बीघा जो कि 20 बिस्वा का होता है उसमें 1 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। बीज से फैलने वाले रोगों से फसल को बचाने के लिए इसे थीरम दवा से शोधित करते हैं। 1 किलोग्राम बीज के शोधन के लिए 2.5 ग्राम थीरम दवा पर्याप्त होती है। बीज शोधन के बाद उसकी बुआई करते हैं। बुआई हल के पीछे कोणों में और बीज कम गहराई पर बोने चाहिए। कोण से कोण की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1 से 1.5 फीट होनी चाहिए। बरसात की फसल होने के कारण वर्षा होने पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, किंतु फसल में जब लगभग 25 से 30% फली लग जाए और खेत में नमी की कमी हो तो उस समय एक हल्की सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। जहाँ तक तिल की फसल में निकाई की बात है तो इसमें पहली बार उस समय निकाई करते हैं जब पौधे 20 से 25 दिन के हो जाते हैं। इससे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, इससे पौधों को अधिक खुराक मिलती है तथा गुड़ाई हो जाने से मिट्टी में वायु संचार बढ़ता है जिससे मिट्टी के जीवाणु सुचारू रूप से अपना कार्य करते हैं और पौधा स्वस्थ रहता है। इसी निकाई के समय एक कार्य और करना चाहिए, जो पौधे ज़्यादा घने हो गए हों उन्हें उखाड़कर स्वस्थ पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर निर्धारित कर देनी चाहिए। पौधे जब 30 से 35 दिन के हो जाएं तो एक बार एक और निकाई कर देनी चाहिए। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान

0: में रखकर तिल की खेती करनी चाहिए।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में आप सुन रहे थे तिल की खेती विषय पर दिनेश कुमार सिंह से ये जानकारी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आइए सबसे पहले भगवान शिव शंकर की आराधना करते हैं जिससे हमें सच्चा सुख मिलता है। शिव ही सत्य है, परम शक्ति है और सुंदर है और हमारी रक्षा करते हैं।

सृष्टि का सृजन पालन एवं दुष्टों का संहार करने वाली शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बे की असीम कृपा जिस पर हो जाती है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए हम सभी माँ के भक्तजन श्रद्धा भक्ति भाव से माँ की आराधना करते हैं।

सांसारिक मोहमाया से विरत होकर भक्ति करना प्रभु और भक्तों के बीच का सच्चा प्रेम ही सच्ची भक्ति है। श्रद्धा के साथ प्रभु की सच्ची भक्ति से ही सच्चा सुख मिलता है।

आराधना कार्यक्रम में आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल, नरेंद्र चंचल और पंडित भीमसेन जोशी के गाए भजन। हम आकाशवाणी की वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजियारा फैलाएंगे। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई।

0: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है आज का विचार बिंदु।
1: संत कबीर परमात्मा को मित्र, माता, पिता और पति के रूप में देखते हैं। वे कहते हैं, हरि मोर पीऊ मैं राम की बहुरिया, और कहीं कहते हैं, हरि जननी मैं बालक तोरा। कबीर ने अपने पंथ को इस ढंग से सुनियोजित किया जिससे जन भावना सहज ही उनकी अनुयायी हो गई। उन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबोध रखी ताकि वो आम आदमी तक पहुंच सके। कबीर को शांतिमय जीवन प्रिय था और वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव और संत प्रवृत्ति के कारण आज भी अखिल विश्व में उनके विचारों को मानने और आदर देने वाले बड़ी संख्या में मौजूद हैं। कबीरदास के पदों में जो महान प्रकाश पुंज है वो बौद्धिक आलोचना का विषय नहीं है, वो संग्रहालय की चीज नहीं है, बल्कि जीवित प्राणवान वस्तु है। कबीर पर पुस्तकें बहुत लिखी गई हैं और भी लिखी जाएंगी, पर ऐसे लोग कम ही हैं जो उस साधना की गहराई तक पहुंच सकें। कबीर दास की सच्ची महिमा तो कोई गहरे में गोता लगाने वाला ही समझ सकता है। उन्होंने स्वयं अरूप को रूप देने की चेष्टा की थी, परंतु वो स्वयं कह गए हैं कि ये सारे प्रयास तभी तक थे जब तक कि परम प्रेम के आधार प्रियतम का मिलन नहीं हुआ था। साखी, पद, शब्द और दोहे उसी प्राप्ति के साधन हैं, मार्ग हैं। कबीर का आध्यात्मिकता से गहरा संबंध था। मोहसिन फानी की दबिस्तान और अबुल फजल की आईना अकबरी में उन्हें मुहाविद बताया गया है, यानी एक ईश्वर में विश्वास रखने वाला। प्रभाकर माचवे की पुस्तक कबीर की प्रस्तावना में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि कबीर राम के भक्त थे, लेकिन विष्णु के अवतार के रूप में नहीं। उनके लिए राम किसी भी व्यक्तिगत रूप या गुण से परे हैं। कबीर का अंतिम लक्ष्य एक परम ईश्वर को प्राप्त करना था जो बिना किसी गुण के निराकार है, जो समय और स्थान से परे है, जो कारण कार्य संबंध से भी परे है। कबीर का ईश्वर ज्ञान है, आनंद है, उनके लिए ईश्वर शब्द है। जाके मुह माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, पुहूप बासथय पातरा ऐसा तत्व अनूप। कबीरदास जी ब्रह्म अर्थात ईश्वर के निराकार स्वरूप का बखान करते हुए कहते हैं कि ब्रह्म यानी ईश्वर तो निर्गुण है और निराकार है। उसके ना तो कोई मुंह है और ना ही उसका कोई रूप है। वो ना तो सुंदर है ना ही कुरूप है। उसे छुआ भी नहीं जा सकता, लेकिन महसूस किया जा सकता है। वो फूल की सुगंध से भी बारीक है और सर्वत्र व्याप्त है। जिसकी सुगंध सर्वत्र महसूस की जा सकती है वो एक ऐसा अनुपम तत्व है। कबीर के आध्यात्मिक अनुभव और उनकी कविताओं को अलग नहीं किया जा सकता। वास्तव में वे सचेत रूप से अपनी कविताएं नहीं लिखते थे, यह उनकी आध्यात्मिक खोज, उनका परमानंद और उनकी पीड़ा थी जिसे उन्होंने अपनी कविताओं में व्यक्त किया है। कबीर हर तरह से एक असाधारण कवि हैं और उनकी कविताओं का सदियों से मौजूद रहना उनकी महानता का प्रमाण है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रो दे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोह। कबीर जी की शिक्षाओं ने कई व्यक्तियों और समूहों को आध्यात्मिक रूप से प्रभावित किया। गुरु नानक देव, दादू पंथ की स्थापना करने वाले अहमदाबाद के दादू, सतनामी संप्रदाय की शुरुआत करने वाले उनमें से कुछ हैं जो अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शन में कबीर दास को उद्धृत करते हैं। उनके अनुयायी उन्हें मोक्ष और मार्गदर्शन करने वाला गुरु मानते हैं। कबीर पंथ अलग धर्म नहीं बल्कि आध्यात्मिक दर्शन है। कबीर दास ने अपने दोहों के माध्यम से जीवन जीने की कई सीख दी है। इनके दोहे अत्यंत सरल भाषा में हैं, जिसके कारण उन दोहों को कोई भी आसानी से समझ सकता है। कबीरदास न सिर्फ एक संत थे बल्कि वे एक विचारक और समाज सुधारक भी थे। उनकी रचनाएं आज भी मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाती हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी

0: भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूं शीतल होए।
1: ये था आज का विचार बिंदु। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा में आइए सुनते हैं जन्मजात हृदय रोग कारण और बचाव के उपाय विषय पर डॉक्टर प्रतिभा राय से ये जानकारी।
2: ऑयल जो होते हैं उनकी कॉस्ट 2000 पर लीटर 3000 पर लीटर भी होती है, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बेस्ट होगा आप जो भी ऑयल यूज करें ये कोशिश करें कि ऑयल का रीयूज नहीं होना चाहिए। एक बार ऑयल यूज किया जो बचा है उसको डिस्कार्ड मतलब फेंक देना चाहिए। मस्टर्ड ऑयल, घी सब कुछ अच्छा है, इम्पॉर्टेंट चीज है ऑयल का रीयूज नहीं होना चाहिए। और कोशिश करें कि कम से कम तेल में बने। और कोई भी चीज डीप फ्राइड होगी तो ज्यादा डैमेजिंग होती है। अगर आप एवरेज फ्राइड या बॉयल खा रहे हैं तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट मॉडरेट अमाउंट हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई भी चीज मॉडरेट अमाउंट में होनी चाहिए। और शुगर इनटेक हमेशा लिमिटेड होना चाहिए। खाने के बारे में हमने पहले बोला शुगर लिमिटेड, मॉडरेट अमाउंट का घी बेटर है कहीं भी ज्यादा हायर अमाउंट ऑफ शुगर से। आप तीसरी चीज बात करेंगे तो कोशिश करें कि आप फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, डीप फ्राइड आइटम कम से कम करें। और ये जो लाइफस्टाइल है हमारी जिसमें आप एक्सरसाइज का टाइम फिक्स नहीं कर पाते तो ठीक है, रिकमेंडेड है मॉर्निंग बेटर है, कुछ जो स्टडीज है वो बोलती इवनिंग बेटर है। मेरा कहना है आपको जब भी टाइम मिले आप इन्वॉल्व होइए फिजिकल एक्टिविटीज में, कभी भी है वो हेल्थ के लिए नहीं करने से तो बेटर होता है। दूसरी चीज कोशिश करिए आपकी लास्ट मील जो है इवनिंग की 7 or 8 o'clock पे हो जाए। इमीडिएटली खाने के बाद सोना नहीं जाना चाहिए, थोड़ा वॉकिंग है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो फिर भी इमीडिएटली सोने ना जाएं। और छोटी छोटी मील्स ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये कहना कि राइस से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है या चपाती ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीज मॉडरेट अमाउंट में होनी चाहिए। और हर एरिया का डाइट अलग है, आप बहुत सारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब में वीडियो देख के इमीडिएटली वो सब डाइट चालू नहीं करें। आपकी जो नेटिव इंडिजिनस डाइट है उसी को खाएं, उसी को सही से पकाएं, कम ऑयल का यूज करें, कम शुगर इंटेक करें तो आई थिंक वो बेस्ट है। जब भी हार्ट डिजीज या हृदय रोग के बारे में बात करते हैं तो आप ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं वो जो पैदा होने से बच्चे के साथ है जिसको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है बोलते हैं, और दूसरा होता है एक्वायर्ड हार्ट डिजीज जो विद टाइम बच्चे या बड़े को आती है उनकी गलत शैलियों के वजह से। सो आज का फोकस है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के डाटा के हिसाब से हर 1000 पैदा हुए बच्चे में 8 से 10 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है। इसको ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक वो डिजीज जिसमें बच्चा नीला पड़ता है और एक वो जिसमें बच्चा नीला नहीं पड़ता है। पैदा हुए 1 दिन के बच्चे में भी ये नीलापन दिखता है और नहीं तो ज्यादातर 6 महीने से 1 साल के बीच में वो नीलापन दिखने लगता है। तो देखिए इसको 2 पार्ट में आप बोल सकते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना मतलब डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप का यूज करके देखेगा, दूसरा बच्चे की इकोकार्डियोग्राफी। जो मोस्ट डेफिनेटिव टेस्ट है इन सब डिजीजेस का वो है इकोकार्डियोग्राफी, जो एक ट्रेन बंदे से ही करवाना बेटर रहता है, नहीं तो बहुत सारी डायग्नोसिस मिस हो जाती है और बाद में पता लगती है। तो एक तो हमने आपको बताया बच्चा जिसमें नीला पड़ता है, अगर आपका बच्चा नीला नहीं पड़ रहा है और बच्चा अपनी एज के कम्पेरिजन के बच्चों में आपको कमजोर दिखता है, बच्चे का वेट नहीं बढ़ता है और छोटे बच्चे अगर हैं 1 साल के नीचे तो माँ की कंप्लेन रहती है बच्चा दूध नहीं पीता है या पी के बीच में छोड़ देता है, या तो बच्चे के माथे पे पसीना आता है दूध पीते समय, या बच्चे को निमोनिया हो रहा है, या बच्चा आपको सुस्त दिखता है। अगर ये सब कोई भी सिम्टम आपको लगते हैं तो आपको जरूर से इवेल्युएट करवा लेना चाहिए अपने पीडियाट्रिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट से। देखिए जो हमने इकोकार्डियोग्राफी की बात की तो आजकल एक कॉन्सेप्ट है फीटल इकोकार्डियोग्राफी, जिसमें 18 से 22 सप्ताह के बीच में मां के पेट के अंदर बच्चे के हार्ट की जांच की जाती है। बट उसके स्पेसिफिक इंडिकेशंस है, वो सारे लोगों में प्रिस्क्राइब नहीं होता है। ऑब्स गायनी के हिसाब से अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम लगती है तो वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास फीटल इको करने के लिए भेजते हैं। बट आप ब्रॉडली देखेंगे तो अगर मदर को डायबिटीज है या कोई फैमिली में आपकी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की हिस्ट्री रही हो, या तो आजकल IVF से जो बेबीज होते हैं वो प्रेशियस प्रेगनेंसी होती है, उन सब कंडीशन में हम ज्यादातर बोलते हैं कि हर पेरेंट को 18 to 22 weeks के बीच में फीटल इको करवा लेना चाहिए। फीटल इको बहुत डेफिनेटिव टेस्ट नहीं है, बट सारी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन मतलब जो इमीडिएटली डिलीवरी के बाद बच्चे की जान जाने वाली जो भी बीमारियां हैं वो ज्यादातर टाइम पता लग जाती हैं।
1: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आप सुन रहे थे जन्मजात हृदय रोग कारण और

राजा दशरथ के महलों में नववधुओं के स्वागत सत्कार तथा अन्य विधियों की समाप्ति के साथ रात्रि का आगमन होता है। सभी कुमार उनीदे हो रहे हैं, किंतु माताओं की जिज्ञासा का अंत होता नहीं दिखता। राम लक्ष्मण जैसे सुकुमार बालकों ने किस प्रकार ताड़का जैसी भयानक राक्षसी तथा मारीच और सुबाहु जैसे बलशाली राक्षसों का वध किया होगा, किस प्रकार ऋषि मुनियों के यज्ञ में डाली जाने वाली विघ्न बाधाओं का नाश करके दोनों किशोरों ने गुरु कृपा से विद्या पाई। जिज्ञासाओं का अंत नहीं। दीर्घ अवधि के बाद पुत्रों का मुख देखकर माताएं हर्ष ममता जनित उद्गार तथा तृप्ति से ओतप्रोत हो रही हैं। अपने विनय भरे वचन से माताओं के प्रश्नों के उत्तर देकर श्रीराम उन्हें संतुष्ट करते हैं तथा गुरु और ब्राह्मणों के चरणों में सिर नवाकर नींद की गोद में विश्राम करने लगते हैं।

श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ का प्रसारण आप आकाशवाणी की वाराणसी केंद्र से सुन रहे थे। गायक कलाकार थे कविता कृष्णमूर्ति। कार्यक्रम विवरण में आइए हम आपको जानकारी देते हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सुबह 7:31 पर पंडित डी.के. दातार का वायलिन वादन, दिन में 12:45 पर सुनिए पद्मा तलवरकर का गायन और रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के ही कार्यक्रम में आप सुनिएगा उस्ताद जाकिर हुसैन का एकल तबला वादन। गुड मॉर्निंग बनारस सुबह 7:00, मधुरिमा सुबह 8:45 पर, झंकार सुबह 10:00। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत सुनिएगा दिन में 11:00 और दिन में 1:30 सुनेंगे फरमाइशी गीत एक्सप्रेस।

दिन में 12:30 पर सुगम संगीत में रश्मि चौधरी के गाए गीत और भजन आप सुनेंगे और रात्रि 8 बजे देवेंद्र दास के गाए कबीर भजन सुनेंगे।

दिन में 12 बजे सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। दिन में 1:15 बजे महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। शाम 5:15 बजे युवाणी कार्यक्रम में युवा साथी सुनेंगे आज की बात। ऋषिता चौरसिया की वार्ता होगी महिला सशक्तिकरण में सरकारी योजनाओं की भूमिका। यूथ डायरी इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और सुनिएगा गीत संगीत।

शाम 6:30 पर किसान भाई कृषि जगत में धान की फसल में लगने वाले रोग विषय पर सुनेंगे डॉक्टर संतोष कुमार की बातचीत, साथ ही होगा सुनील कुमार यादव का गाया लोकगीत। सुनील कुमार यादव के गाए लोकगीत आप सुबह 9:50 पर और दिन में 1:45 पर भी सुनिएगा।

कार्यक्रम विवरण में आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

0: ने ये ठाना है भारत को स्वच्छ बनाना है।
1: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6:55 हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगड़े। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सेशल्स देशस्य राष्ट्रीय दिवसस्य स्वर्ण जयंती समारोहे मुख्य अतिथि रूपेण भागं गृहीतवान्। भारतीय सैनिक बलस्य अथ नौसेना बलस्य दलानि अपि अस्मिन् पथ संचलन कार्यक्रमे भागं गृहीतवन्तः। अस्मिन् अवसरे श्री मोदी सेशल्स देशस्य नागरिकेभ्यः भारत परं वर्धापनं प्रकटितवान्। विक्टोरिया इत्यत्र राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तानन्तरं श्रीमोदी उक्तवान् यत् भारतं तादृशीं हिन्द महासागरस्य कल्पनां करोति यत्र समुद्रीय सुरक्षया सह आर्थिक समृद्धिरपि सुनिश्चिता स्यात्।
3: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
2: पर्यावरण संरक्षणस्य सतत विकासस्य च नेतृत्वाय सेशल्स देशेन प्रधानमन्त्रिणे श्री नरेन्द्र मोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च सम्मानः गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजन प्रदत्तः। सेशल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन प्रदत्तः अयं पुरस्कारः स्थायी अभिवृद्ध्यर्थं प्रधानमन्त्रिणः दीर्घकालीन संबलस्य तस्य हरितदृष्टेः च प्रतीकः वर्तते। श्रीमोदी जलवायु परिवर्तनस्य समाह्वानानां विरुद्धं संघर्षं कुर्वतां राष्ट्राणां कृते एतं पुरस्कारं समर्पितवान्। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी सेशल्स देशे ह्यः मारिशस् देशस्य समकक्षेन डॉ नवीन चन्द्र रामगुलामेन सह मिलितवान्। द्वावपि नेतारौ भारतस्य मारिशसस्य च वर्तमान सहकार्यस्य विषये चर्चां कृतवन्तौ। भारतेन प्रदत्त विशेष आर्थिक अनुदानस्य कार्यान्वयनस्य प्रगतेः अपि तौ समीक्षां कृतवन्तौ। द्वावपि नेतारौ भारतस्य विजन महासागर इत्यस्य तथा नेबरहुड फर्स्ट इति नीतेः अन्तर्गतं भारत मारिशस् वर्धित रणनीतिक सहयोगस्य महत्वस्य विषये वैश्विक दक्षिणस्य प्रति तेषां प्रतिबद्धतायाः विषये च सहमतिं प्रकटितवन्तौ। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक प्रकरणे भिवांडी नगरस्य सत्र न्यायालयेन त्रयाणां आरोपिणां कृते 6 जुलाई पर्यन्तं बन्धनं विहितम्। आरक्षि अन्वेषकाः अन्ताराज्य परीक्षा तस्कराणां संलग्नतायाः शंकां कृतवन्तः। भिवांडी आरक्षिणः न्यायालयं निवेदयन् यत् आरोपी दिल्लीतः भिवांडीनगरं गत्वा उक्त टीईटी प्रश्नपत्रं 1,50,00,000 रूप्यकेषु विक्रीतवान्। आरक्षि अन्वेषकाः लीक कृतस्य कागदस्य स्रोतः अन्वेष्टुं वित्तीय व्यवहारस्य परीक्षणं कर्तुं महाराष्ट्रे अन्यत्र कागदं विक्रीतम् अस्ति वा इति ज्ञातुं तस्कर समूहस्य अन्येषां सदस्यानां परिचयं कर्तुं च 10 दिनानां आरक्षि अभिरक्षणं याचितवन्तः आसन्। अधिकारिणः अवदन् यत् अन्वेषणेन अन्तर्राज्यस्य राष्ट्रियस्तरस्य च जालस्य संलग्नता ज्ञाता वर्तते। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अद्य नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण परिषदः 16 सम्मेलने समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमस्य विमोचनं करिष्यति। श्री नड्डा अस्मिन् एव सम्मेलने अनीमिया मुक्त भारत अभियानस्य परिचालना मार्गदर्शिकाः अपि विमोचयिष्यति। एनीमिया मुक्त भारत अभियानम् इत्ययं कार्यक्रमः भारतस्य एनीमिया विरुद्ध युद्धे महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल संयुक्त राज्य भ्रमण से समाप्ते अनंतरम ग्रीस देश से एथे

हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, हम सब

गुड मॉर्निंग बनारस। हे बनारस, गुड वाला मॉर्निंग। क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ट्यून किया है आपने अपना फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहा के साथ। और बनारस, सुबह का समय है। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सुबह पानी पीने की अच्छी आदत अपनाते होंगे, और ज्यादातर भारतीय घरों में सदियों से तांबे के बर्तन में पानी रख और पीने की परंपरा चली आ रही है। आयुर्वेद में भी तांबे के पात्र में रखा पानी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना गया है। माना जाता है कि तांबे के बर्तन में 6 से 8 घंटे तक रखा गया पानी कॉपर आयन ग्रहण कर लेता है, जो शरीर को कई तरीके के फायदे पहुंचा सकता है। हालांकि किसी भी अच्छी आदत की तरह इसका भी सही तरीके से पालन करना बेहद जरूरी है। अगर तांबे के बर्तन का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाए तो ये स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। तांबे के बर्तन में रखा पानी सीमित मात्रा में और सही तरीके से पीना चाहिए। तो आइए जानते हैं वो गलतियां जिन्हें हमें करने से बचना चाहिए। उसमें से सबसे पहला है कि लंबे समय तक तांबे के बर्तन में पानी ना रखें। कई लोग एक बार पानी भरकर कई दिनों तक उसी बर्तन का इस्तेमाल करते रहते हैं। ये आदत सही नहीं मानी जाती। विशेषज्ञों का कहना है कि तांबे के बर्तन में पानी 6 से 12 घंटे तक रखना पर्याप्त होता है। ज्यादा लंबे समय तक रखा पानी पीने से शरीर में कॉपर की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ सकती है, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकती है। साथ ही खट्टी चीज तांबे के बर्तन में बिल्कुल भी ना रखें। तांबे के बर्तन में नींबू पानी, इमली का पानी, सिरका, संतरे का जूस या कोई और खट्टी चीज रखने से बचना चाहिए। खट्टे तत्व तांबे के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया कर सकते हैं, जिससे हानिकारक यौगिक बनने की संभावना रहती है। ऐसे पदार्थों का सेवन पेट संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है, और कुछ लोग ये सोचकर पूरे दिन सिर्फ तांबे के बर्तन का पानी पीते रहते हैं कि इससे ज्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी चीज की अधिकता नुकसान पहुंचा सकती है। रोजाना सीमित मात्रा में ही तांबे के बर्तन का पानी पीना चाहिए। शरीर में कॉपर की अधिकता होने पर मिचली, पेट दर्द और उल्टी जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। साथ ही तांबे के बर्तन की समय समय पे सफाई भी करना बेहद जरूरी है। अगर बर्तन की सफाई नहीं की जाती तो उसकी सतह पर हरे या काले रंग की परत जम सकती है। ये परत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। तांबे के बर्तन को साफ करने के लिए नींबू और नमक या बाजार में मिलने वाले कॉपर क्लीनर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सफाई के बाद बर्तन को अच्छी तरीके से धोना भी जरूरी है, और तांबे के बर्तन में पानी भरते ही उसे पी लेना फायदेमंद नहीं माना जाता। पानी को कुछ घंटे तक बर्तन में रहने देना चाहिए ताकि उसमें कॉपर आयन पर्याप्त मात्रा में मिल सके। ज्यादातर रात भर पानी रखकर सुबह पीना बेहतर माना जाता है, और जिन लोगों को पहले से लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या शरीर में कॉपर के स्तर से जुड़ी कोई चिकित्सीय स्थिति है, उन्हें तांबे के बर्तन का पानी नियमित रूप से पीने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी संतुलित मात्रा में ही इसका सेवन उचित माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो तांबे के बर्तन का पानी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकता है, लेकिन इसके उपयोग से जुड़ी छोटी छोटी सावधानियों को नजरअंदाज करना फायदे की जगह नुकसान का कारण बन सकता है। इसलिए तांबे के बर्तन का इस्तेमाल सोच समझकर और संतुलित तरीके से करना ही बेहतर होता है। तो आप भी इन बातों का ध्यान रखते हुए तांबे के बर्तन का पानी पिए और स्वस्थ रहें, और साथ ही सुनते रहें गुड मॉर्निंग बनारस, जिसमें आप सुनेंगे अभी एक ब्यूटीफुल सा ट्रैक। आई विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक बनारस। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहा के साथ। बनारस आज दिन है सोमवार और तारीख है 29 जून। तो आइए जानते हैं क्या हो रहा है अपने शहर बनारस में। खास जनपद में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ रविवार को कंपोजिट विद्यालय शिवपुर से किया गया। राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर अजय गुप्ता और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की। अभियान के पहले दिन आयोजित बूथ दिवस पर जिले के 2 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। स्वास्थ्य विभाग अब घर घर जाकर

कर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार ने बताया कि जनपद में स्थापित 1,805 बूथों पर कुल 2,85,356 बच्चों को पोलियो की वैक्सीन दी गई। इनमें शहरी क्षेत्र के 706 बूथों पर 80,135 और ग्रामीण क्षेत्र के 1,099 बूथों पर 2,05,221 बच्चों को दवा पिलाई गई। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत जन्म से 5 वर्ष तक के 5,44,106 बच्चों को पोलियो की अतिरिक्त खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सीएमओ ने कहा कि सोमवार से स्वास्थ्य विभाग की टीमें आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएंगी। जो बच्चे किसी कारणवश छूट जाएंगे उन्हें विशेष अभियान के तहत 6 जुलाई को दवा पिलाई जाएगी। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वो अपने 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य दिलाएं, साथ ही नियमित टीकाकरण के सभी टीके भी समय पर लगवाएं। उन्होंने कहा कि पोलियो की वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित और प्रभावी है। राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर अजय गुप्ता ने कहा कि भारत को पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए प्रत्येक अभियान में 100% बच्चों तक पहुंचना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि भले ही बच्चे को नियमित टीकाकरण और पहले की पोलियो खुराक मिल चुकी हो, फिर भी हर पल्स पोलियो अभियान में अतिरिक्त खुराक अवश्य दिलानी चाहिए। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर SS कनौजिया ने बताया कि पोलियो की खुराक जन्म के समय 6, 10 और 14 सप्ताह की आयु में और 16 से 24 माह के बीच बूस्टर डोज के रूप में दी जाती है। इस अवसर पर डिप्टी DIO डॉक्टर नवीन सिंह, WHO के डॉक्टर महेंद्र, JSI के डॉक्टर शाहिद सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। पर्यटकों की सुरक्षा और गंगा पार रेती क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से रविवार को दशाश्वमेध घाट के सामने गंगा पार रेती क्षेत्र में वाराणसी पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान रेती पर मौजूद लोगों के साथ साथ ऊंट और घोड़ा संचालकों की सघन जांच की गई और सभी को आवश्यक दिशा निर्देश और सुरक्षा संबंधी हिदायतें दी गई। ये अभियान थाना अध्यक्ष दशाश्वमेध संतोष कुमार सिंह, चौकी प्रभारी दशाश्वमेध अनुज मणि तिवारी और जल पुलिस प्रभारी सुधीर कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में संयुक्त रूप से चलाया गया। पुलिस टीम के रेती क्षेत्र में पहुंचते ही वहां अनावश्यक रूप से बैठे लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए लोगों की पहचान और गतिविधियों की जांच की। पुलिस अधिकारियों ने रेती क्षेत्र में ऊंट और घोड़ा संचालकों को निर्देश दिया कि वो पर्यटकों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। साथ ही बिना वजह रेती क्षेत्र में देर तक बैठने या संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। मानसून के दौरान जल भराव की स्थिति में होने वाली संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने लोक निर्माण विभाग, PWD, जल विभाग, नगर निगम के मुख्य अभियंताओं और नगर स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि शहर में अगर कोई खुला, टूटा या क्षतिग्रस्त मनहोल अथवा गली पीट पाया गया और उसके कारण कोई दुर्घटना होती है तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कठोर विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त ने सभी संबंधित विभागों को अपने अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले मेनहोल, गली पीट और ड्रेनेज कवरों का तत्काल व्यापक सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। सर्वे के दौरान जहां भी कवर टूटे, क्षतिग्रस्त या गायब मिले उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तत्काल बदलने या मरम्मत कराने को कहा गया है। साथ ही सभी विभागों को कार्य पूरा होने के बाद विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट नगर निगम को उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया है, जिसकी समीक्षा आगामी कार्यकारिणी समिति की बैठक में की जाएगी। ये निर्णय 27 जून को हुई नगर निगम कार्यकारिणी समिति की बैठक में उठाए गए मुद्दों के बाद लिया गया। बैठक में सदस्यों ने चिंता जताई थी कि बारिश के दौरान सड़कों पर जल भराव होने से खुले या टूटे मैनहोल दिखाई नहीं देते, जिससे आम लोगों के साथ गंभीर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा खुले मनहोल ड्रेनेज और सफाई व्यवस्था के सुचारू संचालन में भी बाधा उत्पन्न करते हैं। नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर किसी अधिकारी की लापरवाही के कारण कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी व्यक्तिगत जवाबदेही तय करते हुए तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आदेश की प्रतिलिपि महापौर, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और सभी जोनल अधिकारियों को भी भेजी गई है। जोनल अधिकारियों को निर्देश
निर्देश दिया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में नियमित

स्थलीय निरीक्षण करें और कार्यों की सतत निगरानी सुनिश्चित करें ताकि मॉनसून शुरू होने से पहले सभी मैनहोल और ड्रेनेज कवर सुरक्षित स्थिति में हो और शहरवासियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। और रुख करें अगर मौसम की ओर, तो पिछले 10 दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों को अगले सप्ताह राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पूर्वा हवाओं का दबाव बढ़ने से मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं और इसके चलते अगले सप्ताह वाराणसी में मॉनसून के प्रवेश की संभावना जताई जा रही है। वाराणसी में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि मौसम की ये स्थिति मॉनसून के अनुकूल है। उन्होंने उम्मीद जताई कि शुरुआती दिनों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। शनिवार को भी दिन भर तेज धूप और उमस के कारण लोग परेशान रहे। सुबह से ही चिलचिलाती धूप ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। वहीं रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिली। पूर्वा हवा का प्रभाव बढ़ने से मौसम में बदलाव के संकेत जरूर मिले, लेकिन उमस के कारण लोगों की परेशानी बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि मॉनसून के आगमन के साथ तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। तो ये था अपने शहर बनारस का हाल समाचार, और अब इसी के साथ बनारस मेरे भी जाने का वक्त हो चला है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनों का ख्याल रखिए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताइए, आपको भी अच्छा लगेगा और उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो अब गुड मॉर्निंग बनारस से दीजिए इजाजत अपनी रेडियो दोस्त स्नेहा को। टाटा।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही देर में यानी के 7:20 से प्रादेशिक समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, जिसे हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा।
2: अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
3: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
2: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
3: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
2: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
4: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
5: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा अध्यक्ष ओम

0: से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित देश के कई अन्य मंत्रियों और नेताओं ने प्रधानमंत्री को दी बधाई। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के प्रति जताया आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में एक्सप्रेसवे और औद्योगिक अवसंरचना सहित कई अन्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कहा, निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी होनी चाहिए प्रत्येक परियोजना। और प्रदेश भर में शुरू हुआ पल्स पोलियो अभियान, आज से घर घर जाकर दवा पिलाएंगी स्वास्थ्य विभाग की टीमें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी ने कल प्रधानमंत्री मोदी को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। यह पहली बार है कि जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को यह सम्मान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी चर्चा की, जिसे 21 जून को दुनिया भर में मनाया गया।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की बनी मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। वहीं जल संरक्षण के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में जरा भी ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। प्रदेश भर में कल प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा पदाधिकारियों और नेताओं के साथ ही आम जनता ने सुना और सराहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री ने प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्थान पर देश की मिट्टी से निर्मित भगवान श्री गणेश की मूर्तियों को अपनाने तथा स्थानीय कुम्हारों और शिल्पकारों द्वारा निर्मित प्रतिमाओं को प्राथमिकता देने की अपील करके आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जन जन से जोड़ने का कार्य किया है। कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सुना। डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने कल सिद्धार्थनगर में स्थानीय लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम देशवासियों को राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक की अध्यक्षता करते हुए एक्सप्रेसवे, औद्योगिक अवसंरचना, ग्रामीण आजीविका, ऊर्जा और ईवी चार्जिंग सहित कई अन्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

0: इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक परियोजना निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी शासकीय और निजी मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों, जिला स्तरीय महिला और पुरुष चिकित्सालयों तथा होटलों में फायर एनओसी की स्थिति का तत्काल सत्यापन कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेस वे सहित अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को भी तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने नए एक्सप्रेस वे के किनारे औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त भूमि की उपलब्धता समय रहते सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल हाथरस जिले में 548 करोड़ रुपए की लागत वाली 143 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर लाभार्थियों को आवास की चाबी, स्मार्टफोन और चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हाथरस में जल्दी ही प्रोसेसिंग सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका लाभ वहां के आलू उत्पादक किसानों को मिलेगा।
1: अब हमारा हाथरस भी विकास से वंचित नहीं होगा, बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ अब उद्यम यहां पर आ रहे हैं। यहां पे रोजगार के नई संभावनाओं को आगे बढ़ाना, प्रोसेसिंग सेंटर लगेंगे। हमारा अन्नदाता किसान जो आलू उत्पादन करता है, उसके कई गुना दाम उन्हें प्राप्त होगा। कोल्ड स्टोरेज की उनकी समस्या का समाधान होगा, किसान को अच्छा दाम मिलेगा।
0: इसके बाद मुख्यमंत्री ने आगरा में जन प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति तथा कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी लंबित परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किए जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अयोध्या दौरे के दूसरे दिन कल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में आयोजित मातृशक्ति कॉन्क्लेव अयोध्या 2026 में शामिल हुईं। कार्यक्रम में मां बेटी संवाद के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास जैसे विषयों पर चर्चा की गई। अयोध्या के श्री राम मंदिर दान के मामले में कल पुलिस तथा प्रशासन की टीम ने गिरफ्तार सभी 8 आरोपितों के घरों पर छापेमारी करके तलाशी ली। इस दौरान आरोपियों के परिजनों से पूछताछ भी की गई। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों से साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई की। आज पुलिस सभी आरोपियों को कोर्ट में फिर से पेश करेगी। कल से प्रदेश भर में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो गई। कल पहले दिन बूथ दिवस पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा पिलाई गई। वहीं आज से 3 जुलाई तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर ये दवा पिलाएंगी। अभियान के पहले दिन कल विभिन्न जिलों में जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने बच्चों को दवा पिलाकर पोलियो से बचाव का संदेश दिया। गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन शुक्ल ने जिला महिला अस्पताल से बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत में वर्षों पहले पोलियो का उन्मूलन हो चुका है, लेकिन पड़ोसी देशों पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसके वायरस अभी भी मौजूद हैं। ऐसे में सभी अभिभावक अपने बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा अवश्य पिलाएं। इस मौके पर सदर सांसद श्री शुक्ल ने गोरखपुर के नवाचार मेटर्नल इमरजेंसी असिस्टेंस फॉर टाइमली रेफरल एंड इंटेंसिव सर्विसेज मातृ सेवा का भी शुभारंभ किया। इस नवाचार के जरिए मातृ मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य है। बीते कई दिनों से पड़ रही भीषण उमस भरी गर्मी के बीच आज सुबह प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह सुबह हल्की हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश से लोगों को फिलहाल उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित देश के कई अन्य मंत्रियों और नेताओं ने प्रधानमंत्री को दी बधाई। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के प्रति जताया आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में एक्सप्रेसवे और औद्योगिक अवसंरचना सहित कई अन्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कहा, निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी होनी चाहिए प्रत्येक परियोजना। और प्रदेश भर में शुरू हुआ पल्स पोलियो अभियान, आज से घर घर जाकर दवा पिलाएंगी स्वास्थ्य विभाग की टीमें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पंडित डी के दातार का वायलिन वादन। राग है अहिर भैरव। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं नयन घोष।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पंडित डी के दातार का वायलिन वादन, राग था अहिर भैरव। अब आइए सुनते हैं पंडित डी के दातार के वायलिन वादन में मिश्र भैरवी में धुन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं नयन घोष।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित डी के दातार का वायलिन पर बजाया मिश्र भैरवी में धुन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे नयन घोष। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से सुन रहे थे। सुबह के 8 बजने वाले हैं, अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहतनाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने

0: और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगे। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
2: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल हैं। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र

0: बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
1: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, UAE, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय MSME, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं GFSC जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
0: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
2: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। TET परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ACB ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर वत्सला अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
3: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहाँ वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाय नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
4: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच पहाड़ी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30

0: 9 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331048 0112371717 और 0112341444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा, समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अल नीनो का असर पड़ेगा। लोक सत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फॉर्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगे। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Akashwani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi attends Seychelles National Day celebrations as guest of honor also holds talks with his Mauritius counterpart Naveen Chandra Ramgulam.

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के कौमी दिन की तकरीबात में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। उन्होंने मॉरिशस के अपने हम मनसब नवीन चंद्र राम गुलाम से भी बातचीत की। अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला रोकने और कल से बातचीत दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दिफा से मुतालिक एक तकरीब में बहादुरी इनामात अदा करेंगी। भारत के महकमा मौसमियात ने आज ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और

0: सिक्किम में बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। और हॉकी में भारत ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग की अपनी मुहिम जीत के इशारे के साथ मुकम्मल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर वहां के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत की। जनाब मोदी ने इस तकरीब में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। इस तरह वो भारत के पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन्हें ये एजाज दिया गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इस परेड में भारतीय बहरिया और फौज की टीमों पर मुश्तमिल एक दस्ते ने शिरकत की। भारत के एक बहरी बैंड ने भी शिरकत की है, जिससे भारत और सेशल्स के दरमियान करीबी शराकतदारी का इजहार होता है। एक खसूसी इशारे के तौर पर INS तरकश और INS अक्षक को पोर्ट विक्टोरिया पर लंगरअंदाज किया गया है, जिससे सेशल्स के साथ भारत की देरीना दोस्ती का अंदाजा होता है। वजीर आजम मोदी ने इस तारीखी मौके पर सेशल्स के आवाम को भारत की नेक ख्वाहिशात पेश की। जनाब मोदी सेशल्स के सदर पैट्रिक हरमनी की दावत पर हफ्ते के रोज सेशल्स पहुंचे थे। वजीर खारजा एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और मॉरिशस के वजीर आजम नवीन चंद्र राम गुलाम भी इस मौके पर मौजूद थे। वजारत खारजा के मुताबिक भारत और सेशल्स के दरमियान देरीना दोस्ती है, जिसकी जड़ें मुश्तरका तारीखी, सकाफती और अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों से वाबस्ता हैं। भारतीय बहरे हिंद खित्ते में एक अहम समंदरी पड़ोसी के तौर पर सेशल्स का मकाम भारत के विजन महासागर और आलमी जुनूब के तई भारत के अहद में खसूसी हैसियत का हामिल है। वजारत खारजा ने बताया कि जनाब मोदी के इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत और पायदार दोस्ती का इरादा होता है और मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा ताल्लुकात को फरोग देने में दोनों मुल्कों के मुश्तरका अहद का भी इरादा होता है। आशीष अब्राहम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शगुफ्ता यास्मीन।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के अपने हम मनसब डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने भारत और मॉरिशस के दरमियान मौजूदा तआवुन और इश्तराक पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने भारत की जानिब से दिए गए खसूसी मुआशी पैकेज के निफाज में हुई पेशरफ्त का भी जायजा लिया। दोनों रहनुमाओं ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी मुकदम की पॉलिसी के तहत भारत मॉरिशस की बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की अहमियत से इत्तेफाक किया और आलमी खित्ते जनूब के तई अपने मुश्तरका अहद से भी इत्तेफाक किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सेशल्स का माहौलियाती तहफ्फुज़ और मुस्तकिल तरक्की के मैदान में आला तरीन क़यादत पर गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड से नवाजा गया है। ये अवार्ड सेशल्स के सदर पैट्रिक हरमीनी के हाथों दिया गया है, जिसके तहत मुस्तकिल तरक्की और जनाब मोदी के माहौल के लिए साजगार तसव्वुर का एतराफ किया गया है। जनाब मोदी ने इस अवार्ड से नवाजे जाने के बाद सेशल्स के अवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। अमरीका और ईरान कतर की राजधानी दोहा में इस बात पर रजामंद हो गए हैं कि एक दूसरे के खिलाफ हमले रोक दिए जाएं और कल से बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू किया जाए। इस कदम का मकसद कई दिन से जारी इस फौजी कार्रवाई को रोकना है, जिसकी वजह से जंगबंदी को खतरा लाहिक हो गया था और आबनाई हुरमुज से मुतालिक तनाजे को हल करना है। यह ऐलान आबनाई हुरमुज के आसपास कई हमलों के बाद किया गया है। अमरीका ने ईरान पर इल्जाम लगाया था कि उसने तजारती जहाजों पर हमला करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है, जिसके बाद उसने ईरान के फौजी ठिकानों पर हमले किए। इधर ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए। दोनों ही मुल्कों की तरफ से मजीद कशीदगी पैदा हो जाने के तई नए सिरे से खबरदार किया गया है। एक अमरीकी अफसर ने बताया कि अब दोनों ही मुल्क एक दूसरे पर हमले करने से बाज रहेंगे और मुजाकरात के दौरान इन जहाजों की बिला रुकावट आमदोरफ्त जारी रहेगी। सदर जम्हूरियत द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में बहादुरी से मुतालिक 2026 की दिफा की दूसरी तकरीब में बहादुरी इनामात अदा करेंगी। वो दिफाई अफवाज, मरकजी मुसल्ला पुलिस दस्तों और रियासत व मरकज के जेर इंतजाम पुलिस के अमले को बहादुरी के इनामात शाम 5 बजे अदा करेंगी। ये इनामात मुसल्ला दस्तों, मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेस और दीगर हिफाजती एजेंसियों के अमले के बहादुरी के खैर मामूली कारनामों को तस्लीम करते हुए दिए जाते हैं। इन इनामात से पूरे जम्मू और कश्मीर, शिमाल मशरक और मुल्क की सरहदों पर दहशतगर्दी, शोरिश पसंदी और मुखासिमाना धमकियों की रोकथाम के लिए भारत की लगातार जदोजहद की अक्कासी होती है,

0: एविएशन, समंदरी कार्रवाइयों और इंसानी हमदर्दी वाले मिशनों में गैर मामूली हौसले के इकदाम उजागर होते हैं। सदर मुर्मू ने इससे पहले इस तकरीब के पहले मरहले में भी बहादुरी इनामात अदा किए थे। ये तकरीब राष्ट्रपति भवन में इस माह की 8 तारीख को मुनक्किद की गई थी। गुजरात के वडोदरा शहर में आज GSFC यूनिवर्सिटी में 4थी दरख्शां गुजरात इलाकाई कॉन्फ्रेंस का आगाज होगा, जिसका उन्वान है रीजनल एस्पिरेशंस ग्लोबल एम्बिशन। मरकजी वुजरा राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर, मनसुख मांडविया, अहम रियासती वुजरा और आलमी सिफारतकार इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस का मकसद वस्ती गुजरात के खित्ते में सनअती तरक्की की रफ्तार तेज करना है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में 30 से ज्यादा सेमिनार मुनक्किद किए जाएंगे, जिनमें जापान, सिंगापुर, मुत्तहिदा अरब अमारात, यूक्रेन और रवांडा समेत शराकत दार मुल्कों के 151 माहरीन और मंदूबीन शिरकत करेंगे। मरकजी गुजरात की इक्तसादी तरक्की पर मरकूज इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क के लिए तैयार शोबों पर तवज्जो दी जाएगी, जिनमें सेमी कंडक्टर, लॉजिस्टिक्स, माहौलियात के लिए साजगार हाइड्रोजन, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ज़राअत, खला, दिफा और मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। 150 से ज्यादा स्टॉल्स पर मुश्तमिल इस बड़ी नुमाइश में इलाकाई MSMEs, तरक्की याफ्ता टेक स्टार्टअप्स और कुछ बड़ी कंपनियां जैसे अमूल और GSFC वगैरह हिस्सा लेंगी। वडोदरा से अपर्णा खुन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भिवंडी में एक सेशंस अदालत ने उन 3 मुलजिमों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है, जिन्हें महाराष्ट्र टीचर अहलियत इम्तिहान टेट के पेपर लीक केस में गिरफ्तार किया गया था। तफ्तीशकारों को शक है कि ये लोग इम्तिहान के बैन रियासती रैकेट में मुलव्वस हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: भिवंडी पुलिस ने अदालत को बताया कि मुलजिमीन इफ्शा किए गए TET सवालनामे को 1,50,00,000 रुपए में बेचने के लिए दिल्ली से भिवंडी गए थे। ये पेपर असल में कहां से इफ्शा हुआ, तफ्तीशकारों ने यह जानने के लिए इन लोगों को 10 दिन के लिए पुलिस हिरासत में तलब किया है। पुलिस इस सिलसिले में माली लेन देन के बारे में जानना चाहती है और ये जानना चाहती है कि आया ये पेपर महाराष्ट्र में किसी और जगह भी फरोख्त किया गया है। पुलिस रैकेट के दीगर अरकान की भी शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। पुलिस अफसरान ने बताया कि अब वो इस सिलसिले में 2 मफरूर मुलजिमीन को तलाश कर रहे हैं। TET इम्तिहान इतवार 28 जून को होना था, लेकिन इस केस की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया। इस वाकये के बाद महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने हफ्ते को एक खसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील देने का हुक्म दिया है। मुंबई से शैलजा तिवाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शगुफ्ता यास्मीन।
0: ओडिशा में आज सुबह लाखों की तादाद में अकीदतमंद पुरी पहुंचे। आज श्री जगन्नाथ मंदिर में पवित्र देव स्नान यात्रा या स्नान यात्रा रिवायती शानो शौकत के साथ मुनक्किद की जा रही है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र और देवी सुभद्रा की पवित्र स्नान यात्रा में शामिल होने के लिए अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में यज्ञ हुई। सदियों पुरानी रिवायत के मुताबिक तीनों देवताओं को रस्मी तौर पर स्नान बेड़ी तक लाया गया, जहां वैदिक मंत्रों के जाप, शंखों की आवाज और भजनों के साथ उन्हें स्नान कराया जाएगा। मजकूरा त्यौहार देव स्नान पूर्णिमा के पवित्र मौके पर मनाया जाता है और सालाना रथ यात्रा से कबल इन तीनों देवताओं के दर्शन किए जाते हैं। अजीमुशान रथ यात्रा आइंदा महीने की 16 तारीख से शुरू होगी। इस दौरान सिक्योरिटी के वसीतर इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी न्यूज भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आज सिक्किम और मगरबी बंगाल के सैली हिमालयाई खित्ते में बहुत शदीद और कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे के मुताबिक गुजरात के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान जनूबी मगरबी मानसून की मजीद पेशरफ्त के लिए हालात साजगार हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों, आसाम, मेघालय, केरला और माहे में आइंदा 2 दिन के दौरान शदीद से बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। आसाम के धेमाजी जिले में बड़े पैमाने पर सैलाब आ जाने के खतरात बढ़ गए हैं। खबरें हैं कि अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके में गाई नदी के बहाव में आरजी तौर पर रुकावट आ गई है। समझा जाता है कि ये रुकावट बड़े पैमाने पर जमीनी तौदे खिसकने की वजह से आई है। खित्ते में तौदे खिसकने का ये हादसा कई दिन की शदीद बारिश की वजह से पेश आया है। एक रिपोर्ट।
1: धेमाजी जिला इंतजामिया ने

0: लोगों के लिए एक फौरी हिदायत जारी की है और उन्हें खबरदार किया है कि जो पानी यहां जमा हो गया है अगर उसे आगे जाने न दिया जाए आगे जाने दिया जाए तो अचानक सैलाब आ सकता है। यहां दरिया झरनों दलदली जमीनों पानी के जखीरों और दीगर नशीबी इलाकों के पास रहने वालों से कहा गया है कि वो चौकन्ना रहें। कुदरती आफत की सूरत में बंदोबस्त से मुताबिक जिला अथॉरिटी ने लोगों से जोर देकर कहा है कि वो सरकार की तरफ से जारी की गई हिदायत पर सख्ती से अमल करें मकामी हुक्काम के साथ तआवुन करें और अगर जरूरी हो तो महफूज तर जगहों पर मुंतकिल हो जाएं। इसी दौरान पहाड़ी इलाकों पर मूसलाधार बारिश की वजह से जिले के कुछ इलाके पानी में डूब गए हैं और यहाँ पानी कौमी शाहरा नंबर 515 के निशान से ऊपर बह रहा है जिसकी वजह से गाड़ियों की आमद रफ्त में रुकावट आ गई है। इस बढ़ते हुए सैलाब से घर और खेत पानी में डूब गए हैं जिसकी वजह से इमलाक और खड़ी फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बे।
1: कल लंदन में खेले गए FIH हॉकी प्रो लीग के मुकाबले में भारत ने शानदार दिफाई मुजाहिमत का मुजाहिरा करते हुए इंग्लैंड को 3-2 से शिकस्त दी। इससे पहले मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ था जिसके बाद मस्कूरा गोल पेनल्टी शूटआउट में किए गए। इस जीत के साथ ही आइंदा हॉकी आलमी कप से कबल भारतीय टीम के एतमाद में इजाफा हुआ है। फीफा आलमी कप के नॉकआउट मरहले में अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से शिकस्त दी। ये कनाडा की किसी फीफा आलमी कप के किसी नॉकआउट मुकाबले में सबसे पहली जीत है। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नश्र होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे छोटे कारोबारियों के लिए बढ़ते हुए छोटे कारोबार और मौके के मौजू पर एक तफसीली मुजाकिरा नश्र करेगा। ये मुजाकिरा MSME की वजारत के एडिशनल सेक्रेटरी एंड डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर रजनीश के साथ किया जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं शगुफ्ता यास्मीन।
2: शुक्रिया नितिका। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले अहम उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सेशल्स दौरे को अपने सफाई अव्वल की नुमाया खबर के तौर पर शाया किया है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम मोदी के बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि बहरुल काहिल की सलामती और खुशहाली हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी। सेशल्स के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने का वक्त, दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दद अहम माहदों पर दस्तखत। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, PM मोदी को सेशल्स ने मुल्क के आला तरीन एजाज से नवाजा। रोजनामा इनकलाब ने प्रोग्राम मन की बात के ताल्लुक से वजीर आजम के इस बयान को नुमाया अहमियत के साथ शाया किया है कि समंदर से आसमान तक हिंदुस्तान महफूज और आत्मनिर्भर बन रहा है। कुछ अहम बैनुल अक्वामी खबरें इस तरह हैं, जंगबंदी मुहदे की दोबारा खिलाफ वर्जी, ईरान अमरीका फिर आमने सामने, कशीदगी में इजाफा, साबिक वजीर आजम शेख हसीना का बांग्लादेश वापसी का ऐलान, इबोला वायरस की वजह से सऊदी अरब ने 3 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद की।
1: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के कौमी दिन की तकरीबात में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। उन्होंने मॉरिशस के अपने हम मनसब नवीन चंद्र राम गुलाम से बातचीत की। अमरीका और ईरान एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला रोकने और कल से बातचीत दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दिफा से मुतालिक एक तकरीब में बहादुरी इनामात अता करेंगी। भारत के महकमाए मौसमियात ने आज सैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में बहुत शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। और हॉकी में भारत ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग की अपनी मुहिम जीत के इशारे के साथ मुकम्मल कर ली है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
3: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मधुरिमा।
4: दीदी नौकरी लग गई।
5: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
4: हाँ दी, नया मोबाइल।
5: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
4: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
5: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
4: पर दीप,
5: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
4: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
5: अच्छा।
6: RBI कहता है,
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
8: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका

0: बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
0: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें
2: 0542227658,
3: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

आपके दीदार के लिए आते हैं तारे, आपकी खुशबुओं ने महकाई है बहारें। आप साथ हो तो ऐसे होते हैं नज़ारे कि चांद भी छुप छुप कर आपको निहार।

ये हकीकत है कि तुम मेरी हसरत हो, जो बस ख्वाबों में मिले वही दौलत हो। क्यों देखती हो तुम आईने में चांद, तुम तो चांद से भी खूबसूरत हो।

स्वच्छता ही सेवा ध्येय वाक्य को अमल में लाएं, कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाएं, अपना जीवन अमूल्य बनाएं। स्वच्छता अपनाएं, कार्यालय की गरिमा बढ़ाएं, अपना जीवन सफल बनाएं। स्वच्छ होगा

0: जब वातावरण तभी होगा नवजागरण। आइए आज से ही स्वच्छता ही सेवा की मूल भावना को अपनाएं, जीवन में नव ऊर्जा का संचार करें। स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही संस्कृति है। स्वच्छता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। स्वच्छ रहेगा भारत तो समृद्ध रहेगा भारत। नदियों को रखो साफ, ये है हमारी सभ्यता की पहचान। स्वच्छता को आदत बनाएं, रोज सफाई करना भूल न जाएं। गांधी जी के सपनों का भारत हमें बनाना है। पूरा भारत स्वच्छ रहे, यही हमारा नारा है। स्वस्थ भविष्य के लिए आज से ही स्वच्छता अपनाएं। हर नागरिक का हो ये सपना, स्वच्छ हो संपूर्ण भारत अपना। जब हमारा भारत स्वच्छ होगा तभी तो हर सपना सच होगा। देश तभी साफ होगा जब स्वच्छता में सबका हाथ होगा। मन में रखो एक ही सपना, स्वच्छ बनाना है भारत अपना। जब देश का कोना कोना स्वच्छ रहेगा तब देश का हर एक बच्चा स्वस्थ रहेगा। अविरल गंगा अविरल यमुना, स्वच्छ भारत संकल्प है अपना। न फैलाएंगे कूड़ा कचरा, स्वच्छ बनाएंगे भारत अपना।
1: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मधुरिमा। ये कायनात की खुशबू भीनी भीनी है सांसों में, गर्मी के भरे दिन में पेड़ की छाव बन जाओ तुम, मैं तुम्हारी चांदनी और मेरे चांद बन जाओ।

चाहत तो हमेशा से थी चांद को पाने की, ये ओठ है या पंखुड़ी गुलाब की, इनके मुस्कुराते ही पूरा समा खुशबुओं से भर जाता है। आपको जो पाया तो ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई।

0: मधुरिमा
1: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:15 हो रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए हमीरपुर और इटावा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं हमीरपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शिव कुमार का।
2: जनपद हमीरपुर की राड विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 21 जून के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम के तहत आए और उन्होंने जनपद

0: हमीरपुर की दोनों विधानसभाओं को 636.82 करोड़ की लागत की 75 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। साथ ही जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, मुख्यमंत्री मुद्रा उद्यमी विकास अभियान योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, परिवार नियोजन, जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के कुल 12 लाभार्थियों को मंच से डेमो चेक देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री से सम्मान और प्रमाण पत्र पाकर लाभार्थियों के चेहरे खिल गए। आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहले बुंदेलखंड के लोग पानी और रोजगार की समस्या को लेकर पलायन करने को मजबूर थे, लेकिन अब नमामि गंगे मिशन जल शक्ति के चलते हर घर नल जल से जल मिल रहा है। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए प्रत्येक माह में कम से कम 4 बार रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नामी गिरामी कंपनियां प्रतिभाग कर बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कर रही हैं। बिना किसी जात मजहब को दरकिनार कर सभी को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पर कार्य किया जा रहा है। जनपद हमीरपुर को मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई सौगात के तहत बेतवा नदी में 650 मीटर लंबा पीपा पुल बनाने का कार्य किया जाएगा। ग्रामीणों को जाम की झाम से निजात के साथ 30 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेगा। पढ़ने वाले बच्चों को भी सहूलियत मिलेगी और कानपुर जालौन जाने में भी सहूलियत रहेगी। सदर विधायक मनोज कुमार प्रजापति ने बताया कि मेरे द्वारा 4 करोड़ 16 लाख की कार्य योजना बनाकर शासन को स्वीकृत के लिए भेजी थी, जिसे मुख्यमंत्री के द्वारा शिलान्यास किया गया है और मंजूरी मिल गई है। बरसात के बाद पैटून पुल का निर्माण कराया जाएगा। जनपद हमीरपुर में अंतर्राष्ट्रीय 12वें योग दिवस को उत्साह और व्यापक जन भागीदारी के साथ राजकीय स्पोर्ट स्टेडियम में मनाया गया, जहां बच्चे बूढ़े जवान सभी ने योग किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पिछड़ा वर्ग के आयोग के उपाध्यक्ष सोहन लाल श्रीमाली, नोडल अधिकारी भूतत्व निदेशक माला श्रीवास्तव, राज्यसभा सदस्य बाबू राम निषाद सहित अन्य लोगों ने योग अभ्यास किया। इस अवसर पर योग प्रशिक्षक ने कहा कि योग भारत की प्राचीन एवं अमूल सांस्कृतिक धरोहर है। योग केवल शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक शारीरिक आध्यात्मिक संतुलन स्थापित करने में प्रभावी माध्यम है। बुंदेलखंड के विकास और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छात्रों को सुविधापूर्ण माहौल उपलब्ध कराने के लिए 31 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से 2 भव्य व अत्याधुनिक छात्रावासों का निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है। सुविधाओं से सुसज्जित छात्रावासों में रहने से बुंदेलखंड सहित अन्य जिलों के अध्ययनरत छात्रों को उच्च शिक्षा की राह सुगम और आसान होगी। जनपद हमीरपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। वर्ष 2021 की अपेक्षा 2026 में लगभग 5% मतदाताओं की वृद्धि विशेष पुनरीक्षण अभियान के बाद हुई है। 2026 की मतदाता सूची में 34,495 नए मतदाता शामिल हुए हैं, वहीं 4,556 संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम डिलीट भी किए गए हैं। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एस के शुक्ला ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष पुनरीक्षण डुप्लीकेट मतदाता सत्यापन के बाद अब जनपद हमीरपुर की नई मतदाता सूची में 7,28,518 मतदाता हैं, जिसमें 3,26,350 महिला मतदाता और 4,01,762 पुरुष मतदाता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जनपद हमीरपुर में 7 विकास खंडों की 330 ग्राम पंचायतों में कुल 524 मतदान केंद्र और 1214 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। जनपद हमीरपुर का किसान पारंपरिक खेती के साथ कैश क्रॉप की तरफ तेजी से रुझान बढ़ा है और फायदा भी मिला है। जिला उद्यान अधिकारी सौभाग सिंह ने बताया कि किसानों को भीमा सुपर प्याज की खेती करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें निशुल्क प्याज का बीज दिया गया, जिससे किसानों ने प्याज की खेती करके नासिक प्याज के ऊपर निर्भर न रहते हुए अच्छी आमदनी भी कर रहे हैं। NHRDF द्वारा उपलब्ध उच्च प्रजातियां का निःशुल्क बीज उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें मुख्यतः एग्रीफाउंड लाइट रेड, भीमा सुपर, भीमा राज, भीमा शक्ति जैसी प्रजातियां किसान भाइयों को निःशुल्क दी जाती हैं, जिनका जमाव और उत्पादन दोनों ही बहुत अच्छा हुआ है।
1: हमीरपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं इटावा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित कुमार तिवारी का।
2: इटावा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से अधिवक्ताओं के लिए DBA सभागार में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। सैकड़ों अधिवक्ताओं ने शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सभी बीमारियों के एक दर्जन से अधिक एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम ने परीक्षण किया। मेडिकल कैंप का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला जज रजत सिंह जैन ने फीता काट कर किया। इटावा में 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में टॉप करने वाले मेधावी छात्रों का सम्मान हुआ। सदर विधायक सरता भदौरिया की अध्यक्षता में विकास भवन के प्रेरणा सभागार में आयोजित

में 14 टॉपर्स को 21-21 हजार रुपए देकर सम्मानित किया गया। अन्य मेधावियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र मिले। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लोक भवन लखनऊ से लाइव प्रसारण को भी देखा गया। विधायक सरिता भदौरिया ने कहा, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पीता है वही दहाड़ता है। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने भी छात्रों को मेहनत, अनुशासन और शिक्षकों के सम्मान की सीख दी। इटावा में जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में एक जनपद एक नदी, डिजिटल लाइब्रेरी, जीरो पॉवर्टी अभियान समेत कई योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। जिलाधिकारी ने सिरसा नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए फिल्टर चैम्बर प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन में नए पात्रों को शौचालय से जोड़ने और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सामुदायिक शौचालय बनाने को कहा। 117 डिजिटल लाइब्रेरी में प्रतियोगी पुस्तकें रखने और जीरो पॉवर्टी के चिन्हित परिवारों को राशन, हर घर नल का लाभ प्राथमिकता से देने के निर्देश

0: परिवारों को राशन हर घर नल का लाभ प्राथमिकता से देने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर इटावा में उद्यमी संवाद कार्यक्रम हुआ। सदर विधायक सरिता भदौरिया की अध्यक्षता में विकास भवन के प्रेरणा सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि 12 साल में भारत ने अभूतपूर्व विकास किया है। इटावा के अंगोछा, बेडशीट, खीर मोहन जैसे उत्पादों को भी नई पहचान मिली है। उन्होंने बताया कि ODOP योजना में 2000 लोगों को टूल किट, विश्वकर्मा योजना में 5805 को प्रशिक्षण और युवा उद्यमी अभियान में 1937 युवाओं को 74 करोड़ से अधिक ऋण मिला। जिलाधिकारी सुब्रांत कुमार शुक्ल ने भी युवाओं से नवाचार के साथ आगे आने की अपील की। कार्यक्रम में लाभार्थियों को ऋण चेक और टूल किट वितरित की गई। इटावा पहुंची महिला कल्याण मंत्री बीबी रानी मौर्य ने केंद्र की 12 राज्य और 9 साल के सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा, अपराधी जेल में है, महिला सुरक्षा प्राथमिकता है, सड़क, बिजली, पुल, हॉस्पिटल बन रहे हैं। इटावा में यमुना और सिरसा नदी में जाने वाले गंदे पानी को रोकने के लिए जिला पंचायत राज विभाग ने बड़ी पहल की है। DPRO रोहित कुमार ने बताया कि यमुना किनारे के 10 गांव में फिल्टर चैम्बर बना दिए गए हैं। 10 ग्राम पंचायतों में 16 फिल्टर चैम्बर बनाए जा रहे हैं, जिनमें 12 तैयार हो चुके हैं। सिरसा नदी का जीर्णोद्धार भी शुरू कर दिया गया है। इस पहल से यमुना और सिरसा नदी को प्रदूषण से बचाया जा सकेगा और गांव का गंदा पानी नदियों में जाने से रोका गया है।
1: हमारे 10 गांव थे जिनका गंदा पानी जो यमुना नदी में जा रहा था, तो जिलाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में उनमें हमने फिल्टर चैम्बर बनाए गए। 10 गांव जो हमारे थे कवर किए गए, अब उनमें जो है पानी साफ तरीके से लगभग जा रहा है।
0: जनपद इटावा में 285 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 21 राजकीय, 54 सहायता प्राप्त और 210 वित्त विहीन विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में 1,29,000 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जनपद में 5 माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता समाप्त कर दी है। इटावा पुलिस ने ऑपरेशन दहन के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 5,31,97,000 रुपए कीमत के मादक पदार्थ नष्ट किए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में 7 केसों से जुड़ा 1,772 किलो गांजा चरस डोडा कानपुर देहात के अधिकृत प्लांट में जलाया गया। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी हुई। इटावा पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकल्प दोहराया। जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने यह कार्रवाई की। NDPS एक्ट के तहत विभिन्न थानों पर पंजीकृत 7 अभियोगों से संबंधित कुल 1,772 किलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट किए गए। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पहुंचे ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत ने नुमाइश पंडाल में पहुंचकर योग किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, देश की जनता को स्वस्थ रखने के लिए यह प्रारंभ किया है, निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग से 15 छात्रों की मौत के बाद इटावा प्रशासन सतर्क हो गया। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल और SSP ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट सभागार में व्यापारी संगठनों और कोचिंग संचालकों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी कोचिंग मॉल और प्लाजा में फायर सेफ्टी मानकों का 100% पालन हो, शॉर्ट सर्किट रोकने को अच्छी वायरिंग MCB लगाएं। SSP ने बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे कोचिंग पर कार्रवाई के निर्देश दिए।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: जिले की हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ।
4: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार सविता देवी, जिनकी उम्र 38 वर्ष है, पत्नी है उमाशंकर तिवारी की, निवासी ग्राम व पोस्ट करण छपड़ा, थाना डोकटी, जिला बलिया की। ये दिनांक 23 जून 2025 को खिचड़ी वाले बाबा दशाश्वमेध वाराणसी सुबह 6 से 7:30 बजे के आसपास ये लापता हो गई हैं। लापता होने के समय इन्होंने पहना हुआ था पीले रंग का समीज, लाल सलवार। इनकी लंबाई 5 फीट 5 इंच है, रंग इनका गोरा है, चेहरा गोल है। इनके बारे में जानकारी मिलने पर

कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार मुन्ना लाल शर्मा पुत्र स्वर्गीय विश्वनाथ, जिनकी उम्र 60 वर्ष है, निवासी हैं गेट नंबर 5 वर्णापुरी कॉलोनी फुलवरिया वाराणसी। ये दिनांक 14 जून 2025 को अपने घर से सामान लेने के लिए मार्केट गए थे, अब तक लापता हैं। इनकी लंबाई 5 फीट 5 इंच है, रंग गेहुआ है। इनके बारे में जानकारी मिलने पर कृपया सूचित करें कैंट वाराणसी थाने को या नज़दीक के किसी भी थाने को सूचित करें।

कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार वंदना सिंह, जिनकी उम्र 39 वर्ष लगभग है, ये 12 अप्रैल 2025 को अपने घर से निकली थी, लापता हैं। लापता होने के समय इन्होंने हरे रंग का साड़ी और लाल स्वेटर पहना हुआ था। इनकी लंबाई 5 फीट 2 इंच है, रंग गोरा है। इनके बारे में जानकारी मिलने पर लंका वाराणसी थाने को सूचित करें या नज़दीक के किसी भी थाने को सूचित करें। आप सुन रहे थे खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:30 हो रहे हैं। थोड़ी देर में होगा उर्दू कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम।
1: सामईन कराम, आदाब अर्ज़ है। मैं हूं आपकी मेजबान शाजिया खान और आज के प्रोग्राम में आपके लिए पेश कर रही हूं एक दिलचस्प और सबक आमूज दास्तान, जिसमें इश्क, वफा, आजमाइश और किस्मत के अजीब रंग नुमाया है। ये किस्सा है एक ऐसे शहजादे का जो मोहब्बत की शिद्दत में दुनिया से बेनियाज हो गया, और एक दरवेश का जिसने उसके दर्द को अपना दर्द समझकर उसकी मदद का अहद किया। तो आइए सुनते हैं दास्तान बाग बहार का अगला हिस्सा, सैर दूसरे दरवेश की।

जब पहले दरवेश की कहानी खत्म हुई तो दूसरे दरवेश की बारी आई। वो चारों के दरमियान बैठा और बोला, ए यारो, इस फकीर का माजरा सुनो। मैं इब्तिदा से कहता हूँ ता इंतहा सुनो। जिसका इलाज कर नहीं सकता कोई हकीम, हैगा हमारा दर्द निपटला दवा सुनो। दूसरा दरवेश अपनी दास्तान

खूरेजी से बचने के लिए हातिम ने मुकाबला करने के बजाय एक पहाड़ी की गार में पनाह ले ली। बादशाह ने ऐलान करवाया कि जो शख्स हातिम को गिरफ्तार करके लाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। तभी गरीब बूढ़ा, उसकी बीवी और बच्चे लकड़ियां चुनने के लिए उसी गार के करीब आए। गुर्बत से तंग आकर बुढ़िया ने हसरत से कहा कि अगर हातिम मिल जाए तो उसे पकड़वा कर इनाम हासिल कर लें और फाकों से निजात पा जाएं। बूढ़े ने तकदीर पर राजी रहने की बात की, मगर उनकी ये गुफ्तगू गार में मौजूद हातिम ताई ने सुन ली। गार में छिपे हुए हातिम ने जब गरीब बूढ़े और उसकी बीवी की गुफ्तगू सुनी तो उसका दिल भर आया। उसने सोचा कि अगर उसकी वजह से इन मोहताजों की परेशानी दूर हो सकती है तो खुद को छिपाए रखना मुनासिब नहीं। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताद के लिए कुछ कम न थे कर रुपया। चुनाचे वो गार से बाहर आया और बोला, ऐ अजीज, मैं ही हातिम हूँ, मुझे नौफिल के पास ले चलो ताकि तुम्हें इनाम मिल जाए। बूढ़ा इस बात पर आमादा न हुआ और बोला, मैं महज माल की खातिर तुम्हें दुश्मन के हवाले नहीं कर सकता। जब हातिम के बहुत इसरार के बावजूद बूढ़ा न माना तो आखिरकार खुद हातिम उसे लेकर नौफिल के दरबार में पहुंच गया। नौफिल ने हकीकत दरियाफ्त की तो बूढ़े ने सारा माजरा सच सच बयान कर दिया। हातिम मेरी खातिर खुद आपके पास आया है। ये सुनकर नौफिल हातिम की बुलंद हिम्मती और फयाजी से बेहद मुतासिर हुआ और बोला, वाह, तेरी सखावत और जवान मर्दी की क्या बात है। नौफिल ने हातिम का जब्त शुदा माल और इसबाब वापस कर दिया, उसका मर्तबा बहाल किया और बूढ़े को भी 500 शिफिया इनाम में अता की। मुसाहिब की जबानी हातिम ताई का किस्सा सुनकर दरवेश को मालूम हुआ कि सखावत सिर्फ माल देने का नाम नहीं बल्कि ईसार और इंसान दोस्ती का दूसरा नाम है। दरवेश के दिल में भी सखावत का जज्बा पैदा हुआ। उसने शहर के बाहर 40 दरवाजों वाली एक अजीम इमारत तामीर करवाई, जहां रोजाना मोहताजों और जरूरतमंदों में अशफियां तकसीम की जाती और हर साइल की हाजत पूरी की जाती। एक रोज एक फकीर आया, दरवेश ने उसे एक अशफी दी। वही फकीर बार बार मुख्तलिफ दरवाजों से आता रहा और हर मरतबा अशरफी लेता रहा, यहाँ तक कि 40 अशफियां जमा कर ली। फिर वो दोबारा पहले दरवाजे पर पहुंचा। दरवेश ने ताज्जुब से पूछा, तुम कैसे फकीर हो कि किनात का दामन छोड़ बैठे हो? फकीरी हिर्स और लालच का नाम नहीं। फकीर को चाहिए कि सब्र, किनात और तवक्कुल इख्तियार करे। खैरात जरूरत पूरी करने के लिए होती है, जमा करने के लिए नहीं। इस पर फकीर ने दरवेश को नसीहत करते हुए कहा कि हकीकी सखावत सिर्फ माल लुटाने का नाम नहीं बल्कि इसार, इखलास और खुदा की रजा के लिए दूसरों की खिदमत का नाम है। सखावत अगर सीखनी है तो बसरा की शहजादी से सीखो। ये बातें कहकर वो चला गया, मगर उसकी गुफ्तगू दरवेश के दिल पर गहरा असर छोड़ गई और शहजादी से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। एक रोज उसने सल्तनत का इंतजाम वजीर के सुपुर्द कर दिया और फकीरों का सा भेस बदल कर तन्हा बसरा की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसे हैरत हुई कि हर मंजिल पर आने वाले मुसाफिरों की बेहतरीन मेहमान नवाजी की जाती थी। ये सब इंतजाम बसरा की शहजादी की जानिब से था। बसरा पहुंचकर उसकी मुलाकात एक निहायत खुश अखलाक और सखी नौजवान से हुई। उसने मोहब्बत से कहा, मैं मुसाफिरों और फकीरों की खिदमत को अपना फर्ज समझता हूँ, आप मेरे घर तशरीफ ले चलें और मुझे खिदमत का मौका दें। दरवेश उसके साथ चला गया। वहाँ उसने बेमिसाल मेहमान नवाजी देखी। तरह तरह के उम्दा खाने, मेवे और लजीज पकवान पेश किए गए। खाने के बाद आराम

आसाइश का ऐसा इंतजाम किया गया कि दरवेश हैरान रह गया। 3 दिन तक वो इसी इज्जत और एहतराम के साथ वहां मकीम रहा। 4थे दिन उसने रुखसत ली। कुछ देर बाद एक ख्वाजा सिरा आया और दरवेश को एक और शानदार महल में ले गया, जहां पहले से भी ज्यादा इज्जत और एहतराम और आसाइशों का इंतजाम था। जहां दरवेश ने अपनी ख्वाहिश जाहिर करते हुए शहजादी बसरा के नाम एक रुका लिखा, जिसमें अपने इश्तियाक और मोहब्बत का इजहार करते हुए अर्ज किया, मैं दौलत का मोहताज नहीं, अपने मुल्क का बादशाह हूँ। सिर्फ आपका हुस्न, नेकी और शोहरत मुझे यहाँ तक खींच लाई है। रुका शहजादी तक पहुँचाया गया। कुछ देर बाद दरवेश को महल में बुलाया गया, जहाँ एक मोअज्ज़ज़ खातून ने शहजादी का पैगाम सुनाया और कहा, बादशाहजादी ने कहलवाया, मुझे तुम्हारी दरख्वास्त कबूल है, लेकिन मेरी शादी की एक शर्त है। पहले शर्त को पूरा करना होगा, फिर निकाह मुमकिन होगा। दरवेश ने फौरन जवाब दिया, मैं जानो माल से कुर्बानी के लिए तैयार हूँ, शर्त बयान कीजिए। अगले रोज एक शख्स बहरोज को बुलाया गया, जो शहजादी के तिजारती मामलात का निगरान था। उसने एक हैरत अंगेज वाकया सुनाया। बहरोज ने कहा, एक बार मैं शहर नीमरोज गया, वहाँ के तमाम लोग स्याह लिबास पहने हुए गमजदा नजर आते थे। किसी से उसका सबब पूछता तो कोई जवाब न देता। फिर उसने बताया कि एक दिन शहर के तमाम लोग एक मैदान में जमा हुए। कुछ देर बाद एक नहायत हसीन नौजवान नमूदार हुआ, उसके साथ एक गुलाम था। वो नौजवान एक अजीब चीज सब लोगों को दिखाता जाता और उसे देखकर हर शख्स बेख्तियार रोने लगता। उसके बाद उसने अपने गुलाम का सर कलम किया और वापस चला गया। कोई शख्स उस राज की हकीकत न बताता था। वहां से लौटकर मैंने ये वाकया शहजादी को सुनाया। बस तभी से शहजादी बसरा इस अजीब वाकये की हकीकत जानना चाहती हैं। उन्होंने अहद किया है कि जो शख्स इस मुअम्मा को हल कर देगा, वही उनका और उनके मुल्क का हकदार होगा। ये सुनकर दरवेश ने पुराज़म लहजे में जवाब दिया, अगर खुदा ने चाहा तो मैं इस राज की तह तक जरूर पहुंचूंगा और इस वाकये की मुकम्मल हकीकत मालूम करके वापस आऊंगा। दरवेश ने मलिका बसरा से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की तो उसकी दरख्वास्त कबूल कर ली गई। उसे शाही महल में ले जाया गया, जहां हुस्न शान और शौकत और नज्म तरतीब का ऐसा आलम था कि वो हैरान रह गया। मलिका के सामने हाजिर होकर उसने पहले उनकी फयाजी, अदल और मुसाफिर नवाजी की तारीफ की, फिर अर्ज किया, मैंने आपके मुल्क में जहाँ भी कदम रखा मुसाफिरों की खिदमत और मेहमान नवाजी का बेमिसाल इंतजाम देखा। मेरी हैरत ये है कि इतनी बेपनाह दौलत आखिर कहां से आती है। उस पर मलिका ने फरमाया, एक बड़े बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह ने फख्र से कहा कि तुम्हारी इज्जत और इज्मत मेरी वजह से है। 6 बेटियों ने फौरन तायद की, लेकिन सबसे छोटी बेटी, जो बाद में यही मलिका बनी, खामोश रही। जब बादशाह ने वजह पूछी तो उसने अदब से अर्ज किया, जो कुछ इंसान के नसीब में लिखा सब अल्लाह ताला की अता है। ये बात बादशाह को नागवार गुजरी और गुस्से में आकर हुक्म दिया, इसके जेवरात उतार लो और इसे किसी वीरान जंगल में छोड़ाओ, फिर देखते हैं इसके नसीब क्या करते हैं। हुक्म की तामील हुई और शहजादी को एक सुनसान बियाबान में तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन अचानक महल के आसाइशों से महरूम होकर भी शहजादी ने सब्र और शुक्र का दामन नहीं छोड़ा। मलिका ने कहा, खुदा जो चाहता है वही होता है और इसी में मशीयत और उसकी मशीयत में बंदे की भलाई पोशीदा होती है। कई दिन भूख और तकलीफ में गुजर गए, जिस्म कमजोर हो गया मगर उम्मीद बाकी रही। इसी हालत में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग दरवेश वहां पहुंचे और अपनी इस्तेताद के मुताबिक मलिका की खिदमत शुरू कर दी। वो रोज शहर जाते, जो कुछ मिलता लाते और मलिका को खिलाते। कुछ दिन बाद इत्तेफाक से मलिका के पास एक कीमती मोती निकला। उन्होंने वो दरवेश को दिया, उसे बेचकर कोई इंतजाम किया जाए। मोती फरोख्त हुआ तो मलिका ने वहाँ एक इमारत तामीर करने का इरादा किया। जब जमीन खोदी गई तो एक खुफिया दरवाजा मिला, जिसके अंदर एक खजाना मौजूद था, जिसमें जवाहरात और रशफियाँ भरी हुई थी। मलिका ने उस खजाने से फायदा उठाकर एक अजीम शान शहर, महल, बाग, किला और मुसाफिर खाना तामीर करवाने का हुक्म दिया। रफ्ता रफ्ता इस आलीशान इमारत की शोहरत बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने हैरान होकर दरियाफ्त किया कि ये अजीम तामीर किसने करवाई है। जब हकीकत मालूम ना हुई तो उसने खुद वहां आने का इरादा किया। मलिका ने अदब से बादशाह को दावत दी

उनकी शानदार मेहमान नवाजी की। बादशाह ने पूछा, तुम किस मुल्क की शहजादी हो और यहाँ किस तरह पहुँची? तो मलिका ने अपनी पूरी दास्तान सुना दी और बताया कि वो उन्हीं की शहजादी है जिसे कभी जंगल में छोड़ दिया गया था। ये सुनते ही बादशाह जज्बात से भर गए और उसे गले लगा लिया। बादशाह के इंतकाल के बाद सल्तनत भी उसी बेटी को मिली। यही इस दौलत की हकीकत है, सच्ची है, खुदा की अता को जवाल नहीं। इसके बाद दरवेश सफर पर रवाना हो गया। जब शहर नीमरोज पहुंचा तो देखा कि लोग स्याह लिबास पहने गम में मुब्तला हैं। चांद रात के दिन सब लोग एक मैदान में जमा हुए। अचानक वहीं पर वो सवार नौजवान नमूदार हुआ। उसने हसबे मामूल एक अजीब चीज लोगों को दिखाई जिसे देखकर सब रोने लगे, फिर अपने गुलाम को कत्ल करके वापस जाने लगा। कई बार कोशिश करने के बाद दरवेश उसका पीछा करने में कामयाब हो गया, लेकिन जवान ने उसका कत्ल करने के लिए तलवार बाहर निकाल ली। तभी दरवेश ने अदब से सलाम किया। उस पर जवान ने हैरत से कहा, ऐ फकीर, अपनी जान खतरे में क्यों डालता है, जा वापस चला जा। लेकिन दरवेश ने उसका पीछा जारी रखा। जवान जंगल के अंदर एक बुलंद चार दीवारी तक पहुंचा। उसने जोरदार नारा लगाया तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वो अंदर चला गया। कुछ देर बाद एक गुलाम बाहर आया और दरवेश को भी अंदर ले गया। वहां उसने देखा कि वो जवान निहायत शान और शौकत के साथ बैठा है। रात के वक्त जब दोनों तन्हा हुए तो जवान ने पूछा, ऐ अजीज, आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत है जिसने तुझे अपनी जान खतरे में डालने पर? दरवेश ने पूरी दास्तान सुना दी और अर्ज किया, मुझे उम्मीद है कि आपकी इनायत से मेरी मुराद पूरी होगी। ये सुनकर जवान ने एक ठंडी आह भरी और बोला, इश्क के दर्द को वही जानता है जो खुद इस आग में जला हो। आफतों को इश्क की आशिक से पूछा चाहिए, क्या खबर फासिक को है सादिक से पूछा चाहिए। उसकी बातों से दरवेश को यकीन हो गया कि ये नौजवान भी इश्क के किसी आजमाइश में गिरफ्तार है। चुनाचे उसने दरख्वास्त की कि अपनी सरगुजश्त बयान करे। तब नौजवान ने अपनी हैरत अंगेज कहानी सुनाना शुरू की और कहा, मैं अकली में नीमरोज के बादशाह का बेटा हूँ। मेरी पैदाइश के वक्त नजूमियों ने पेश गोई की कि मैं अजीम बादशाह बनूंगा, लेकिन 14 बरस की उम्र तक एक सख्त आजमाइश से गुजरना होगा। इसी खौफ से बादशाह ने मुझे एक महफूज बाग और महल में परवरिश दी, जहाँ सूरज और चांद की रोशनी तक मुझ पर ना पड़ने दी गई। मैंने वहीं तमाम उलूम और फनून सीखे और दुनिया की हर नेमत पाई। एक दिन अचानक मैंने आसमान में एक अजीब गरीब मंजर देखा। एक जवाहरात से आरास्ता तख्त नीचे उतरा जिस पर एक निहायत हसीन परी बैठी थी। वो मेरे पास आई, मोहब्बत भरी बातें की और मुझे अपना असीर कर लिया और फिर बोली, दिल तो चाहता है कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर है। इन चंद लम्हों की मुलाकात ने मेरे दिल में उसके लिए दीवानगी पैदा कर दी। अभी मैं इस खुशी में डूबा ही हुआ था कि अचानक परीजादों ने आकर कोई खबर दी। परी का चेहरा बदल गया और वो रुखसत हो गई और मैं जुदाई के गम में दीवाना हो गया। इस इश्क के बदौलत क्या क्या खराबियां हैं, दिल में उदासियां हैं और इस तराबियां हैं। मैंने न खाया न पिया न आराम किया, तबीब हकीम दुआएं और तावीज सब बेअसर रहे। एक सौदागर के मशवरे से मुझे एक बड़ी जोगी के पास ले जाया गया। उसके इलाज से बदन तो संभल गया मगर दिल का दर्द बाकी रहा और मैं हर वक्त परी की याद में मुब्तला रहने लगा। न जानू किस परी रू की नजर हुई, अभी तो था भला चंगा मेरा दिल। इस तरह एक दिन शहजादे को एक किताब मिली जिसमें अजीब उलूम और जिनो परी की तस्खीर के राज थे। इस इल्म के जरिए उसने दोबारा अपनी महबूब परी को बुलाया, वो वापस भी आई। शहजादा उसकी मोहब्बत में इस कदर मगन हो गया कि उसे दुनिया की किसी चीज की फिक्र ना रही। परी उसकी वफादारी और वादा निभाने पर हैरान थी, मगर वो बार बार उसे एक बात की नसीहत करती थी, अपनी इस किताब की हिफाजत करना, क्योंकि इसमें ऐसी ताकत है जिस पर जिन्नात की नजर है। अगर तुम किसी वक्त गफलत करोगे तो वो इसे चुरा ले जाएंगे। शहजादा भी उस किताब को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखता था और हमेशा अपने पास रखता था, मगर एक रात उससे गफलत हो गई। परी के करीब बैठा हुआ

0: बातों में ऐसा खो गया कि उसे किताब का ख्याल तक न रहा। उसी लम्हे परी ने उसे मुतनब्बी किया, ये किताब मुझे दे दो, इसमें आजम है, इसकी बेहरमती ना करो। शहजादा इश्क की सरमस्ती में ये न समझ सका कि उससे कितनी बड़ी गलती हो रही है। उसने बेखबरी में वो किताब परी के हवाले कर दी। परी ने जब ये देखा तो अफसोस से कहा, देखो आखिर तुमसे लग्जिश हो ही गई, तुम मेरी नसीहत भूल गए। ये कहकर वो बेहोश हो गई। शहजादे ने देखा कि एक देव उसके सिरहाने खड़ा है और किताब ले जाने की कोशिश कर रहा है। शहजादा उसे पकड़ने दौड़ा, मगर देव ने वो किताब दूसरे देव के हवाले कर दी और वो उसे लेकर भाग गया। शहजादे ने फौरन वो मंत्र पढ़े जिनसे जिन्नात काबू में आते थे। एक देव तो उसके असर से बैल बन गया, मगर अफसोस कि परी को होश ना आया। उसी लम्हे शहजादे को एहसास हुआ कि एक छोटी सी गफलत ने उसकी सारी खुशियां छीन ली। उसके बाद उसका दिल दुनिया से उचट गया, वो तन्हाई में रहने लगा और इश्क व जुदाई के गम में मुब्तला हो गया। यही गम उसे हर माह उस मैदान तक ले जाता था जहां वो अपने दर्द को दुनिया के सामने जाहिर करता था। इस हादसे के बाद शहजादा दुनिया से बेजार हो गया। वो बाग में तन्हा रहने लगा और हर महीने एक बैल पर सवार होकर शहर जाता, एक मर्तबान तोड़ता और गुलाम को मार देता ताकि लोग उसकी हालत देखें और शायद कोई दुआ करें। इस तरह शहजादे ने दरवेश को अपनी पूरी दास्तान सुना दी। दरवेश ने उसे तसल्ली दी और कहा कि वो उसके इश्क और मुसीबत को समझता है और उसकी मदद से पीछे नहीं हटेगा। शहजादे से वादा करके दरवेश 5 साल तक जंगलों और पहाड़ों में परी का सुराख ढूंढता रहा। आखिर मायूस होकर एक पहाड़ से गिरने का इरादा किया था कि तभी एक अजीब सवार नमूदार हुआ और उसे रोक कर कहा, अपनी जान मत खो, थोड़े दिनों के बाद तुम अपने मकसद में कामयाब होगे। दरवेश को उम्मीद पैदा हुई कि शायद अब इस सफर का अंजाम खुशी पर होगा। और इसी के साथ आज की दास्तान का ये हिस्सा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अपनी मेज़बान शाज़िया खान को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगी बाग़ो बहार की अगली दास्तान और नए एहसास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने तासुरात हमारे व्हाट्सएप नंबर 7991778157 पर इरसाल करना ना भूलिए। आदाब।
1: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से उर्दू प्रोग्राम नशर किया जा रहा था।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। थोड़ी देर में आप सुनेंगे लोक संगीत।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज के हमारे कलाकार हैं सुनील कुमार यादव। सबसे पहले आइए सुनते हैं ये देवी गीत।

आप सुन रहे थे लोक संगीत कलाकार सुनील कुमार यादव। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से सुन रहे थे। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। इस कार्यक्रम में आइए हम आपको सबसे पहले सुनवाने जा रहे हैं सुमन कल्याणपुर और साथियों की आवाज़ में ये गीत है फिल्म जब से तुम्हें देखा।

फूलों की रंगत और भी खिलने लगती है जब तेरे चेहरे पर मुस्कान खिल उठती है। यूं ही खिलखिलाते मुस्कुराते रहना तुम, तुम्हारी हंसी से मेरी जिंदगी चहक उठती है। अब आइए सुनते हैं एचडी बर्मन के संगीत निर्देशन में, किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत है फिल्म प्रेम पुजारी से, रचना नीरज की।

अब आइए सुनते हैं कश्मीर की कली फिल्म का ये गीत। SH बिहारी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है OP नैयर ने, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की।

हम किसी से कम नहीं, ये फिल्म का नाम है जिसका ये गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। मजरूह के लिखे इस गीत को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

प्रणीता फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज़ में। स्वानंद किरकिरे ने इस गीत को लिखा था, संगीत शांतनु मोहित्रा का था। अब आइए हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ में ये गीत फिल्म लगान से। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत ए आर रहमान का।

अब आइए सुनते हैं के और वसुंधरा दास की आवाज़ में ये गीत है फिल्म मैं हूं ना फिल्म से। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत दिया है AR रहमान ने।

1947 अर्थ, ये फिल्म का नाम था जिसका ये गीत अभी आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाज़ में। अब आइए हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मुन्ना भाई MBBS फिल्म का ये गीत, आवाज़ है श्रेया घोषाल और विनोद राठौर की।

ये गीत है फिल्म प्रेम ग्रंथ से। आवाज़ है अलका याग्निक और विनोद राठौर की। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। मीडियम वेव 241.56 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स, वेव्स OTT पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। प्रस्तुत है आपके फरमाइशी पत्र पर आधारित कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत। और आज ये कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त अनुपम। आप सभी को हमारा नमस्कार। तो इस कार्यक्रम में आपके चंद चुनिंदा पत्रों को लेकर हम हाजिर हैं। तो शुरू करते हैं पत्रों के पढ़ने का सिलसिला, क्योंकि ये कार्यक्रम पत्रों पर ही आधारित है। तो कार्यक्रम में पहला पत्र हमें प्राप्त हुआ है गोलाघाट बक्सर का, भेजने वाले श्रोता विजय केसरी, गौरीशंकर केसरी, शंभुनाथ केसरी, नया बाजार बक्सर से राजेश केसरी, पंकज केसरी, रोहन केसरी, लेवा खेल मोहल्ला चांद्र विश्वास से नारायण भाव विठल, राव खर्चे, ललिता रानी खर्चे, परी संजना खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, ब्रोनो उषा सोरना खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, ग्राम अलगी डांड पाली जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से चंद्रपाल मरावी, ओम प्रकाश मरावी, राम प्रकाश मरावी, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा, मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से पन्नीलाल सागर, बेनी सिंह, धर्मवीर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश, रूबी भारती, रचना, एकता भारती, कुमारी दिव्या भारती, ममता चौधरी, श्रीमती ओमोती भारती, खनक, नकुल, नैन्सी और केश लता। ये पत्र भेजा है सरायना का रामनगर से शमीम भाई, शबाना, सहाना, सोनम, संश, आकिब, बलम, रफीक और रिजवाना। बोरी खुर्द जाफाबाद से सुधाकर, राजे जाधव।

डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव जगुताई साक्षिताई संचित द्वायाल प्रथमेश देशमुख स्वामी देशमुख करहा कुमारी प्रणाली देशमुख मोताका कुमारी सानवी देशमुख करहा। ये पत्र में भेजा है शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार अंजुलता आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव ने। लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू रिंगनी से दिनेश वर्मा भिलाई से मुकेश शर्मा दतरंगी से भागवत वर्मा। तहसील ईशागढ़ जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश से विनोद नारायण कुशवाहा नारायण सिंह कुशवाहा मनकुबाई कुशवाहा निशा कुशवाहा प्रियंका कुशवाहा इश्का कुशवाहा कपिल कुशवाहा ब्रजभान कुशवाहा बालाराम मेहर नरेश प्रजापति लक्ष्मण रेखवार और दाता सिंह शेखावत। आप सभी को हम सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम के आरंभ में नीरज का लिखा हुआ गीत संगीत शंकर जयकिशन का आवाज मोहम्मद रफी की फिल्म का नाम कन्यादान।

जी हाँ दोस्तों, आपने जो ख़त लिखे और हमें मिले और हमने इसको शामिल किया, और जब भी आप ख़त भेजेंगे, पत्र भेजेंगे, तो उसको हम शामिल ज़रूर करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि कोई छूटने ना पाए। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं अगला पत्र किसने भेजा है। यह है जमनिया गाजीपुर से सूरज जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव जायसवाल, आर्य जायसवाल, जमनिया गाजीपुर से ही उर्मिला जायसवाल, सरोज जायसवाल, सुमन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, स्टेशन रोड जमानिया से आशुतोष जायसवाल, अभिनव जायसवाल, दिलीप जायसवाल, दुर्गेश जायसवाल का भी पत्र मिला है। महाराष्ट्र बीट शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल, सरला प्रकाश, करोता लोहता वाराणसी से अशोक कुमार प्रजापति, मीना प्रजापति, अंजलि प्रजापति, आकाश प्रजापति, शिव प्रकाश प्रजापति, मोना प्रजापति और राहुल प्रजापति, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर, छत्तीसगढ़ भाटापारा दत्तरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा, धनबाद से प्रभात रंजन प्रसाद, शोभा रंजन प्रसाद, रितेश रंजन प्रसाद, स्वाति रंजन प्रसाद, प्रतिभा रंजन प्रसाद, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित। यह खत हमें भेजा है पतली गली वाराणसी से मुश्ताक सुलेमानी, शाहिद मुश्ताक वाला, साजिद मुश्ताक वाला, नासिर मुश्ताक वाला, जावेद मुश्ताक वाला, अनारबाग बनारस से गुड़िया सुलेमानी, शाहिदा सुलेमानी, रजीना सुलेमानी, आयशा सुलेमानी, साकिब सुलेमानी, जाहिद सुलेमानी, हसीना सुलेमानी, कुटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांचल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय, गढ़नौखा लालगंज बिहार से आप हैं राजकिशोर चौहान, संदेश कुमार चौहान, अनुराग कुमार चौहान, अनिल कुमार अकेला बड़क चौहान, त्रिलोचन घाट वाराणसी से रीता केशरी, संगीता केशरी, रंगोली केशरी, कशिश केशरी, टिया केशरी और इनके मम्मी पापा, तकिया मड़ियाँ जौनपुर से जमील अहमद शाह, मोहम्मद अल्तमश शाह, मोहम्मद दानिश शाह, मोहम्मद साजिद शाह, अंसार टोला मड़ियाँ जौनपुर से निगार बानो, रहनुमा बानो, राहत जहाँ, रोशन जहाँ, शाहिस्ता नाज, महसूल सीतामढ़ी बिहार से अक्रम हुसैन प्रिंस, बेगम मिश्रत अक्रम, नवासी हुमैरा नाज, नवासी सुमैरा नाज, नुजहत जहाँ नाज, शाजिया शाहिन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख, चीना शेख का भी खत हमें मिला। अस्तुपुरा मौनाथ भंजन से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, अबू बकर अली अंसारी, सादिक साजिद और सारिक, बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, इरम परवीन, अजीमाबाद मऊ से आमिर अखलाक, अवनीश कुमार मिश्रा, कुमारी रानी मिश्रा, वलीदपुर मढ़ा से राजेंद्र यादव भारती, उषा देवी भारती और सिराज अहमद फारूकी। आप सभी सुनना चाहते हैं प्यासा सावन फिल्म का गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ में, गीतकार संतोष आनंद, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

भाई मेघों से तो हम भी यही कहेंगे कि अभी कहीं मत जाइए, अब बहुत हो चुका, अब थोड़ा बरस दीजिए ना, गर्मी अब ख़त्म कीजिए, बहुत हो गया आपका जुल्म, अब इस जुल्म को थोड़ा सा कम कीजिए। यही गुजारिश हम मेघों से यही करेंगे कि आप कहीं मत जाइए, अब तो बरस जाइए। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने तो मेघों से भी अपील की है, देखते हैं वो कितना सुनते हैं, है ना दोस्तों। तो कार्यक्रम में अगला खत हमें भेजा है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अक्रम अंसारी और अल्ताफ अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, सारिमपुर बक्सर से आसमा खातून अंसारी, राज एस टी अंसारी, महताब अंसारी, आफ्ताब अंसारी और मिराज अंसारी, पटेल नगर मुगलसराय से सुनील कुमार सिंह, आस्था सिंह, शशि सिंह और आकाश सिंह का भी पत्र हमें मिला है, असालतपुरा मुरादाबाद से फरीद अंसारी, बेलाल अंसारी, जुबैर अंसारी, करुला मुरादाबाद से मिराज अंसारी, वसीम अंसारी, डॉक्टर अख्तर हुसैन, ये पत्र हमें भेजा है खमरिया बिलासपुर से साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति और प्रतीक कुमार ने, नई सड़क वाराणसी से शाही सद्दू, मलका मुमताज, इंशा एली तारिक, कोदई चौकी देहलू गली से बेबी आलम नफीस, अनवर भाई जरीवाला, कपड़ा मार्केट से गुड्डू शमा, रूमा इशरा, शालू आमिर और सारी, पीएमसीटी बनारस यूपी से आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती सिंह, विनायक सिंह, मोहिनी सिंह, मोहित सिंह, छोटी पियरी वाराणसी से काशी प्रसाद सिंह, मदन कुमारी, राधा रानी वर्मा, पुष्पा ताम्रकार, विजय लक्ष्मी, कुसुम लता सिंह, हर्षित पुलकित और इनकी दादी जी, मॉडल टाउन पानीपत से संदीप गोगलानी, आशा गोगलानी, पूजा आन्या अनाया, नेहा सागर, गुम्बर हिमांशु गोगलानी, इम्मू कुरेशी और सुधीर नूतन का भी पत्र हमें मिला है। आप सभी को हम सुनवाने जा रहे हैं आप सभी की पसंद पर लोक परलोक फिल्म का गीत, शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाज किशोर कुमार और आशा भोसले की।

0: चमकोगी।
1: जी हाँ, हमारा भी सवाल ये है कि बादल कब बरसोगे? अब तो बरस जाओ भाई, हमने भी इस गाने के माध्यम से आपसे कहा है ना, तो हमें लगता है ऊपर वाला जरूर सुनेगा और मानसून जल्दी आएगा। मानसून को हम ये बोलेंगे, ए मानसून कम सुन कम सुन, अब बहुत ज़रूरत है आपकी। तो मानसून जैसे आएगा हम सभी झूमने गाने लगेंगे, है ना दोस्तों? और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पिंटर बाबू फिल्म का गीत, और इस गीत को लिखा है मनोज कुमार ने, संगीत है उत्तम सिंह का और आवाज़ लता मंगेशकर और साथियों की। और इस गीत के सुनने के ख्वाहिशमंद आप सभी शिवाजी चौक कटनी मध्य प्रदेश से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, संजीव वर्मा, रज्जन रजक, राजू ताम्रकार, दिलीप वर्मा, प्रकाश सोनी, यहीं से हैं मनोज नामदेव, सुनील जैन, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, लालू सोना मोना, हनी यश सौम्या और उनके मम्मी पापा, बड़ी गैबी वाराणसी से अरुण कुमार मालवी, दर्द शशि मालवी, आकाश मालवी, हर्ष अनमोल मालवी, श्लोक, यहीं से त्रिभुवनाथ मालवी, मंजू मालवी और इनके परिवार के सभी सदस्य, नई दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, पिंटू दीवाना, सुरेंद्र कुमार, सुमन जगमोहन साहनी, सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुल्डाना महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े, आकाश कुमार का भी पत्र मिला, शिवाजी चौक राजिम से श्वेता देवी, सुरुचि देवी और लबी श्रीवास्तव, ये पत्र हमें भेजा है, करवाड़ी प्रताप पर प्रयागराज से रामप्रकाश गौतम, मंजू गौतम, प्रेम चंद्रपाल, डीपी यादव, विजय कनौजिया और सौरभ वर्मा, जतका किशनपुर से आलम दिलकश, सबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख और चांदनी नाज, यश चौहान, अंश चौहान, संदीप चौहान, माधवी चौहान, मेन रोड बनारस, दरियापुर जिला अमरावती से इन्होंने पत्र हमें भेजा है, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा, अकोला महाराष्ट्र से विजय वडालकर, लता वडालकर, वैष्णवी और रांझे के कल्याण इष्ट से विनय वडालकर, कल्पना वडालकर, ऋषिकेश और आदेश। तो आप सभी सुनिए अपनी पसंद पर पेंटर बाबू फिल्म का ये गीत।

भाई ठंडी लहर के किनारे तभी हम आएंगे जब मानसून आएगा, है ना। तो हम शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं मानसून का, बारिश की बूंदों का। और इस समय आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से अपने रेडियो दोस्त अनुपम के साथ। कार्यक्रम का नाम है आपके पत्र आपके गीत। कार्यक्रम में अगला पत्र भेजा है स्टेशन रोड बस्ती से जयप्रकाश भारती, नीलेश कुमार, कविता और स्वाति। ये पत्र भेजा है बड़ भुईली पोस्ट अदलहाट जिला मिर्जापुर से आरएसपी खन्ना, नशरुद्दीन अंसारी, गुफरान अंसारी, अकबर अंसारी, झाचू अंसारी, सिद्दीकी अंसारी, मंजूर कुरैशी। हरिपुरा झज्जर से प्रदीप बधवा, आशा बधवा, नीतेश बधवा, गीतेश बधवा, मोक्ष बधवा, यश बधवा, निखिल बधवा। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक, समस्त डागला परिवार। राजा बाजार बिहिया से सुरेश केशरी, पूनम केशरी, प्रतीक केशरी, थाना रोड बक्सर से ओमानंद केशरी, धनानंद केशरी, विनोद केशरी, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से डीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद बजाज, करनाल से जग्गी दुआ, कर्नाट प्लेस नई दिल्ली से

डॉक्टर अर्चना और पुरुषोत्तम चितबड़ागांव बलिया से, जीत गुप्ता, रत्ना गुप्ता, नेहा निधि, आयुषी और अनुष्का, लालगंज रायबरेली से ये पत्र हमें भेजा है के साहू, अमिता साहू, स्वस्तिका, रिशु, इला और वीनस ने। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, मन्नू सुभाष, योगी सुशील, योगी बब्बू और डब्बू। गांव फरांसी से राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह डूडी। नई सड़क वाराणसी से शाही सद्दू, मलका मुमताज, इंशा इली तारिक। कपड़ा मार्केट से गुड्डू शमा, रूमा इशरा, शालू आमिर और सारिक। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राजपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का, तन्मय गजभिये। महागौरी मंदिर खजूरी खास दिल्ली से पृथ्वी सिंह नेगी, सौरभ सिंह नेगी, गौरव सिंह नेगी, मिट्टी और कुहू। ये पत्र हमें भेजा है संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुन्निशा शकील अहमद, डॉक्टर शहबाज खान और डॉक्टर सलीम अहमद ने। आप सभी सुनना चाहते हैं पत्थर के सनम फिल्म का गीत। आवाज लता मंगेशकर और मुकेश की। इस गीत को लिखा है मजरू ने, संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम में अगला पत्र भेजा है पटेल नगर मलोड पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया, कच्ची सराय दालमंडी वाराणसी से मोहम्मद नसीम, मोहम्मद सैफी, मोहम्मद हसन, तबस्सुम बानो नाजिया रहनुमा, चौराहट नई बस्ती पड़ाव से रोशन अली, सिराज आलम, मोहम्मद समझ, रोजी और अलीसा, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका वंश बत्ता, ताज मोहम्मद अंसारे, गुलाम साबिर राही मेहराज जहां ने पत्र भेजा है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रयांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर, चौराहट नई बस्ती पड़ाव से रोशन अली, से राज आलम, मोहम्मद समद, रोजी, अलीसा, इनका पत्र एक बार शामिल हुआ। और ये पत्र भेजा है अहमदाबाद से भालचंद वटके, जतिन मेहता, विकास वटके, फुलवा मेहता, नीलेश वटके, नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, रिया रीत, स्वीटी सागर, अंशु, रितिका, रिचा, चितरंजन, उमेश, सरोज, रेखा, ऋषभ राजावत और उनकी दादी जी, बाबा बैजनाथ धाम से मनोज केशरी, पूजा केशरी, महादेव केशरी, श्रद्धानंद केशरी, रोशनी केशरी। सुनिए अपनी पसंद पर खिलौना फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम में अगला खत में भेजा है ग्राम कुंडावल तारा पोस्ट लाल रोड स्टेशन जिला देवरिया उत्तर प्रदेश से रतिनाथ त्रिपाठी राखी आर्या आयंद्री ओमनाथ सारंग शिवांग रोली अदिति माताजी निर्मला त्रिपाठी शफी मोहम्मद सोलंकी शाहरुख खान मांगे खान शहीद का नीदू कुमारी इसरोल बाड़मेर राजस्थान से मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से दिलशाद हुसैन फातिमा सोगरा वकार हैदर कनी सकीना और हसीना दिलशाद ये पत्र हमें भेजा है उदिता और सुचिता विश्वकर्मा ने देवरिया उत्तर प्रदेश से अतरौली गाजीपुर से हनुमान चौधरी रेखा पांडे संतोष पांडे प्रगति पांडे और शिवम पांडे चौखंडी हाथी बाजार वाराणसी से पटेल नगर मुगलसराय से सुनील कुमार सिंह अशोक विहार कॉलोनी पहाड़िया वाराणसी से अनिल गुप्ता गोंड रमा गुप्ता गोंड अंकुश कुमार गुप्ता पूजा गुप्ता गोंड अविरल अग्रिम गोंड पंचेरी जम्मू से राकेश कंगरोत्रा और अनिता कंगरोत्रा लल्लापुरा वाराणसी से अलीसा आयान खान अलीजा और एनुल खानगढ़ इमरती यादव ग्राम बरठी पोस्टकल दिया चंदौली से परवेज अहमद फागु सुनकर सुकुलपुरा वाराणसी से

ग्राम बर्दीपुर आसाम से देवजीत दास, जितेंद्र कुमार दास, शिल्पी रविंद्र ज्योति दास, अनूप कुमार भट्टाचार्य। सुनिए अपनी पसंद पर धन दौलत फिल्म का गीत, किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाज में। इस गीत को लिखा है मजरू ने, संगीत राहुल देव बर्मन का।

कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनना चाहे आप सभी ने मसीता डबवाले से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, ये हैं धरसीमा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना, अरुणा यादव, अनुराग और अल्पना यादव।

0: एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता कांगड़ा, निखिल कांगड़ा, यहीं से बबीता बोध, अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, एस आर कांगड़ा, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, सहवर टाउन जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, रमन साहू, पवन वर्मा, मुशीर खां, गीता नायक, अलका साहू, अंजलि वर्मा और शाहाना सबनम। ये पत्र हमें भेजा है बठेना से बलकर्णा अंजनी वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा, चटौदा सारागांव से सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी कृत वर्मा, टिकरा पारा धमतरा छत्तीसगढ़ से संतोष कुमार ध्रुवंशी, श्रीमती सरोज ध्रुवंशी, संजय कुमार ध्रुवंशी, कुमारी किरण लता ध्रुवंशी, नजरबत्ती ध्रुवंशी और मास्टर शानू ध्रुवंशी, दुर्गई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता परभणी से सी आर कुलकर्णी, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, सुंदरपुर वाराणसी से प्रीति, सौरभ कुमारी, रितु सान्याल, रिया, मिली, मेघना और लकी, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, रुचि विनीत आहुजा, निमित और विशाल गगनेजा, पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, गांव भड़बूजी आगर मध्य प्रदेश से रघुनाथ मालवी, भंवर भाई, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, श्याम बाबू, दुर्गा, मधुबाला, विनोद, विशाल, मिलन और ओम प्रकाश, करणवाला सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, राधा, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान और मेहरनगर उमड़खेड़ से अभिजीत गवाड़कर, राही, सरिता गवाड़कर, सिद्धांत गवाड़कर, बंटी, विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवाड़कर, वैशाली गवाड़कर, कुमारी ध्वनि गवाड़कर, परी और प्रिंस एकांश। कार्यक्रम के अंत में सुनिए किनारा फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और भूपेंद्र की आवाज में, शब्द रचना गुलजार की, संगीत आर डी बर्मन का।
1: होते होते वो आवाज डूब

जी हाँ दोस्तों, चेहरा बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन आवाज़ शायद यही रहेगी। इसी आवाज़ को फिर हम आवाज़ देंगे, इसी ख्वाहिश के साथ कि होगी फिर मुलाकात। आपके पत्र, आपके गीत कार्यक्रम समाप्त करने की अपने रेडियो दोस्त अनुपम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था। अब आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
3: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं, ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
3: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में सीआईईटी एनसीईआरटी के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
2: जी।
3: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं।

0: की बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, बड़ा खूबसूरत लिखा है।
1: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया, जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
0: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया, अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
1: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं, उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का, लिखते हैं,
1: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षा प्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और आवासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
1: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
1: इसका उत्तर है साथियों, भीम बैठका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न, हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था, बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
1: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न, हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
1: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
0: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
0: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर, और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधवा, ले आया लकड़ी।
2: आ, इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया? अम्मा,

0: अम्मा अम्मा देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा। हाँ।
1: अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का, तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता। रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
2: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूं पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती हैं, काम तो चल जाता है ना।
1: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
2: अच्छा
1: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए कुछ समझता तो है ना। हाँ
2: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं, ना लकड़ी की कमी ना फल कंद की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूं सारे गहना गरिया मात।
1: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो। हाँ,
2: अरे अरे रोने लगी। अरे सुन तो, अच्छा अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
0: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं, कोई बहाना बना देंगे। ठीक
2: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
1: क्या भूल बातें कर रहे हो दोनों?
2: कुछ नहीं,
1: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी। हाँ।
2: नहीं नहीं नहीं,
1: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? अपने सामने कटवाऊंगी पेड़। अब तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
2: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
0: हाँ माँ, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं।
1: अरे चुप, जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं, मैंने तो सोच लिया है मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।

0: चुब्बा चुब्बा क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
0: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? हराम, क्या सपना देखा तूने?
2: अम्मा मुझे डर लग रहा है अम्मा।
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
2: अम्मा अम्मा मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा अम्मा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा।
0: चुप्पा
2: अम्मा। अम्मा जोर जोर से रोया, मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
0: चुप्पा चुप्पा,
1: सोचा बेटे सोचा, डर मत। अरे वो तो सपना था। सोचा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ यहाँ, है? सोचा बेटा सोचा सोचा, शाबाश। अच्छा बेटा है ना, चुप्पा तो सोएगा। सोचा सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये।
0: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
1: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है, जा जा सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, पुतवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू।

0: चल
1: चल, तेरे यही हट है तो चल चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ क्या हाथों से काटोगे?
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है
1: वो।
0: चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी।
1: चलो
2: चलो।

0: अरे मुंह क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस।
3: साड़ी लूंगी, गहना गरिया लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी, मैं तो साड़ी लूंगी।
0: अरे बाप रे, तेरे लिए इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा उघेरा होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
0: फिर भी
1: अम्मा तू भी चले वापस?
0: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
1: अम्मा क्या सोच रही है?
0: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
0: हाँ
2: चलो इसी को काट देते हैं।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
1: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
0: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी? तो फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे रे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है, ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
0: अरे बात तो तुम्हारी सच है।
1: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना उनमें से एक को काट देते हैं।
0: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवा?
2: ये
0: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर तो।
2: फूल तो हैं, फल भी आएंगे, अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
0: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
2: अच्छा तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है?
0: क्यों?
2: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
1: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
0: हाँ हाँ
2: चलो
0: चलो, आगे चलकर देखते हैं।
2: चलो देखो ये
0: पेड़ देख लो।
1: अम्मा अम्मा वो देखो ओक का पेड़, और वहीं बबूल भी है। चलो अम्मा काटे
0: चलो, इधर से निकल कर आओ।
1: अच्छा
0: आई, क्या हुआ चुप्पा?
2: क्या हुआ?
1: अम्मा अम्मा कांटा चुप गया। आई
0: अरे दिखा दो।
1: अम्मा लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
2: ठीक है नहीं काटेंगे। हाँ।
1: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे है ना?
2: हाँ बेटा ये देखो, ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और तार।
0: हाँ।
2: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा?
0: अरे नुकसान भी क्या है?
2: बहुत नुकसान है, हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
0: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो। ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल?
2: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़े मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
0: क्यों?
1: देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
0: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है, उसे तो काट

0: डांटो कम से कम।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, उसे छोड़ दो। देखो अम्मा, इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
2: हाँ।
1: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ, अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा?
2: हाँ बिल्कुल।
3: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है। बतवा, रहने दे इसको भी।
2: अच्छा।
3: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है। तू रहने दे इस पेड़ को तो।
2: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
1: अम्मा, जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
3: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। लो, इसमें हंसने की क्या बात है, चलो ढूंढो ना।
2: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया, अब किसे काटे?
3: क्या, सारे पेड़ों को बख्श दिया?
2: और क्या।
3: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
2: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद हैं। जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
3: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
0: अरे चुप।
2: क्या हुआ?
3: अरे चुप्पा। हाँ, पेड़ अब नहीं कटेगा, तो यही बात थी ना। तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है,
2: तू समझ गई है?
1: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है। अब तू ही बता किसे काटे।
3: रहने दे रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझी को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
2: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
3: फिर कैसे?
2: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
3: चल।
2: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुले आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली, फल, सब्जी, महुआ, कटहल बेचेंगे। हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
1: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
2: बोल ना।
3: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का। चल।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के पांच पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
3: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
2: किसी ने कहा,
4: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
2: किसी ने कहा,
5: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
2: किसी ने कहा,
6: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
2: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
6: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
2: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
3: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना

0: ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, उसके पहले ये संदेश।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए
7: 0542227658।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं रश्मि चौधरी। इनके स्वर में पहले सुनिए ये भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज की कलाकार थी रश्मि चौधरी। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स। मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स। वेव्स OTT पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पद्मा तलवरकर का गाया राग गौर सारंग। आपके साथ तबले पर संगति की है ओमकार गुण में और हारमोनियम पर साथ दिया है गोविंद पटवर्धन ने।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पद्मा तलवरकर का गाया राग गौड़ सारंग। आपके साथ तबले पर संगति की थी ओमकार गुडबडे ने और हारमोनियम पर साथ दिया था गोविंद पटवर्धन ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था मीडियम वेव 241.56 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। दिन का 1 बजने को है, कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जा रहा है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कल सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। ये सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों एक ऐसे विश्व के लिए प्रयासरत हैं जहां विकास अधिक समावेशी हो और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समकालीन वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुकदमों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी BLO

0: कल से 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और पात्र मतदाताओं से भरे हुए आवेदन पत्र एकत्र करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली के संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने श्री खड़गे को शपथ दिलाई। श्री खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक दोपहर में लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 425 अंक गिरकर 76,676 पर और निफ्टी 112 अंक कम होकर 23,944 पर था। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन जस्टाक्यो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए कुछ खोए व्यक्ति के संबंध में सूचना। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ममता बिंद पुत्री राजनाथ बिंद ये ग्राम डेवड़िया थाना मछली शहर जनपद जौनपुर की रहने वाली हैं, कहीं लापता हो गई हैं। ममता बिंद के बारे में जानकारी की बात इस प्रकार है। उम्र 25 वर्ष, लंबाई 4 फीट 6 इंच, रंग गोरा, इकहरा बदन, लंबा चेहरा है। ये जब लापता हुई तो उसमें काली फ्राक और काले रंग की लैगी पहने हुए थी। ममता बिंद के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने निकट के थाने या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर को सूचित करें। अगली सूचना प्राप्त हुई है पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से। सोनाली यादव पुत्री राजेश यादव निवासनी ग्राम लोहरा थाना मुगलसराय जनपद चंदौली कहीं लापता हैं। सोनाली यादव की उम्र है 19 वर्ष, लंबाई 5 फीट 3 इंच, रंग सांवला, इकहरा बदन, चेहरा गोल है। सोनाली यादव जब लापता हुई थी उस समय हरे रंग का सूट सलवार और पैर में चप्पल पहने हुए थी। दाहिने हाथ की उंगली में सोने की अंगूठी भी पहने हुए हैं। सोनाली यादव के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने निकट के थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को सूचित करें। यहीं से एक सूचना और भी प्राप्त हुई है। चंदन पिता का नाम अंबिका प्रसाद, ये वार्ड नंबर 1 इंदिरा नगर थाना चंदौली जनपद चंदौली के रहने वाले हैं, कहीं लापता हो गए हैं। चंदन की उम्र है 36 वर्ष, लंबाई 5 फीट 3 इंच, रंग सांवला है, मजबूत जिस्म, चेहरा गोल, इनके दाहिने हाथ के बाजू पर टैटू बना हुआ है, बाल इनके लंबे हैं। ये जब लापता हुए थे उसमें काले रंग का टी शर्ट और नीले रंग का जीन्स पहने हुए थे। चंदन के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने निकट के थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को सूचित करें। आप सुन रहे थे खोए व्यक्ति के संबंध में सूचना। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में सुनिए शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर आप सुनेंगे उस्ताद जाकिर हुसैन का एकल तबला वादन। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का प्रोग्राम अंजुमन आप सुनेंगे रात 9:30 पर। रात 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे कबीर के भजन, कलाकार होंगे देवेंद्र दास। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई सुनेंगे धान की फसल में लगने वाले रोग विषय पर डॉक्टर संतोष कुमार से बातचीत। इसी कार्यक्रम में सुनील कुमार यादव का लोकगीत भी होगा। इनका गाया लोकगीत आप दिन में 1:45 पर भी सुन सकते हैं।

जीवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे आज की बात यूथ डायरी इतिहास में आज का दिन रोजगार सूचना। इसी कार्यक्रम में ऋषिता चौरसिया की वार्ता होगी महिला सशक्तिकरण में सरकारी योजनाओं की भूमिका। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में दिन 1:15 पर महिलाएं सुनेंगी चर्चा सेहत ज्ञान और जायका के अलावा कुशल व्यक्तित्व के आयाम परोपकार और विनम्रता विषय पर वार्ताकार होंगी संध्या अग्रवाल। फिल्म संगीत आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर भोजपुरी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जो व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित होगा। अलावा इसके शाम 5:00 6:10 पर शाम 7:31 पर रसरंग में और रात 8:15 पर रस माधुरी कार्यक्रम में। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही पलों बाद यानी ठीक 1:10 पर आप सुनेंगे इलाकाई खबरें जिसे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सीट के भरखेड़ा और बीसलपुर असेंबली हलकों में 569 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस दौरान उन्होंने 2500 बेघर खानदानों में शहरियत और लीज तकसीम की। जलसायाम से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि हुकूमत का अज्म गरीबों, नौजवानों और खवातीन का तहफ्फुज है। मरकजी वजीर ममलकत और पीलीभीत के MP जितिन प्रसाद भी इस तकरीब में मौजूद थे।
1: हमारी प्रतिबद्धता गरीब के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता युवा के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता व्यापारियों की सुरक्षा के लिए है, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए है। हमारी प्रतिबद्धता किसी गुंडा माफिया के प्रति नहीं हो सकती है और हम उसको कोई संरक्षण भी न देंगे न देने देंगे।
0: पीलीभीत के बाद वजीर आला मुरादाबाद जाएंगे, जहां वो मुरादाबाद डिवीज़न में महकमा तामीरात आम्मा के पुराने कामों का जायज़ा लेने और नए कामों के लिए एक्शन प्लान पर तबादला ख्याल करने के लिए एक मीटिंग करेंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की मीटिंग की सदारत की और कई प्रोजेक्टों बशमूल एक्सप्रेस वे, सनती इंफ्रास्ट्रक्चर, देही रोजी रोटी, तवानाई और EV चार्जिंग की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर प्रोजेक्ट को मुकर्रा मुद्दत के अंदर और मेयारी तरीके से मुकम्मल किया जाना चाहिए। वजीर आला ने तमाम सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों, तिब्बी इदारों, जिलाई सतह के मर्दाना और ख्वातीन अस्पतालों और होटलों के फायर NOC स्टेटस की फौरी तस्दीक की हिदायत दी। वजीर आला ने एक्सप्रेसवे समेत दीगर मंसूबों के लिए ज़मीन के हुसूल के अमल को तेज़ करने की भी हिदायत दी। उन्होंने नए एक्सप्रेसवे के साथ सनती इलाकों की तरक्की के लिए मुनासिब ज़मीन की बरवक्त दस्तियाबी को यकीनी बनाने पर खसूसी जोर दिया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल हाथरस ज़िले में 548 करोड़ रुपए के 143 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुस्तहकीन में घर की चाबियां, स्मार्टफोन और चेक तकसीम किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि हाथरस में जल्द ही एक प्रोसेसिंग सेंटर मुकम्मल हो जाएगा, जिससे वहां के आलू काश्तकारों को फायदा पहुंचेगा।
1: अब हमारा हाथरस भी विकास से वंचित नहीं होगा, बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ अब उद्यम यहां पर आ रहे हैं। यहां पे रोजगार के नई संभावनाओं को आगे बढ़ाना, प्रोसेसिंग सेंटर लगेंगे। हमारा अन्नदाता किसान जो आलू उत्पादन करता है, उसके कई गुना दाम उन्हें प्राप्त होगा। कोल्ड स्टोरेज की उनकी समस्या का समाधान होगा, किसान को अच्छा दाम मिलेगा।
0: इसके बाद वजीर आला ने आगरा में आवामी नुमाइंदों और आला ओहदेदार

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी, जहां हम बात करते हैं समाज, प्रकृति और भविष्य की। और मैं हूं आपकी रेडियो सखी शीला।
1: और मैं हूं अंजना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में। और शीला, देखिए ना, आज एक बहुत खास दिन भी है।
0: जी हाँ अंजना, आज 29 जून है और 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महत्व, उनकी जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है।
1: जी हाँ शीला, मैंने कहीं पढ़ा है कि भारत का अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आता है, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पृथ्वी का वो भाग है जहाँ साल भर गर्म जलवायु रहती है। और

0: ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। दुनिया के अधिकांश जंगल भी और वन्य जीव और जैव विविधता भी इसी क्षेत्र में मिलती है।
1: बिल्कुल अंजना, शायद इसीलिए इस क्षेत्र का संरक्षण और वृक्षारोपण पूरे विश्व के पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र केवल हरे भरे जंगलों का नाम नहीं, बल्कि ये पृथ्वी के फेफड़े होते हैं।
0: सही कहा आपने। जिस प्रकार मानव शरीर में फेफड़े शुद्ध हवा को पूरे शरीर में पहुंचाते हैं, उसी प्रकार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से आसपास के तमाम क्षेत्रों को शुद्ध वायु यानी कि ऑक्सीजन मिलता है और उन क्षेत्रों का पर्यावरण भी शुद्ध रहता है अपेक्षाकृत अन्य जगहों से।
1: लेकिन अंजना, आज बढ़ते प्रदूषण, जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन ने कहीं न कहीं प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। ऐसे में वृक्षारोपण एक अभियान नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी है आने वाली पीढ़ी के लिए। तो सखियों, हर व्यक्ति का थोड़ा प्रयास, थोड़ी मेहनत रंग ला सकती है यदि हम ठान लें कि पौधे लगाना है, चाहे वो गमलों का मतलब किसी छोटे गमले नहीं, अगर हम बड़े गमलों में लगाएं तो पौधे, बड़े पौधे लगाएंगे, वो बड़े होकर वृक्ष भी कहला सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, एक पेड़ हमें शुद्ध वायु, छाया, फल फूल, वर्षा का जल, अनगिनत औषधियाँ और अनगिनत जीवों को आश्रय देता है। यही नहीं, वृक्षों से मिट्टी का कटाव कम होता है, पेड़ पौधे और हरियाली से मन तो खुश रहता है, ये शिला आसपास का वातावरण भी ठंडा और स्वच्छ बना रहता है।
1: ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। और ये फर्क देखना है ना, तो आप अपने घर के आसपास कोई हरा भरा मैदान हो या कोई पार्क हो तो वहाँ थोड़ी देर टहलिए और फिर वहाँ से आप अपने घर की तरफ या रोड पे आइए जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, तो आपको खुद एहसास होगा कि उस जगह पे कितना सुकून, ताज़ी हवा थी और इस जगह पे कितनी गर्मी है और थोड़ा बेचैनी जैसा है। तो सखियों, हरियाली और सुकून पाना है तो पेड़ लगाइए, उसकी देखभाल करिए।
0: बिल्कुल सही कहा आपने शीला, सिर्फ पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं होता है बल्कि उसे पेड़ बनने तक संभालना भी आवश्यक है। हम उसकी देखभाल करें, उसमें नियमित पानी दें, तो सही मायने में यही वृक्षारोपण है और वृक्षारोपण से ही पर्यावरण को बेहतर भी बनाया जा सकता है।
1: तो अंजना, हम संकल्प लें कि हमारे घर, मोहल्ले, स्कूल या जहाँ भी हमें जगह मिले वहाँ हम पौधा लगाएंगे और उसकी देखरेख भी करेंगे जब तक कि वो पौधा बड़ा होकर पेड़ ना बन जाए। और सखियों के लिए भी एक संकल्प ले ले कि उन्हें एक गीत सुनवा दें।
0: जी जी बिल्कुल।

0: ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए।
1: भाई आपकी ये वाणी सुनकर और ये मीठा सा संगीत सुनकर वाकई मन को शीतलता मिल रही है इस गर्मी में
0: जी।
1: और मुझे लग रहा है ये आप इसलिए भी कह रही हैं अंजना कि आज संत कबीरदास की जयंती है, तो संत कबीरदास की जयंती हर वर्ष ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। कबीरदास जी 15वीं सदी के महान रहस्यवादी कवि और समाज सुधारक थे, जिन्होंने पाखंड, अंधविश्वास और जाति भेद का विरोध किया और मानवता और प्रेम का संदेश दिया था।
0: जी बिल्कुल, संत कबीरदास जी का जन्म काशी में हुआ था, तो हम सब काशी वासियों के लिए गौरव की बात है ना शीला। ऐसे महान कवि जिनके दोहे आज भी हमारे दैनिक जीवन में प्रासंगिक है और उनकी रचनाओं ने भारतीय समाज और साहित्य पर बहुत गहरा प्रभाव भी तो डाला है।
1: जी अंजना, कबीरदास जी के दोहे, उनकी द्वारा रचित रचनाओं को हम पढ़ें और समझें तो काफ़ी हद तक हम सब अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं और एक समाज में परिवर्तन भी ला सकते हैं। तो आज एक ऐसी ही वार्ता भी हम अपने सखियों को सुनवा देते हैं। वार्ता का विषय है कुशल व्यक्तित्व के आयाम, परोपकार और विनम्रता। वार्ताकार हैं संध्या अग्रवाल।
2: मनुष्य ने प्रकृति के आगोश में जन्म लिया, उसी से अपने भरण पोषण की सामग्री प्राप्त की, प्रकृति से उसे संरक्षण प्राप्त किया। सृष्टि के सभी चराचरों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सिर्फ उसी में चिंतन करने की क्षमता होती है। वह उचित अनुचित समझकर स्वतः निर्णय लेने में समर्थ होता है। इस चिंतन मनन के बल पर ही मनुष्य ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। वैसे जीवन जीना भी एक कला है। सुचारू रूप से जीवन की दैनिक दिनचर्या जीने के लिए, या कहिए सीखने के लिए, आज लोग कार्यशालाओं में जाने लगे। कोई आडंबर की चादर ओढ़कर बैठा है और कोई सादगीपूर्ण जीवन यापन कर रहा है। आज समाज में मायूसी और बिखराव का माहौल है, जिससे लोग गहरी उदासी का शिकार हो जाते हैं। जिंदगी एक संघर्ष है, धूप छांव तो लगी रहती है, मगर समय के इस उतार चढ़ाव भरे जीवन में अपने व्यक्तित्व की कुशलता जिसमें है मानो वह सबसे बड़ा धनी है। व्यक्तिगत कुशलता का तात्पर्य चारित्रिक विकास से है। किसी भी व्यक्ति की चारित्रिक विशेषताएं उसका सर्वोत्तम धन है। अपनी इन्हीं काबिलियत के बलबूते पर मनुष्य समाज में आदर और सत्कार पाता है। वह स्वयं को अकेला नहीं पाता। व्यक्ति में न केवल भौतिक उपलब्धियों के लिए बल्कि अपने अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी कार्य को सबसे बढ़िया, सुलभ और शीघ्रता से करने के तरीकों का ज्ञान व अभ्यास होना जरूरी है। फलस्वरूप आपकी प्रगति एवं सफलताओं की संभावनाओं में गुणात्मक वृद्धि हो जाती है। अपने स्वभाव से आप अनजान व्यक्तियों को आत्मीय बनाकर अपने साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार कर सकते हैं। इस माध्यम से न केवल आप अकेली शक्ति को सामूहिक शक्ति में बदल सकते हैं, बल्कि अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हुए ऐसी बुलंदियों को फतेह कर सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कहा भी गया है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। व्यक्ति के कुशल व्यक्तित्व के कई आयाम होते हैं, या कहिए कि हर इंसान में गुणों की खान होती है। बस उसे परखने वाला जौहरी चाहिए, या फिर उसके द्वारा किए गए कार्यों से वह स्वयं ही अत्यंत धनवान और श्रेणी में आ जाता है। मानव जाति में अनुशासित रहना, सहानुभूति, सहिष्णुता, परोपकार, विनम्रता जैसी अनमोल संपदा समाहित होती है। उसे बालिकाल से ही सिखाया जाता है। सदा बड़ों का आदर करना, शीश बड़ों को सदा झुकाना, उनका शुभाशीष सदा ही पाना, मत छोटों का करो अनादर, अपने बड़ों का कहना मानो, उसमें अपना ही हित तुम जानो। कहने और सुनने में ये शब्द बहुत छोटे होते हैं, मगर हसमुख और जिंदा दिल व्यक्ति सभी के बीच लोकप्रिय होता है। अपने व्यवहार में विनम्रता को शामिल करके आप भी दूसरों के दिलों पर राज

कर सकते हैं। अपने मन में इस बात को बैठा लें कि जीवन में शारीरिक सौंदर्य ही सब कुछ नहीं, स्वस्थ और सकारात्मक दृष्टिकोण होना बेहद जरूरी है। और फिर व्यक्ति का एक आभूषण विनम्रता ही तो है, इससे हमारा व्यक्तित्व और भी निखर जाता है। भारतीय संस्कृति में इसी विनम्रता को व्यक्त करने के लिए प्रणाम और अभिवादन करने की परंपरा है। जीवन में प्रार्थना और पूजा अर्चन करने से भी स्वभाव में विनम्रता आती है। हमारे धर्म ग्रंथों का एक मूल मंत्र है, जो विनम्र होकर झुकते हैं वही ऊपर उठते हैं। आप अपने विनम्र स्वभाव के चलते सम्मान के काबिल खुद ब खुद चुन लिए जाते हैं। मेरा मानना है कि यदि मनुष्य विनम्रता से जीना सीख ले तो जीवन का हर पहलू उसके लिए आसान हो जाता है। एक उदाहरण मैं बताती हूँ आपको। एक बार एक सज्जन मेरे पीछे अपने दोपहिया वाहन को लेकर खड़े थे। दरअसल हम दोनों को ही अपने वाहनों में ईंधन लेना था। मैं ईंधन ले चुकी थी और वाहन पीछे की तरफ से ले जाने लगी। तभी मेरे वाहन से उनके पैरों में ठोकर लग गई और मुझे जैसे ही ज्ञात हुआ, मैंने उनसे विनम्र स्वभाव में पूछा, अंकल आपको चोट तो नहीं आई? मैं उनका जवाब सुनकर चकित थी। उन्होंने कहा, बेटे आपने इतना पूछ लिया, मेरी चोट कम हो गई। फिर उन्होंने बताया कि हमारे देश में विनम्रता की बड़ी कमी है, इसकी हमारे यहाँ अत्यधिक आवश्यकता है। विनम्र व्यक्ति संवेदनशील होता है, जिसे दूसरों की कष्ट और पीड़ा का एहसास होता है और जिसे दूर करने के लिए वह सेवा सहायता के कार्य में लगा रहता है। किंतु अहंकारी व्यक्ति न किसी की सेवा कर सकता है न किसी की सहायता, उसे दूसरों की पीड़ा का तो एहसास ही नहीं होता। इसलिए अपने अंदर के अहंकार को त्याग विनम्र बनिए। वही मनुष्य सही अर्थों में बड़ा है जिसके स्वभाव में विनम्रता मौजूद है। तभी तो विनम्रता से वे कार्य भी बन जाते हैं जो कठोरता से नहीं बन पाते। जो मनुष्य विनम्र होकर प्रभु की भक्ति करता है उसे प्रतिफल में धन सम्मान और दीर्घ जीवन भी प्राप्त होता है। विनम्रता से राह में आए पत्थरों को भी मोम की तरह मुलायम किया जा सकता है। खुद को छोटा समझना और दूसरों से अपनी तुलना नहीं करना आपको असल जिंदगी में महान आचरण वाला बनाता है और हमें हर पल विनम्र रहने की सीख देता है। आइए अब परोपकार व्यक्ति की बात करें तो प्रतिफल की भावना न रख के काम करने वाला व्यक्ति परोपकारी कहलाता है। दूसरे शब्दों में परोपकार के समान कोई धर्म नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, शुभ कर्म करने वालों का न यहाँ न परलोक में कहीं विनाश नहीं। शुभ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। चाणक्य के अनुसार जिन सज्जनों के हृदय में परोपकार की भावना जागृत रहती है उनकी आपत्तियां दूर हो जाती हैं और पग पग पर उन्हें संपत्ति और यश की प्राप्ति होती है। तुलसीदास जी ने भी परोपकार के विषय में कुछ लिखा है, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा नहीं अधमाई। विवेकानंद जी भी कहते हैं, अपना जीवन लेने के लिए नहीं देने के लिए होता है। दूसरों का हित चाहने वाले गांधी जी ने गोली खाई थी, सुकृत ने जहर पिया था, ईसा मसीह तो सूली पर चढ़ गए थे। हमारे बहुत से ऐसे संत और महापुरुष थे जिन्हें परोपकार की वजह से समाज में यश और सम्मान प्राप्त हुआ था। ये सब लोक कल्याण की वजह से पूजनीय बन गए। जो दूसरों के लिए बलिदान देता है वह समाज में अमर हो जाता है। अपने जीवन में दूसरे लोगों का जीवन जीने योग्य बनाता है, उसकी उम्र लंबी होती है। विज्ञान ने आज इतनी उन्नति कर ली कि मरने के बाद भी हमारे मानव अंग किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को बचाने का काम कर सकते हैं। इनका जीवन रहते ही दान कर देना सबसे बड़ा परोपकार होता है। यहाँ तक कि सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, फल, फूल, पशु पक्षी और पेड़ पौधे सभी किसी न किसी प्रकार से हमारे जीवन को सुगम और सफल बनाते हैं। और फिर हम तो मनुष्य हैं, हमें तो हाथ पैर के अतिरिक्त ज्ञान की भी प्राप्ति है। उस ज्ञान का सही दिशा में प्रयोग करना चाहिए। परोपकार में असली सुख और शांति होती है। हमें अपना जीवन व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको परोपकार द्वारा सार्थक बनाना चाहिए। बहुत पुरानी बात है, फिलाडेल्फिया में फ्लैंकलिंग नामक एक युवक रहता था। उसके मोहल्ले में हमेशा अंधेरा रहता था। वह रोज अंधेरे में आने जाने वालों को परेशान दिखता था।

0: एक दिन उसने अपने घर के सामने एक बांस गाड़कर शाम को उस पर एक लालटेन जलाकर टांग दी। उस छोटी सी लालटेन से उसके घर के सामने उजाला हो गया, किंतु उलट एक तरफ मोहल्ले के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। एक ने कहा, फ्रैंकलिन, एक लालटेन से मोहल्ले में उजाला नहीं होगा, सब जगह अंधेरा ही रहेगा। यहां तक कि उसके घर वालों ने भी उसका विरोध फिजूल खर्ची का वास्ता करके दे दिया। किंतु फ्रैंकलिन ने कहा, मैं सबसे सहमत हूं, मगर कुछ लोगों को तो इसका फायदा होगा, कुछ दूर तक का तो अंधेरा दूर होगा। बस क्या था, इस बात की चर्चा होने लगी, वह सराहना का पात्र बन गया। बस उसका देखा देखी अन्य लोगों ने भी अपने घरों के आगे लालटेन जलाकर लटका दी। एक दिन पूरे मोहल्ले में उजाला हो गया। यह बात धीरे धीरे शहर में फैलते हुए म्यूनिसिपल कमेटी तक पहुंची। चारों तरफ से दबाव पड़ने पर मोहल्ले में रोशनी का इंतजाम हो गया। फ्रैंकलिन का सम्मान करते हुए किसी ने उससे पूछा, आपके दिमाग में ये उपाय आया कैसे? उसने कहा, मेरे घर के आगे अंधेरे में ठोकर खाकर अक्सर लोग गिर जाते थे, मैंने इसलिए थोड़ा सा उजाला करने का प्रयत्न किया। हर अच्छे काम की पहल किसी न किसी को तो करनी ही होती है। यदि दूसरे के भरोसे बैठे रहेंगे तो अच्छे कार्यों की शुरुआत कभी नहीं होगी। हमें भी इसी तरह असहाय लोगों, रोगियों और विकलांगों की सेवा के लिए हर समय तत्पर तैयार रहना चाहिए। अंत में मैं यही कहूंगी, यह सच है कि व्यक्तिगत कुशलता के परोपकार और विनम्रता मजबूत आयाम हैं। मानवीय संबंधों की प्रगाढ़ता इन स्तंभों के बिना डगमगा जाती है, या हम यूं कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं। श्रेष्ठ व्यवहार कुशलता है जो परोपकार और विनम्रता के बिना अधूरा है।
1: सखियों, अभी आप सुन रही थी वार्ता। विषय था कुशल व्यक्तित्व के आयाम, परोपकार और विनम्रता। वार्ताकार थी संध्या अग्रवाल। शिला, कभी कभी हम कुछ काम करते हैं, यानी जब किचन में खाना बनाते हैं या फिर खाते समय, कुछ न कुछ कपड़ों पर गिर जाता है ना, जैसे कि कपड़ों पर दाग लग जाते हैं, या फिर घर में छोटे बच्चे हैं, वो खाते पीते हैं, खेलते हैं तो कपड़ों पर दाग लगाते हैं ना।
2: बिल्कुल अंजना, कपड़ों पर दाग लगना बहुत आम बात है, लेकिन हर दाग को साफ करने के लिए महंगे केमिकल वाले रिमूवर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे किचन और घर में ही ऐसी कई चीज़ें मौजूद होती हैं जिससे जिद्दी से जिद्दी दाग को हम आसानी से निकाल सकते हैं।
1: हाँ, लेकिन दाग को साफ करने के लिए सबसे ज़रूरी है, दाग जितना नया होगा उसे निकालना उतना ही आसान होता है।
2: जी, यानी कि तुरंत जैसे दाग लगा हो तुरंत पानी से उस स्थान को धो दीजिए तो उस दाग आसानी से छूट जाता है।
1: हाँ, जैसे कि अगर आपके कपड़ों पर घी या फिर तेल गिर जाए तो टेलकम पाउडर या फिर कॉर्न स्टार्च को तेल गिरी जगह पर डालकर 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ये तेल सोख लेता है। फिर पाउडर झाड़कर बर्तन धोने वाले जो लिक्विड होते हैं उसे हल्के हाथ से रगड़कर पानी से धो लीजिए, साफ हो जाता है घी और तेल।
2: ये तो आपने बहुत अच्छे मतलब उपाय बताया है, क्योंकि तेल और घी का दाग आसानी से जाता नहीं है। और चाय और कॉफी के दाग पर एक चम्मच सफेद सिरका और लिक्विड डिटर्जेंट को मिलाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, दाग तुरंत साफ हो जाते हैं।
1: हाँ, और बच्चों के कपड़ों पर अगर स्याही इंक के दाग हो तो उसे भी आप नेल पेंट रिमूवर या फिर सैनिटाइजर से साफ कर सकते हैं, वो भी दाग साफ हो जाते हैं।
2: और हल्दी का दाग भी बहुत जल्दी नहीं छूटता है, तो हल्दी का दाग या सब्जी का दाग हो तो उस स्थान पर नींबू रगड़ दीजिए, फिर डिटर्जेंट से रगड़ के आप साफ कर सकती हैं, दाग आसानी से छूट जाते हैं।
1: हाँ, और अगर उसे धूप में टांग देना तो वो तुरंत मतलब दाग उड़ भी जाते हैं। तेज धूप में
2: डालने से वो दाग आसानी से उड़ जाते हैं। और पसीने या पीलेपन के दाग को हटाने के लिए नींबू के रस में बेकिंग सोडा का गाढ़ा पेस्ट बनाकर कपड़े के पीले हिस्से पर लगाकर 20-25 मिनट बाद धो लीजिए, और सफ़ेद कपड़ों के लिए ये एक जादुई उपाय है।
1: और सखियों, एक ज़रूरी सलाह ये भी है कि किसी उपाय को पूरे कपड़े पर करने से पहले कपड़े के छिपे हुए कोने पर टेस्ट ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपके कपड़ों का रंग खराब ना हो।
2: भाई, कपड़ों के रंग खराब होने की बात हमने तो कर ली है, लेकिन सखियों का मूड अच्छा हो जाए इसके लिए क्या करना चाहिए?
1: एक गीत सुनवा देते हैं।
2: चलिए।

0: शीला, हर किसी के अंदर कोई ना कोई खूबी जरूर होती है ना।
1: हाँ,
0: किसी को अच्छा खाना बनाना आता है,
1: तो कोई अच्छी कविताएं कहानियां लिख सकता है।
0: और कोई अच्छा गाना भी गा लेता है ना।
1: हाँ, कोई अच्छी पेंटिंग बना सकता है, अच्छी पेंटिंग कर सकता है।
0: हाँ, किसी की आर्ट भी अच्छी होती है। यानी कि हर किसी में कोई ना कोई खूबी जरूर होती है।
1: तो अपनी क्षमताओं को पहचानना, स्वयं को जानने और जीवन में सही दिशा चुनने का ये पहला कदम है।
0: बिल्कुल। और कई बार हमारी ताकतें, हमारी खूबी हमारे सामने ही होती है, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं ना। तो अपनी उन क्षमताओं को जानना भी तो जरूरी है।
1: न तो सबसे पहले अपनी रुचियों को पहचानिए। आपको किस काम में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ या ऐसा काम जिसे करते समय आप समय ही भूल जाती हैं, कि आपको पता ही नहीं चलता समय कैसे बीत गया, जिसे करके आपको अच्छा लगता हो, सुकून मिलता हो।
0: हाँ, जिस काम को खत्म करने के बाद आप थका हुआ बिल्कुल भी महसूस नहीं करती हो, बल्कि ऊर्जावान और उत्साहित महसूस करती है, वही आपकी छिपी हुई ताकत होती है।
1: सखियों, हमारी क्षमताएं सिर्फ किताबी ज्ञान या तकनीकी कौशल तक सीमित नहीं होती। ये आपके अंदर की एक खूबी होती है जिसे आप खुद पहचान सकती हैं।
0: बिल्कुल। और कई बार हम अपनी खूबियों को खुद नहीं देख पाते, तो आप दूसरों की राय ले सकती हैं, अपने करीबी दोस्तों या फिर

0: परिवार या विश्वास पात्र लोगों की जो आपको समझते हैं।
1: हाँ, और खूबियों की पहचानने की बात हो रही है ना, तो इस समय हम लोगों की खूबी यही कि हम लोग घड़ी पर ध्यान दें। घड़ी की सुई हमें इशारा कर रही है कि हमें सखियों से विदा लेना चाहिए, तो सखियों को कहते हैं नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: सखियों के साथ,
3: सखियों के बाद,
2: सखियों के जज्बात,
3: गृह लक्ष्मी।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, मीडियम वेव 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम और आज के कलाकार हैं सुनील कुमार यादव। इनके सर में पहले सुनिए ये खेमटा।

हम आपको याद दिला दें, इनका गाया लोकगीत आप शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं। मीडियम वेव 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्स, वेव्स OTT पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही पलों बाद यानी ठीक 2 बजे आप सुनेंगे समाचार, जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi this evening. Three-decade pending Yamuna water-sharing project between Haryana and Rajasthan gets approval today. Supreme Court refuses urgent hearing on PIL, seeking court-monitored probe into alleged financial irregularities in Ram Mandir donations case. CBSE exempts current class 10th batch from three-language policy. Government introduces improvement notice mechanism to promote ease of doing business. SIR set to begin in Delhi tomorrow. And in FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 in first knockout match at Los Angeles. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की तीन दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया अब समाचार विस्तार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा एक रिपोर्ट
2: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं ये सम्मान देश की आतंकवाद उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं साथ ही विमानन समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे समाचार कक्ष से वैष्णवी
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायकर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की ब्यौरा हमारे संवाददाता से
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य शिक्षा समता निर्माण समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया यात्रा के दौरान यूपीआई स्वास्थ्य कृषि नौवहन अंतरिक्ष सहयोग प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजंस से भी सम्मानित किया गया यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट

0: www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मॉनसून के दौरान हथिनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथिनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा का अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से NCP नेता राजेंद्र हीरा लाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से AIADMK विधायक MR विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष JCD प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले AIADMK विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी BLO कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
3: जो हमारे लिए डेट है हाउस

0: हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं, वो सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
1: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्र सम्मेलन का आज वडोदरा से जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और

0: कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
1: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्र सम्मेलन का आज वडोदरा से जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
2: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष
1: अमीशा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश की राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
3: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देवस्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव यौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक

0: शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्वकप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 241.5 शेयर मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH DRM 1233 किलोहर्ट्ज़, वेव्स OTT पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। प्रस्तुत है आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। और आज ये कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त अनुपम। सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम में व्हाट्सएप भेजने के लिए हमारा नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है 7905519981 यानी कि 7905519981। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप संदेश भेजना है और श्रोताओं आपसे फिर वही गुजारिश, जो श्रोता एक बार संदेश भेज दें अगला संदेश अगले कार्यक्रम में भेजेंगे तो हमें बहुत सहूलियत होगी। तो कार्यक्रम के आरंभ में आप सुनेंगे भैया दूज फिल्म का गीत। तो आपके संदेश हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आने शुरू भी हो गए हैं। ये संदेश भेजा है आशीष कुमार ने महरेओ जौनपुर से। ये संदेश आया हुआ है जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, गमरिया जमशेदपुर से बिपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल, जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल, अभिनव जायसवाल का। मौनी बाबा धाम चोचकपुर बाजार जिला गाजीपुर से राम सखल चौधरी। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा। पटेल नगर मुगल सराय से शशि सिंह, आस्था सिंह और आकाश सिंह का भी संदेश हमें प्राप्त हुआ। अशोक कुमार प्रजापति, मीना प्रजापति, अंजलि प्रजापति, आकाश प्रजापति, शिव प्रकाश प्रजापति, मोनी प्रजापति, राहुल प्रजापति करौता वाराणसी से, इमरती यादव ग्राम भट्टी पोस्ट अकल दिहा चंदौली से अपने संदेश भेजा है। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अक्रम अंसारी और अल्ताप अंसारी। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और वसीम अंसारी। सारिमपुर बक्सर से राजेश टी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, आफ्ताब अंसारी, महताब अंसारी, मेराज अंसारी, कल्लू और मल्लू अंसारी। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसू तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद। बोहड़गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत। गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल, सुमन जायसवाल। सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर, आकर्ष राजभर। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेन्द्र वर्मा, नोखेलाल वर्मा। पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप ने भी हमें संदेश भेजा है। अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन उनके माता पिता, राज मुनिया, गांव नरी, नारी पच देवरा गाजीपुर से, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, कमल साहनी, गांव चोहलदा बागपत से। ग्राम पंचायत भटेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, राजीव वर्मा, ज्योति प्रहलाद वर्मा। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार। अडार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल गोपी, भूपेश, दीपेश वर्मा। लगातार संदेश आते जा रहे हैं। देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव तामोरिया, डॉली बेबी पूजा तामोरिया, राधिका और प्रभा देवी तामोरिया और उनका पोता मास्टर अल कबीर, इन्होंने डांडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से संदेश हमें भेजा है। मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी। घामपुर गंगापुर वाराणसी से शंकर प्रसाद, आदर्श कुमार, स्नेहा कुमारी, श्वेता कुमारी, जागृति

श्वेता कुमारी और रुद्र कुमार। लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी, उज्ज्वल दास मानिकपुरी। चकपुटे या सुनावा बाजार जिला भदोही से गिरधारी लाल यादव, नागेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार यादव। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी और नंदनी कुमारी। विशाल मिश्रा ने संदेश भेजा है बंधुआ बाजार माधोपुरी मिलिया जौनपुर से। ग्राम सोनोली पोस्ट थानापुर जिला चंदौली से भोला यादव। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। वार्ड नंबर एक पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता जी। रमेश कुमार विश्वकर्मा, पूनम विश्वकर्मा, प्रियांशु, प्रीत, प्रांजल, प्रकृति ग्राम मेहंदीगंज मड़ई पोस्ट राजा तालाब वाराणसी से। ग्राम पीपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। आदर्श कुमार ग्राम पोस्ट बहरी तहसील नरनई जनपद बांदा से इन्होंने संदेश भेजा है। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिया निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय। अमितेश कुमार तिवारी ने करनई बलिया से संदेश भेजा है। और भी संदेश, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य। राजा बाजार बिहारा से सुरेश केशरी, पूनम केशरी, प्रतीक केशरी। खेसारी लाल यादव रोहाली पलाड़ी छत्तीसगढ़ से चेतन साहू, गायत्री साहू, खुशी साहू, रेशमा साहू, वर्षा साहू। नक्षत्रपाल यादव कुरिया सावजपुर हरदोई उत्तर प्रदेश, आशीष यादव, जनवेश यादव, शकुन यादव। दिलदार नगर गांव पश्चिम मोहल्ला जिला गाजीपुर से जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह यादव, दीनानाथ सिंह यादव और कयूम सा। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बरेडी से नाना लाम से, मीना लाम से, तेजस लाम से, जय लाम से, हर्षिता लाम से और ये संदेश भेजा है। मुबारकपुर ऊंची तक या आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातमा सोगरा, वकार हैदर, कनी सकीना हसीना दिलशाद और वसीम फातमा ने। सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से अक्षय राजभर, आशु राजभर। तो आप सभी सुनिए अपनी पसंद पर भैया दूज फिल्म का ये गीत अलका याग्निक की आवाज में। इसे लिखा है लक्ष्मण साहबादी ने और संगीत चित्रगुप्त का। इसके बाद आप सुनेंगे गोदान फिल्म का गीत।

0: कार्यक्रम में अगला संदेश हमें भेजा है शाहकुटी मुगलसराय से सोनू जायसवाल, मंजू जायसवाल, हनुमानपुर मुगलसराय से डब्लू जायसवाल, माया जायसवाल, सोनारी जमशेदपुर से कृष्णा जायसवाल, पूनम जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से विनोद जायसवाल और पिंकी जायसवाल, जीप स्टैंड चोचकपुर गाजीपुर से भास्कर दुबे, शिवपुर बागान हावड़ा से अब्बास अंसारी, मुमताज अंसारी, शाहबाज अंसारी और प्यारी नवासी हयात मोइन अंसारी, इटाड़ी रोड लालगंज बक्सर से असलम मिस्त्री, अकरम मिस्त्री, पिंटू और महताब मिस्त्री, बहुआरा ग्राम पोस्ट दिलदार नगर जिला गाजीपुर से अकलू राम, केदार राम और दीनानाथ सिंह, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, गोलघर कचहरी वाराणसी से बेबी, लकी, स्नेहा, वंशराज, दयाशंकर यादव और सोबराती शेख। कुछ लोग मैसेज रिपीट कर रहे हैं, ऐसा ना करें, कुछ नए लोगों का तो नाम शामिल हो जाए। ये संदेश भेजा है आर अश्विन, सानू, शोभनाथ, अवस्थी और इनके दोस्तों ने शिवराजपुर चुनार मिर्जापुर से, काली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, साई गायकवाड़, श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी यूपी से आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती सिंह, विनायक सिंह, मोहिनी सिंह, मोहित सिंह एवं प्यारी प्यारी कोको रानी, छत्तीसगढ़ चुड़ीलाल मोंगली से मोहम्मद शाह, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा, छत्तीसगढ़ रायपुर से मोहम्मद इमरान, इशरत प्रवीण, रसीड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार, डीके साहू, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोट के, श्रीमती नंदा बोट के, हनुमान बोट के, उत्तम जमदाड़े। ये संदेश भेजा है काली माता मंदिर दिलदार नगर गांव जिला गाजीपुर से श्री किशुन सिंह कुशवाहा और छविनाथ शर्मा ने, शनिदेव विश्वकर्मा, राम सागर विश्वकर्मा, दीपा विश्वकर्मा, दीपेश विश्वकर्मा, ग्राम मेहंदीगंज मड़ई पोस्ट राजा तालाब वाराणसी से, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पल डिकेस्टो, विलिस डिकेस्टो, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बरेडी से नाना लाम से, मीना लाम से, तेजस लाम से, जय लाम से, हर्षित लाम से, हमें लग रहा है ये संदेश रिपीट हुआ, शीशा मयू चौक कानपुर से धीरज कुमार सिंह, अर्चना सिंह, ऋषि कुमार सिंह, रक्षा सिंह और इनके परिवार के सभी सदस्य। तो सुनिए अपनी पसंद पर अनजान का लिखा हुआ गीत, संगीत पंडित रविशंकर का, आवाज मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम गोदान, आवाज मोहम्मद रफी की और इसके बाद आप सुनेंगे घर गृहस्थी फिल्म का गीत।
1: राके पतुआ सरी थे डोले मनुआ कि ही यारा में उठत हिलो, अरे पुरुआ के झोंकवा में आई

फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से अपने रेडियो दोस्त अनुपम के साथ। कार्यक्रम में अगला संदेश भेजा है रतिनाथ त्रिपाठी, राखी आर्या, एंद्री ओम नाथ सारंग, शिवांग, अदिति और माताजी निर्मला त्रिपाठी ने ग्राम कुंडावल तारा पोस्ट लार रोड स्टेशन जिला देवरिया उत्तर प्रदेश से। बबरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, सुंदर जायसवाल, सुमन जायसवाल। और भी संदेश हम सर्च कर रहे हैं, संदेश भेजा है, संदेश रिपीट कुछ लोगों के हो रहे हैं तो हम उसको कोशिश करते हैं कि अभी नहीं शामिल करेंगे, बाद में देखते हैं। हमारे जो नए श्रोता हैं उनको भी इसमें शामिल होना चाहिए। चितबड़ा गांव बलिया से जीसी गुप्ता, आराधना गुप्ता, नेहा, निधि, आयुष्य, अनुष्का, ये संदेश भेजा है। लालगंज रायबरेली से केके साहू, अमिता साहू, स्वस्तिका, रिशु, इला और वीनस ने। कनाट प्लेस नई दिल्ली से डॉक्टर अर्चना और पुरुषोत्तम। तो आप सभी को हम सुनवाने जा रहे हैं घर गृहस्थी फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है समीर ने, संगीत से सजाया है चित्रगुप्त ने और आवाज लता मंगेशकर की। जी हाँ दोस्तों, लता मंगेशकर जी ने भी कुछ भोजपुरी गाने गाए हैं, उसमें एक ये भी गीत है। और इसके बाद वो शायद हो सकता कार्यक्रम का आखिरी गीत हो फिल्म धरती मैया से। तो अभी सुनिए घर गृहस्थी फिल्म का ये गीत।

तो चलते चलते हम आ पहुंचे वहां जहां इंतजार कर रहा है कार्यक्रम का आखिरी गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म धरती मैया से, और इस गीत को आवाज दिया है मोहम्मद रफी ने, लिखा है लक्ष्मण साहबादी ने, संगीत चित्रगुप्त का, और सुनने के ख्वाहिशमंद आप सभी। पटेल नगर मुगल सराय से सुनील कुमार सिंह। गांव नारी पच देवरा गाजीपुर से अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन और उनके मम्मी पापा, इनका भी संदेश रिपीट हो रहा है। भीमपुर भदोई से महेंद्र कुमार, सरिता, आशीष, पूजा, सतीश, नीतू, सानवी, रट्टू, नल्लाल, लालू और प्रद्युम्न। गांव भगई जिला जौनपुर तहसील किराकत उत्तर प्रदेश से अंश गुप्ता, रमाशंकर गुप्ता, रामनाथ यादव और ओम तिवारी। महमूरगंज वाराणसी से कृष्णा मिश्रा, शांतनु मिश्रा, मंजू चतुर्वेदी, नीलम श्री पांडे, राजश्री चौबे और मृदुला तिवारी। आप सभी ने संदेश भेजा है।

के लिए हम आप सभी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम अभी चल रहा है, ये अगला संदेश भेजा है ग्राम गुरौनी पोस्ट थानापुर जिला चंदौली से संतोष निषाद ने। राजू चौधरी ने ग्राम नगदिलपुर पोस्ट रेवतीपुर जिला गाजीपुर से संदेश भेजा है। लवकुश सेन जीतू साहू ग्राम पोस्ट बाहर ब्लॉक मोहरा तहसील बांदा डिस्ट्रिक्ट से इन्होंने भेजा। हम आपसे निवेदन करेंगे, आप सभी लोग कैपिटल लेटर में लिखिए और स्पेस जरूर से दीजिए। रजानगर वाराणसी से नफीस अहमद अंसारी, शमीम अहमद अंसारी, अनीस अहमद अंसारी, अजीज़ अहमद अंसारी, मोहम्मद रजा, सुनील रस्तोगी, रेहान अहमद अंसारी, शमा अंसारी, रेशमा अंसारी और प्यारी बेटी आरजू। रमाशंकर यादव रासीपुर बहादुरपुर सिरकोनी जौनपुर और इनके बड़े भाई उमेश पांडे कोटिलापुर जौनपुर से। बंधवा बाजार माधोपुर इमिलिया जौनपुर से अयोध्या आशीष मिश्रा और विशाल मिश्रा। तो आप सभी सुनिए अपनी पसंद पर कार्यक्रम के अंत में धरती मैया फिल्म का ये गीत।

पद्मा टॉकीज निपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। दिनारा से जयराम सिंह, सुषमा सिंह।

अनुपम को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH DRM 1233 किलोहर्ट्ज, वेव्स OTT पर हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। दिन के 3 बजे हैं, संपन्न हो रही आज की हमारी पहली सभा। शाम 5 बजे दूसरी सभा आरंभ होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, वेब्स ओटीटी और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आरंभ होती है हमारी सांध्यकालीन सभा। शाम के 5 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पहला गीत है फिल्म उफ ये मोहब्बत से, आवाज कुमार सानू की, गीतकार रानी मलिक और संगीत से सवारा है निखिल विनय ने।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म फूल और कांटे से, आवाज कुमार सानू की, गीतकार समीर और संगीत से संवारा है नदीम श्रवण ने।

कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म वक्त हमारा है से आवाजें कुमार शानू और अलका याग्निक की, शब्दकार समीर और संगीत से सवारा है नदीम श्रवण ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 5 बजकर 15 मिनट और 20 सेकंड हो रहे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

0: का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में,
1: जहाँ हर दिन हम लेकर आते हैं नई सोच, नई जानकारी और युवाओं से जुड़े प्रेरणादायक विषय। मैं हूँ रितिका।
0: और मैं हूँ श्रुति। अगले कुछ पलों तक हम दोनों रहेंगे आपके साथ, लेकर ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन का खूबसूरत संगम।
1: तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं आज के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत एक मधुर गीत के साथ।

0: आज तो पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
2: 0542227658।
4: ओ
3: 0542227658।
4: लो अभी फोन लगाता हूँ।
3: 0542227658।
6: दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी धरती को सबसे अधिक हरा भरा, जीवन से भरपूर और प्राकृतिक संपदा से समृद्ध बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो शायद आपका जवाब होगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। शायद यही कारण है कि हर वर्ष 29 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र दिवस मनाया जाता है।
7: बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता क्या है। पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में पूरे वर्ष अपेक्षाकृत अधिक गर्मी रहती है और पर्याप्त वर्षा होने के कारण यहाँ घने जंगल, उपजाऊ भूमि और समृद्ध जैव विविधता देखने को मिलती है। भारत का अधिकांश भाग भी इसी क्षेत्र में स्थित है।
6: इसी के साथ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया की लगभग 40% आबादी इन्हीं क्षेत्रों में रहती है। इसके साथ इतना ही नहीं, दुनिया की लगभग 80% जैव विविधता भी इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। अमेज़न के वर्षा वन, भारत की पश्चिमी घाट और सुंदरवन जैसे क्षेत्र इसके अनमोल धरोहर हैं।
7: यही वजह है कि क्षेत्र केवल पर्यावरण के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी कृषि, अर्थव्यवस्था, जल संसाधनों और मानव जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। चाय, कॉफी, मसाले, चावल, केला, नारियल और कई औषधीय पौधे मुख्य रूप से इन्हीं क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। यानी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी भी कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों पर निर्भर करती है।
6: बिल्कुल रितिका, लेकिन इस समय बदलते समय के साथ साथ इन क्षेत्रों में सामने कई चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, बढ़ता प्रदूषण, अनियोजित शहरीकरण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन इनके अस्तित्व को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। इसका असर मौसम, कृषि, जल स्रोतों और वन्य जीवों पर भी दिखाई देने लगा है।
7: यही कारण है श्रुति कि संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को मनाने की शुरुआत की, ताकि दुनिया भर के लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का महत्व समझ सकें और इनके संरक्षण के लिए मिलकर प्रयास करें।

0: प्रकृति का संतुलन बनाए रखना केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सभी का कर्तव्य है।
1: बिल्कुल, और इसमें युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम पेड़ लगाए, पानी बचाए, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करें, बिजली की बचत करें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, तो हमारी छोटी छोटी कोशिशें भी पर्यावरण संरक्षण में बड़ा योगदान दे सकती है।
0: क्योंकि याद रखिए, प्रकृति हमें सिर्फ संसाधन ही नहीं बल्कि जीवन भी देती है।

0: बल्कि जीवन भी देती है। अगर प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा।
1: तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र दिवस पर हम सभी यह संकल्प ले कि पर्यावरण की रक्षा करेंगे, प्रकृति का सम्मान करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, हरित और सुरक्षित धरती छोड़कर जाएंगे।
0: इसी सकारात्मक संदेश के साथ अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए ये प्यारा सा गीत।

नमस्कार साथियों, आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम युववाणी में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल महिलाओं से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि देश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का आधार है। विषय है महिला सशक्तिकरण में सरकारी योजनाओं की भूमिका। किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आकलन इस बात से किया जाता है कि वहां की महिलाएं कितनी शिक्षित, सुरक्षित, आत्मनिर्भर और निर्णय लेने में सक्षम है। यदि महिलाओं को समान अवसर, सम्मान और संसाधन प्राप्त हो तो समाज और राष्ट्र दोनों की प्रगति सुनिश्चित होती है। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने समय समय पर अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं, जिनका उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल महिलाओं को अधिकार देना नहीं, बल्कि उन्हें एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना है जिसमें वे अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं ले सके, आत्मनिर्भर बन सके और समाज के विकास से सक्रिय भागीदारी निभा सके। आजादी के समय भारत की महिलाएं साक्षरता दर बहुत कम थी, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सीमित थी और सामाजिक कृतियों उनके विकास में बाधा बनती थी। लेकिन आज स्थिति बदल रही है। इस परिवर्तन में सरकारी नीतियों और योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में केंद्र सरकार की सबसे चर्चित योजनाओं में से एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसकी शुरुआत 12 जनवरी 2015 में हुई थी। इस योजना का उद्देश्य बालिका हत्या को रोकना, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना है। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से संचालित की जा रही है। इस योजना ने देश भर में बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा को लेकर जग जागरूकता बढ़ाने का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज अनेक परिवार अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। गांवों में भी बालिकाओं के स्कूल जाने की संख्या बढ़ी है। यह केवल सरकारी योजनाओं नहीं बल्कि सामाजिक चेतना का अभियान बन चुका है। इस अभियान से जुड़ी एक महत्वपूर्ण योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना के अंतर्गत माता पिता अपनी बेटी के नाम से बचत खाता खोल सकते हैं, उनके शिक्षा तथा भविष्य के लिए धन संचित कर सकते हैं। दिसंबर 2025 तक देश में 4.53 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें 3.33 लाख करोड़ रुपए से अधिक की जमा राशि

थी। वर्तमान में इस योजना पर 8.2% वार्षिक ब्याज दिया जा रहा है। यह योजना केवल आर्थिक सुरक्षा का साधन नहीं है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि बेटियां परिवार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि भविष्य की शक्ति हैं। जब परिवार बेटी की शिक्षा और भविष्य के लिए निवेश करता है, तब वास्तव में महिला सशक्तिकरण की नींव मजबूत होती है। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए सरकार भी मिशन शक्ति जैसे व्यापक पहल शुरू की है। इसके अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा, सहायता, पुनर्वास और सशक्तिकरण से जुड़ी अनेक सेवाओं का एक मंच पर लाया है। वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, नारी अदालत और विभिन्न सहायक तंत्र इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। घरेलू हिंसा, उत्पीड़ित और लैंगिक भेदभाव से प्रभावित महिलाओं को कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। आर्थिक सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। जब महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं, तभी वे अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से ले पाती हैं। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया है। आज महिलाएं सिलाई, ब्यूटी पार्लर, ऑनलाइन व्यवसाय और अनेक लघु उद्योगों के माध्यम से अपनी पहचान बना रही हैं। इसके अतिरिक्त दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को संगठित किया गया है। आज देश के लाखों स्वयं सहायता समूह महिलाओं को रोजगार परीक्षण सहायता प्रदान कर रहे हैं। इन समूह ने न केवल महिलाओं की आय बढ़ाई है बल्कि उनकी क्षमता और आत्मविश्वास भी विकसित किया है। महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि उन्हें उचित पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकती है। इसी प्रकार उज्ज्वला योजना ने महिलाओं के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी और गोबर के चूल्हे से निकलने वाले धुएं से महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता था। उज्ज्वला योजना के माध्यम से करोड़ों परिवार को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया है, जिससे महिलाओं का स्वास्थ्य बेहतर हुआ। महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजना भी संचालित की जा रही है। आज बड़ी संख्या में बेटियां इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रशासन, विज्ञान और रक्षा सेवाओं में अपना योगदान दे रही हैं। हाल ही में जेई एडवांस परीक्षा में महिला वर्ग की टॉपर बनी आरोही देशपांडे जैसी सफलताएं यह प्रमाणित करती हैं कि अवसर मिलने पर भारतीय बेटियां किसी से कम नहीं हैं। राजनीतिक सशक्तिकरण भी महिला विकास का एक महत्वपूर्ण आयाम है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण ने लाखों महिलाओं को अवसर प्रदान किया है। आज ग्राम पंचायतों से लेकर संसद तक महिलाएं अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कर रही हैं। इससे लोकतंत्र अधिक समावेशी और प्रतिनिधक बन रहा है। यदि हम विश्व स्तर पर देखें तो भारत की महिलाएं भी विश्व मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। हाल ही में भारतीय सेना की अधिकारी अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है। यह उपलब्धि न केवल भारतीय महिलाओं की क्षमता को दर्शाती है बल्कि यह भी सिद्ध करती है कि अवसर और प्रोत्साहन मिलने पर महिलाएं विश्व स्तर पर नेतृत्व कर सकती हैं। हालांकि यह भी सत्य है कि केवल योजनाएं बना देना पर्याप्त नहीं है, योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। आज भी देश के अनेक क्षेत्रों में बाल विवाह, लड़कियों के प्रति भेदभाव, अशिक्षा और महिलाओं के प्रति हिंसा जैसी चुनौतियां मौजूद हैं। इसलिए सरकारी प्रयासों के साथ साथ समाज और युवाओं की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है। युवाओं की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। युवा वर्ग समानता का संदेश लेकर बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहित कर, महिलाओं के सम्मान की संस्कृति विकसित कर और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाकर महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को गति दे सकते हैं। यदि प्रत्येक युवा यह संकल्प ले ले कि वह अपने परिवार और समाज में महिलाओं का समान अवसर और सम्मान दिलाने का प्रयास करेगा, तो महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य शीघ्र ही प्राप्त किया जा सकता है। महात्मा गांधी ने कहा था, यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। यह कथन आज भी उतना ही लोकप्रिय है। महिला सशक्तिकरण वास्तव में राष्ट्र सशक्तिकरण का ही दूसरा
नाम है। अंततः कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकारी

योजनाओं ने महत्वपूर्ण परिवर्तन की आधारशिला रखी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना, मिशन शक्ति, मातृ वंदना योजना और स्वयं सहायक समूह जैसी पहलों ने महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य किया है। अब आवश्यकता ये है कि इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुँचाए और समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान सामान्यता और सहयोग को समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान सामान्यता और सहयोग की भावना विकसित हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। आशा है कि यह चर्चा आपको महिला सशक्तिकरण के महत्व और सरकारी योजनाओं की भूमिका को समझाने में सहायक रही होगी। नमस्कार, धन्यवाद।

0: अब समय है हमारे नॉलेज सेगमेंट यानी यू डायरी का, जहां हम हर दिन सीखते हैं एक नया हिंदी और अंग्रेजी शब्द।
1: और आज का हिंदी का शब्द है स्वायत्तता, जिसका अर्थ है अपने निर्णय स्वयं लेने और स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता या अधिकार। और इसके

0: ये अन्य पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं स्वाधीनता, स्वतंत्रता या आत्मशासन। अब इसे एक वाक्य में समझे तो हम कह सकते हैं, एक लोकतांत्रिक देश में संस्थाओं की स्वायत्तता लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाती है।
1: और आज का इंग्लिश वर्ड है डीवीएस, DEVIOUS, जिसका मतलब है धोखेबाज, कपटी या छलपूर्ण व्यवहार करने वाला व्यक्ति। इसके सिनोनिम्स हैं कनिंग, ट्रिकी। इसको सेंटेंस में आप इस तरह प्रयोग कर सकते हैं, द डिवियस प्लान इवेंचुअली केम टू लाइट।
0: रितिका, यानी स्वायत्तता हमें सही और स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए शक्ति देती है, जबकि डीवीएस व्यवहार हमें यह सिखाता है कि सफलता हमेशा ईमानदारी और सही रास्ते से ही हासिल करनी चाहिए।
1: सही कहा श्रुति। तो आज का चैलेंज है अपने निर्णय स्वयं लें, लेकिन हमेशा जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ। यही सच्ची स्वायत्तता की पहचान है। दोस्तों, अब बारी है आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, लेकिन उससे पहले बारी हमारे कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के विजेताओं की। तो कल का आपसे हमारा सवाल था कि राष्ट्रीय ग्रामीण सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है, जिसका सही जवाब है नई दिल्ली।
0: और सही जवाब देकर हमारे विजेताओं के नाम हैं मुकेश कुमार प्रजापति सिग्रा वाराणसी, प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश, ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधे श्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू कुसुमबाई बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से, ग्राम खेंगाव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा वेदिका वंश निकेश धर्मेंद्र मेघा नंदनी हर्षिता और ममताबाई वर्मा, रिंग रोड नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा नीरज शिवम धीरज चिंता वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा, नेपा नगर मध्य प्रदेश से प्रभु दयाल शिवड़े शिवा बसंती बाई और गणेश शिवदे, संगीत की नगरी खंडवा से श्याम बाई रायकवार।
1: आप सभी विजेताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ दोस्तों, आप तैयार हो जाइए आज के प्रश्न के लिए, जो कि है, जून 2026 में किस प्राकृतिक समस्या के कारण भारत के कई राज्यों में जल संकट की स्थिति बनी। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, जून 2026 में किस प्राकृतिक समस्या के कारण भारत के कई राज्यों में जल संकट की स्थिति बनी।
0: तो दोस्तों, पता है ना कि जवाब आपको कहाँ भेजना है? जी हाँ, आप अपना जवाब हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल youth AIR वाराणसी पर या हमारे ईमेल आईडी youth AIR VNS@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और हमारे आज के विजेताओं के लिए पेश है ये प्यारा सा गीत।

0: तो दोस्तों, हमने आपको बहुत प्यारे प्यारे गीते भी सुनवा दिए, ढेरों जानकारियां भी दे दी। अब वक्त है इतिहास में जाने की, जहां हर दिन इतिहास के पन्नों में कुछ खास यादें छोड़ जाता है।
1: और इन्हीं यादों को ताजा करने के लिए हम लेकर आए हैं इतिहास के में आज का दिन।
0: तो दोस्तों, साल 2007 में आज ही के दिन दुनिया का पहला आईफोन बाजार में लॉन्च हुआ। इसने मोबाइल तकनीक की दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत की।
1: वहीं साल 1995 में आज ही के दिन अमेरिकी स्पेस शटल अटलांटिस ने रूसी अंतरिक्ष स्टेशन से सफलतापूर्वक डॉकिंग की। यह अंतरिक्ष विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक ऐतिहासिक क्षण था।
0: इसी के साथ साल 1901 में आज ही के दिन महान भारतीय क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का जन्म हुआ था। उन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया और काकोरी कांड के वीर सेनानियों में शामिल रहे।
1: साल 1997 में आज ही के दिन भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद ने जर्मनी में आयोजित फ्रैंकफर्ट चेस क्लासिक का खिताब जीतकर देश का नाम विश्व भर में रोशन किया। यह भारतीय शतरंज के इतिहास की एक गौरवपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है।
0: वहीं 29 जून को भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। यह महान सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महल नोबिस की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य देश के विकास में आंकड़ों और सांख्यिकी के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है।
1: इसके अलावा साल 1990 में आज ही के दिन लंदन संशोधन लंदन अमेंडमेंट के तहत ओजोन परत की रक्षा के लिए हानिकारक CFC गैसों के चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है।
0: इतिहास हमें यह सिखाता है कि हर नई खोज, हर उपलब्धि, हर साहसिक कदम आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाता है।
1: दोस्तों, अब बात करते हैं देश के युवाओं के लिए एक शानदार रोजगार अवसर की।
0: बिल्कुल रितिका, भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने प्रोबेशनरी ऑफिसर PO भर्ती 2026 के आवेदन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 1500 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
1: ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 18 जून 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 8 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 8 जुलाई ही निर्धारित की गई है।
0: इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें, इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी मान

0: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। साथ ही उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए।
1: इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना को ध्यान पूर्वक पढ़ लें और अधिक जानकारी के लिए SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर विजिट करें। दोस्तों कहते हैं जल है तो कल है। पानी केवल हमारी जरूरत ही नहीं बल्कि जीवन का सबसे अनमोल आधार है। इसके बिना धरती पर जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है।
0: बिल्कुल सही कहा रितिका, तुमने बिल्कुल सही कहा। लेकिन देखा जाए तो आज बढ़ती आबादी और जल की बर्बादी और घटते जल स्रोत हम सभी के लिए चिंता का विषय बनते जा रहा है। ऐसे में जल संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है।
1: अगर हम अपने रोजमर्रा के जीवन में छोटी छोटी आदतें अपनाएं, जैसे बेवजह बहते नल को बंद करना, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना और पानी का सोच समझ कर उपयोग करना, तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं।
0: दोस्तों याद रखिए, पानी की हर एक बूंद अनमोल है। आज की गई थोड़ी सी बचत कल किसी की प्यास बुझा सकती है। इसीलिए आइए हम सभी जल संरक्षण का संकल्प लें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।
1: क्योंकि सच ही कहा गया है, जल बचाइए जीवन बचाइए। तो दोस्तों इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ हम आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। जहां मैं थी रितिका,
0: और मैं श्रुति, अब हमें दीजिए अनुमति, फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में कुछ नई जानकारी और नए विषयों के साथ। तब तक जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए और जल की बूंद को सहेजते रहिए। और साथ ही में प्रोग्राम को खत्म करने से पहले आपके लिए एक ये गीत भी।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार, जिसे हम अपने गोरखपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पीलीभीत में 569 करोड़ रुपया से बेसी के लागत का 66 विकास परियोजना के लोकार्पण आ शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल भेल। ए मौका पर मुख्यमंत्री कहलन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में डबल इंजन का सरकार गांव, गरीब, किसान, नौजवान आ महिला लोगिन के सतही समाज के हर वर्ग के विकास बदे कार्य कर रही हो। वहां के कहने की कनेक्टिविटी में जितने गति हुई उतने तेज प्रगति हुई।
2: याद रखना, प्रगति का आधार गति पर है, उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, और वह इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे रहे हैं। हमने पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करवाया। मात्र 5 घंटे में मेरठ से प्रयागराज पहुंच जा रहे हैं। ये है गति, ये डबल इंजन की सरकार है, ये डबल स्पीड के साथ चलती है, विकास भी लाती है, विरासत को भी सम्मान देती है।
1: ए मौका पर मुख्यमंत्री पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश से विस्थापित परिवारन के जमीन आ नागरिकता प्रमाण पत्र

0: देन है। सत है ही वहाँ के कई गो योजनन के लाभार्थियों के चेक आ प्रमाण पत्रों बटने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काल ही स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के बैठकी का अध्यक्षता करत एक्सप्रेसवे, औद्योगिक अवसंरचना, ग्रामीण आजीविका, ऊर्जा आ ईवी चार्जिंग के साथ ही कई गो और परियोजनन के प्रगति का समीक्षा कैले।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक परियोजना निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी शासकीय और निजी मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों, जिला स्तरीय महिला और पुरुष चिकित्सालयों तथा होटलों में फायर एनओसी की स्थिति का तत्काल सत्यापन कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेसवे सहित अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने नए एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त भूमि की उपलब्धता समय रहते सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना समय की आवश्यकता है। उन्होंने आवश्यक अनुमतियों एवं प्रक्रियाओं को सरल बनाते हुए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार सुनिश्चित करने तथा निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: सर्वोच्च न्यायालय आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मिलल दान में कथित वित्तीय हेराफेरी से जुड़ल एगो जनहित याचिका पर जुड़ता सुनवाई से मिना कह दिल है। याचिका में अदालत के देखरेख में वित्तीय हेराफेरी का जांच आ गहन लेखा परीक्षण का मांग कल गई है। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश आ शील नागू का बेंच याचिका के जुड़ते सुनवाई पर सवाल उठावत कहलस की गर्मी के छुट्टी के बाद अदालत के खुले पर याचिका के सूचीबद्ध कल जायी। एह बीचे अयोध्या का अधिवक्ता संघ फैसला ले ले हो के मामला में नामजद कौनहू आरोपी के ओर से संगठन से जुड़ल कौनो वकील पैरवी नहीं करी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE आज उत्तरी भाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी कर लिया है। बोर्ड कहलस की कक्षा दसवीं के ए समय के बैच के नई भाषा नीति का पालन नहीं करे के होई। बोर्ड यो कहलस की कक्षा सातवीं, आठवीं आ नौवीं में पढ़ी रहल ए समय के बैच के छात्रनों के कक्षा दसवीं में पहुंचले पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देहले का जरूरत नहीं होई। केंद्र सरकार विधिक मापन अधिनियम 2009 के तहत सुधार सूचना व्यवस्था लागू कैले हो। ई प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 की ओर से लागू कैल गेल बा। एगो रिपोर्ट।
2: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: मौसम विभाग प्रदेश के पूर्वी जिलन में बिहने से लेके 3 जुलाई ले अनेक जगहिन पर बरखा आ गरज चमक के साथे बौछार पड़ले का संभावना जतौले हो। विभाग 2 जुलाई ले कहीं कहीं बिजली गिरले आ तेज झोंकेदार बेरियो चलले का ऑरेंज अलर्ट जारी कैले बा। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे उस्ताद जाकिर हुसैन का एकल तबला वादन। रात्रि 9:30 पर सुनिएगा गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन। रात्रि 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे देवेंद्र दास।

शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मध्याह्न भोजन योजना पर डॉक्टर राम अवतार सिंह यादव से सतीश कुमार यादव की बातचीत के अलावा किसान भाई सुनील कुमार यादव के गाए लोकगीत भी सुन सकेंगे। फिल्म संगीत

के कार्यक्रम शाम 6:10 पर, शाम 7 बजे, रात्रि 10 बजे, कार्यक्रम रस रंग में शाम 7:31 पर और कार्यक्रम रस माधुरी में रात्रि 8:15 पर आप सुन सकेंगे। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब सुनिए कल यानी दिनांक 30 जून सन 2026 दिन मंगलवार को हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर आप सुनेंगे बांसुरी वादन, कलाकार होंगे राजेश कुमार गौतम, और दिन में 12:45 पर सुनिएगा उप शास्त्रीय गायन, कलाकार होंगी मुराद बानो। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत ओवल क्रिकेट ग्राउंड लंदन में वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल मैच के ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण समय होगा शाम 6:30 से, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। उर्दू कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर कलाकार होंगे राम शंकर। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का समय होगा दोपहर 12 बजे। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस आप सुनेंगे सुबह 11 बजे। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में झंकार सुबह 10 बजे, मधुरिमा सुनिएगा सुबह 8:45 पर और सुहाने तराने दिन में 2:30 पर।

कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस का समय होगा सुबह 7 बजे। दिन में 1:15 पर महिलाओं के कार्यक्रम अंगनैया में समाज के उत्थान में महिलाओं की भूमिका विषय पर डॉक्टर चंद्रमणि से अर्चना गोस्वामी की बातचीत के अलावा महिलाएं गीत संगीत का भी आनंद ले सकेंगी। शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम धरती के गीत। शाम 5:15 पर युवा साथियों के कार्यक्रम युवाणी में होगी आज की बात, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और साथ ही गीत संगीत का आनंद युवा साथी ले सकेंगे। सुबह 9:50 पर और दिन में 1:45 पर आप सुनेंगे लोक संगीत। कलाकार होंगे हंस लाल सिंह। सुबह 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में मूंग की खेती विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आप सुनेंगे सुबह 6:10 पर।

0: कार्यक्रम विचार बिंदु का समय होगा सुबह 6:30 पर। सुबह 6:35 पर कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में बदलते मौसम में बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर प्रीतम कुमार। श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ का प्रसारण समय होगा सुबह 6:40 पर। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। पहले ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
0: कार्यक्रम में पहला गीत फिल्म बालक ध्रुव से, आवाज आशा भोसले की, गीतकार मदन भारती और संगीत से संवारा है गोविंद नरेश ने।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म हरी दर्शन से, आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार प्रदीप और संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म जन्म जन्म के फेरे से। आवाज लता मंगेशकर, शब्द रचना भरत व्यास और संगीतकार एस एन त्रिपाठी।

0: तथैव अनुवर्तयितुम् अनुमताः भविष्यन्ति इति। सर्वकारेण जनविश्वास उपबन्धानां संशोधनम् इत्यधिनियमः 20/26 इत्यस्य माध्यमेन विधिमापन अधिनियमः 90/2000 इत्यस्यान्तर्गतं परिष्कार सूचना व्यवस्था प्रवर्तिता भविष्यति इति। दिल्लीति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रे SIR इत्युक्ते मतदातॄणां विशेष गहन पुनरीक्षण इति अभियानान्तर्गतं मतदातृभ्यः निर्वाचक गणना प्रपत्राणां प्रतिगृह वितरणाभियानं स्वस्तनादारप्स्यते। देहलीनगरस्य मुख्य निर्वाचनाधिकारी अशोक कुमारः अद्य नवदेहलीनगरे प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् एतत् अघोषयत् यत् मतदान केन्द्रस्तरीय BLO इत्याख्याः अधिकारिणः स्वस्तनादारभ्य अग्रिममासस्य 29 दिनाङ्कपर्यन्तं कार्यमिदं सम्पादयिष्यन्ति इति। श्रीकुमारः अवदत् यत् अगस्तमासस्य 5 दिनाङ्कात् सितम्बरमासस्य 4 दिनाङ्कपर्यन्तम् अभियोगाः आक्षेपाश्च निवेदयितुं शक्यन्ते। अन्तिमा निर्वाचकसूचिः अक्टूबरमासस्य 7 दिनाङ्के प्रकाशिता भविष्यति।
1: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें BLOs एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनोबरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं वो सभी पे BLOs अपॉइंटेड हैं, तो सभी BLOs को उनके इनोमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
0: भारत ऋतु विज्ञान विभागेन स्वस्तनं यावत् उपहिमालयीय पश्चिम बंग क्षेत्रे सिक्किम प्रदेशे च प्रचण्डतः अतिप्रचण्ड तरायाः वर्षायाः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। बुधवासरं यावत् अरुणाचल प्रदेशे, असम राज्ये, मेघालये, केरलम राज्ये, माहे प्रदेशे च प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यतीत्यपि ऋतु विभागेन पूर्वानुमानं कृतम्। फीफा विश्वचषक क्रीडायाः नॉकआउट इति चरणे संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य लॉस एंजलिस नगरे प्रथमायाः नॉकआउट इति स्पर्धायां कनाडा देशः दक्षिण अफ्रीका देशं 1-0 पराजयत्। बैडमिंटन क्रीडायां भारतीयः क्रीडकः किदंबी श्रीकान्तः US ओपन क्रीडायां पुरुष एकल स्पर्धायां रजत पदकं विजितवान् इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:30 और 12 सेकंड हो रहे हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत।

0: पंचो राम
1: राम।
0: राम बुझावन भैया।
1: हाँ जितन भैया,
0: अरे का हाल चाल बा खेती किसानी का हो?
1: ए जितन भैया कुल ठीक ठाक बा, बढ़िया बा, अपन कह सुनावा।
0: अपनो ठीक बा, कैसन दवाई लेके आवत रहल है?
1: ये भैया देखा मौसम बा गर्मी का, आ
0: अच्छा
1: देखत बड़ा उमस भी बहुत ज्यादा होत है, आ
0: हाँ
1: धूपो बहुत तेज लगत है।
0: अच्छा
1: इस बदे क्या देखा, बारिश उरिश तो भइल ना कि तनी सब मौसम ठंडा रहा है, तो एकरे बदे भैया जब होत बा तबियत मन इनके खराब हो जात बा।
0: अच्छा
1: अच्छा वही में हमहूँ शिकार हो गेलिए, तो भाई जब तबियत गड़बड़ा गई तो भाई डॉक्टर भैया के जाए कि ना बा।
0: जाइए बा भैया, जइबा ना तो कैसे पता चली कि कौन रोग बा? हाँ
1: ये भैया देखा आपको डॉक्टर भैया जो लोग बाड़े ना,
0: हाँ
1: तो गईले के बाद दवाई तो करते बाड़ा, लेकिन एक चीज़ और करत बाड़ा हो जितन भैया, जानत हुआ क्या करत बाड़ा,
0: का कर दोन भैया
1: कि
0: भैया।
1: माने कौनो भी तरह का तोके समस्या बा, समझला, चाहे बुखार बा चाहे पेट दर्द बा, तो पहले जांच करवाओत बाड़ा।
0: अच्छा जांच।
1: हाँ अच्छा, जांच करौले से ये होला कि कौन समस्या बा कौन रोग बा तो ओकर पता चल जाला, और जब पता चल जाला तो वही हिसाब से डॉक्टर भैया लोग दवाई करला।
0: हाँ सही कहला बुझावन भैया। देखा हो रोग के तह तक पहुँचे बदे तो ओके जांच तक करे ही पड़ी। और देखा वही तरह आपन जो है ना खेती किसानी भी हो।
1: बिल्कुल खेती किसानी है भैया।

0: भैया खेती किसानी भी जांच परख के करे के चाही। ऐसे कहल जाला ना भैया ना कि जो दुकान से हमारे किसान भाई बीज लिया हो ना वो अच्छा होए के चाही, परख के लिया हो के चाही। आ हम जोन दवाई लिया हो ना हमारे किसान भाई दुकाने से ओहो के परख के लिया हो के चाही। आ जोन खाद भी होले रासायनिक खाद भाई किसान भाई हमारे डाई यूरिया देते बाण ओहो की भी परख के लिया हो के चाही।
1: कहे मतलब कि जांच परख के तब लेवक चाहिए, इन आई
0: हाँ
1: कि सस्ता के चक्कर में ले लेवक चाहिए,
0: नहीं भैया
1: बाद में
0: जो
1: बड़ा दिक्कत होला।
0: हाँ जोन बढ़िया पंजीकृत दुकान बा आ जोन दुकानदार बीज खाद दवाई बढ़िया देत है भैया वही केन से लिया होए के चाही। आ जानत हुआ भैया जब जांच के बाद हमन करते रह लिया जा, अब जैसे खेती बाड़ी कर लिया जा,
1: हाँ
0: चाहे खरीफ के फसल हो चाहे रबी के फसल हो चाहे जायद के फसल
1: हाँ
0: हो,
1: भैया,
0: तो कौनों जो फसल हमन कहाँ उगावल जाला भैया।
1: खेती में
0: अच्छा तो खेते में उगावल जाला, तो खेते के मतलब कि माटी,
1: माटी।
0: जो कोनो भी फसल अमन जब उगावल जाला तो माटी में उगावल जाला, तो भैया माटी का भी जांच होए के चाही।
1: पहले बुझावन भैया, हमारे बाप दादा पहले तो ऐसा ही गोबर फेंक के खेते में बड़ा जोर रहे, अब पैदावार ठीका ठाक हो जाए।
0: ये ऐसा ना कि भैया देखा पहले जो रहे ना परंपरागत खेती रहे है ना, अच्छा तकनीकी के थोड़ा अभाव रहे, अब कृषि के तकनीकी और नए नए डॉक्टर भैया लोगों ने इतना जानकारी दिए थे कि अगर कौनों भी हम खेती करी तो वो खेती करे से पहले वो खेत का मिट्टी के जांच कर लही।
1: बिल्कुल भैया, आपका जो खेती बात हो तकनीकी खेती हो,
0: हाँ
1: पूरा जांच परख के होत हो,
0: बिल्कुल
1: यानी कम जगह में कम संसाधन में अच्छी पैदावार करे बदे ई जांच परख हो
0: देखा
1: जाला।
0: भाई जब कहल जला ना कि जब हमान के शरीर स्वस्थ रही ना तब हमानो कुछ काम बढ़िया से खेती किसानी कर सकल जला।
1: ये भैया देखा बुझावन भैया, जब स्वास्थ्य का बात कही ला ना,
0: हाँ
1: स्वास्थ्य में देखा ही खेती हो, और खेती है सामने किसान है।
0: बिल्कुल है, तो वही तरीके से मिट्टी भी स्वस्थ होए के चाहिए। जब मिट्टी स्वस्थ होई ना तो हमारे कौनो भी प्रकार का फसल जौन धान गेहूँ चाहे तिलहन को हो चाहे दलहन को हो चाहे सब्जी को हो वो स्वस्थ होई,
1: अरे
0: माने माटी स्वस्थ होए के चाहिए। अब माटी में यो भी देखे के चाहिए कि भाई कौन चीज़ का अभाव हो
1: हाँ
0: कौन चीज़
1: हाँ
0: का मात्रा ज़्यादा हो, तो ओकरे बदे भैया सरकार के तरफ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी बनेला और मिट्टी के जांच भी होले, तो ओके कराओ के चाहिए भैया।
1: तो भैया कौन कौन जांच करावा जी बुझान दिया।
0: देखा बुजन भाई सन जितन भैया ना जब
1: हाँ
0: बात हम हन तो शुरू कर लिया जाए कि भैया जब मन ही बीमार हो जाए तो डॉक्टर भैया लोगन दवाई करे बदे पहले उसे इलाज करे से पहले ओकर जांच कराओ ना, तो ऐसे ही कोनो फसल लगाओ से पहले हमन के भी मिट्टी के जांच करवा लेवे के
1: कराओ
0: चाहिए
1: जी।
0: भैया। ऐसा ना कि मिट्टी जोन जांच छोले भैया ना एक कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र या राज्य सरकार की जो अधिकारी हो ना के द्वारा मिट्टी एकत्र नमूना कैल जाला आ ओके लैब टेस्ट या जोन कृषि का परीक्षण लैब बा प्रयोगशाला बा ओमन दे करके ओकर जानकारी लेवल जा सकेले।
1: अच्छा, जानकारी लेवल जा ले सकल है। तो भैया इमान तक जांच भी तो कई प्रकार का रहत होई।
0: ये देखा भैया देखा हमारे जोन माटी बा जोने माटी में हमन खेती कैल जाला तो ओमन बहुत प्रकार का पोषक तत्व पावल जाना है और जरूरत भी पड़े ले, तो ओमन जैसे प्राथमिक पोषक तत्व बाण यहू के जांच होले तो ओमन जैसे आवाला नाइट्रोजन बा फास्फोरस बा पोटास बा ऐसे द्वितीय पोषक तत्व होना जैसे सल्फर बाय आ एक ठे एकरे साथे साथे भैया सूक्ष्म पोषक तत्व का भी जरूरत पड़े ले।
1: अच्छा, सूक्ष्म तो जोन अपने खेती में जोन सूक्ष्म जीव होलन, वो सब छोटा छोटा जीव।
0: हाँ नहीं तो पोषक तत्व की जरूरत जैसे जिंक बा आयरन बा कॉपर बा एकर भी जांच होले और भैया जांच करा करके ही कोनो प्रकार का फसल उमन बोवे के चाहिए
1: बोए के
0: उगावे
1: चाहिए।
0: के चाहिए।
1: तो भैया देखा वो बात तो बड़ा सही कहला, देखा तकनीकी वाला ही खेती का हो ही गल हो। आजकल हमार किसान भाई भी सोचलन कि कम जगह में हम अच्छा पैदावार करी, हमार पौधा अच्छे से उगे।
0: ये देखा भैया जब मिट्टी के बात होले ना जब मिट्टी में जो वो क्षमता पावल जाले जौन पौधा हो जानवर हो चाहे मनुष्य हो सबके पोषण करेले, माने उसे सबके फायदा बा और सबके उससे जीवन मिलत बा जला, तो ओकर जौन भौतिक हो चाहे रासायनिक या जैविक गुण हो ओके संतुलित रखे बदे और जानकारी लेवे बदे मिट्टी का जांच कराए बहुत जरूरी भैया।
1: तो भैया मिट्टी का जांच करावल जाए, कैसे है धरती हमने के मैया हैं, हम किसान
0: बिल्कुल
1: का, और यही से हमने के घर गृहस्थी चला, और पूरा समय कहल गला ना कि जय जवान जय किसान। तो यही तरह हमने किसानन के अच्छा खेती करे बदे मिट्टी के जांच तो
0: ये
1: कराओ।
0: जीतन भैया देखा यही बदे कहल जाला कि स्वस्थ धरा खेत हरा,
1: हरा।
0: माने धरती जो मिट्टी बा अगर स्वस्थ रही तो खेत भी हरियर रही अगर स्वस्थ ना रही तो खेत हरियर

0: ना
1: रही। यही बदे कहल जाला कि करे किसान जो माटी की आस,
0: हाँ।
1: सोना उपजे धरती के पास।
0: अरे
1: जो किसान मिट्टी के प्रकृति के समझ करके,
0: हाँ,
1: मतलब
0: हाँ, हाँ।
1: समझ करके, मतलब का समझ लो भैया
0: का
1: कि ओमन कौने चीज का कमी बेसी बा, वही हिसाब से अगर खेती करी तो बहुत फायदा होई।
0: का है ना भैया, तो देखा हो तो बात बतकही होता रही, लेकिन हमहन के बीच में ना एक देखा बत नीमन के बतकही भी हो, और जवन हो देखा प्रधानमंत्री मध्याह्न भोजन योजना हो, ये विषय पर देखा बतकही हो डॉक्टर राम अवतार सिंह से, सिंह यादव भैया से बतीले हुआ अपन सतीश कुमार यादव भैया,
1: तो
0: आप भी सुना और किसान भाई भी
1: जितन
0: सुना।
1: में बिल्कुल सुनवाए दा।
0: सुना दे।
2: आज अपने बीच में आयल हैं डॉक्टर राम अवतार सिंह यादव, जे की पूर्व उप सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में कार्यरत रहल हुआ। आज इनसे हमने लोग जानल जाए कि मध्याह्न भोजन योजना, जो ना के अब पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना भी कहल जात है, एक बारे में भैया से जानकारी लिया जाये। तो सबसे पहले तो आपका हमने के कार्यक्रम कृषि जगत में डॉक्टर साहब स्वागत है।
3: जी जी,
2: तो हमारी भैया उनके ये बताएं कि
3: जी
2: जो पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना है,
3: जी
2: इसे अपने भैया लोग का समझे और ये का है?
3: देखिए, भारत सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना जो है ये प्रोत्साहन योजना के रूप में विद्यालयों में शुरू किया है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूल हो या परिषदीय स्कूल हो, सहायता प्राप्त स्कूल हो या समाज कल्याण के स्कूल हो, और या तो इस समय चालू है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय,
2: अच्छा,
3: इन सभी विद्यालयों में जो है मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई है। और यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ही यह लागू की गई है।
2: अच्छा, चाहे प्राथमिक हो या जो आप और स्कूल बताइए,
3: हाँ, सामाजिक कल्याण का विद्यालय हो, चाहे फिर आप जो है इस सहायता प्राप्त विद्यालय हो, इन सभी विद्यालयों में जो है इसको लागू किया गया है।
2: तो ये योजना के शुरुआत के बारे में बताएं कि एकर कैसे शुरुआत हुई है।
3: जैसे मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत वर्ष 1970-71 में हुई थी। शुरुआती दौर में बच्चों को पका भोजन की जगह दोपहर को गेहूं की भुनी दलिया दिया जाता था।
2: अच्छा,
3: उसको उबालकर भात के रूप में बच्चों को परोसा जाता था। इसे बच्चों के पौष्टिक आहार के रूप में पर्याप्त न समझकर केंद्र सरकार ने इसके स्थान पर 15 अगस्त 1995 से राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम प्रारंभ किया।
2: अच्छा,
3: इसके तहत मध्याह्न आहार भोजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत हर बच्चे को प्रतिमाह 3 किलोग्राम गेहूं अथवा चावल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया था। जिन बच्चों की उपस्थिति महीने में 80% होती थी, उन्हीं बच्चों को यह गेहूं चावल दिया जाता था।
2: अच्छा,
3: तो इस तरह से इसकी शुरुआत हुई है। और इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला भी आया है।
2: अच्छा,
3: और उस फैसले के आधार पर जो है इस योजना को पका पकाया भोजन के रूप में शुरू किया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने 28 नवंबर 2001 और 20 अप्रैल 2004 को एक आदेश पारित किया।
2: अच्छा,
3: और भारत सरकार को यह निर्देश दिया कि बच्चों को गेहूं चावल देने की बजाय दोपहर को पका पकाया भोजन दिलाया जाए। यह भोजन जो है विटामिन और प्रोटीन युक्त हो, और साल भर में कम से कम 200 दिन तक हर बच्चे को यह भोजन उपलब्ध कराया जाए।
2: अच्छा,
3: तो यह प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर दोनों स्तर पर जो है इसको लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भारत सरकार को दिया गया था।
2: अच्छा,
3: उसके बाद से यह 15 अगस्त 2004 से प्राथमिक विद्यालयों में और 1 सितंबर 2004 से तो जो ये बच्चों को पका पकाया भोजन प्राइमरी स्कूलों में दिया जाने लगा, उसके बाद जो है 17 सितंबर 2007 से ये उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी इसकी शुरुआत कर दी गई। तो इस तरह से यह विद्यालयों में पका पकाया भोजन दिया जाने लगा। माने इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2004 से शुरू हुई, लेकिन पका पकाया भोजन विद्यालयों में 1 सितंबर 2004 से प्राइमरी स्कूलों में और 17 सितंबर और 2007 से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इसकी शुरुआत हो गई।
2: अच्छा, तो जीवन आप पका पकावल भोजन के बात कहते हैं, एक पीछे का सरकार का या कहल जाओ कि जो सर्वोच्च न्यायालय का आप बात करते नहीं है, उकर का उद्देश्य रहे?
3: उद्देश्य इसका ये था कि जैसे बच्चे भूखे और कुपोषण के शिकार होते थे, आधा पेट भोजन करके विद्यालय आते थे और विद्यालय आने पर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, उनका पढ़ने में मन नहीं लगता था, इन चीजों को देख

0: करके उच्च सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया था कि पका पकाया भोजन दिया जाए, तो उसके तहत इससे इसका उद्देश्य यह था कि बच्चों को भूख और कुपोषण से बचाया जाए, ये भोजन दे करके हमको उनको हम इससे बचा सकते हैं। विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति शत प्रतिशत होगी, इससे भोजन मिलेगा तो बच्चे उसको देख करके विद्यालय में आएंगे, और शाला त्यागी जो ड्राप आउट बच्चे हैं जो विद्यालय छोड़ चुके हैं, विद्यालय नहीं आते हैं, और इस वजह से जब खाना भोजन अगर विद्यालय में मिलने लगेगा तो वो भी बच्चे आ जाएंगे, तो उनकी दर भी कम होगी।
1: अच्छा।
0: माने ड्राप आउट जो बच्चे हैं उनकी दर कम होगी,
1: माने कि स्कूल छोड़ चुका लो
0: वो भी आ जाएंगे। अब बच्चों को गुणवत्ता परक संतुलित पौष्टिक आहार भी मिलना शुरू हो जाएगा, और निर्बल वर्ग के बच्चे जो शिक्षा के प्रति रुचि उनकी उत्पन्न करने के लिए ये भोजन आवश्यक था, तो इससे भी हमको लाभ होगा। बच्चों के बीच जो छुआछूत ऊंच नीच की भावना है वह दूर होगी, क्योंकि सभी जात के बच्चे एक साथ बैठ करके भोजन करेंगे और इससे उनमें भाईचारा की भावना विकसित होगी, सामाजिक सौहार्द और भाईचारे की भावना भी जागृत होगी, और दिव्यांग बच्चों को भी विद्यालय में आकर भोजन मिलेगा और वह भी शिक्षा की मुख्य धारा से अपने को जोड़ पाएंगे। तो ये इसका उद्देश्य रहा। इस उद्देश्य को देख करके सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया था कि विद्यालयों में गेहूं और चावल की बजाय अब जो है पका पकाया भोजन दिया जाए।
1: अच्छा, एक मीनू के बारे में बताएं कि एमे भोजन में का बच्चा उनके दिहल जाला।
0: देखिए, मीनू बहुत ही सरकार ने ऐसा अच्छा बनाया है, पौष्टिक बनाया है कि अगर बच्चों को वह नियमित अगर दिया जा रहा है तो निश्चित रूप से उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा और उनकी बुद्धि विकसित होगी, तो इसलिए मानसिक रूप से वो स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और पढ़ने में उनका मन लगेगा। तो जो मेनू बनाया गया है उसमें सोमवार को रोटी और जो मौसमी सब्जी है उससे युक्त सोयाबीन और बरी का जो है मिला करके दाल बनाना है, सब्जी बनाना है, मैंने सब्जी युक्त दाल है वो बनाना है, ये सोमवार को देना है, और इसके साथ एक मौसम का फल देना है।
1: अच्छा।
0: 4 रुपये की दर से हर बच्चे के लिए पैसा आता है और 4 रुपया में एक फल उनको खरीद करके कोई खिला देना है।
1: अच्छा।
0: तो रोटी सब्जी हो गई, मौसमी सब्जी युक्त दाल रहेगी जिसमें सोयाबीन रहेगा और इसके बाद बरी रहेगी, और मंगलवार को चावल और मौसमी सब्जी युक्त दाल रहेगी, बुधवार को मौसमी सब्जी सोयाबीन बड़ी और मूंग की तहरी।
1: अच्छा।
0: माने कुल मिला करके मूंग की तहरी बना करके बच्चों को दिया जाएगा, और प्राथमिक स्तर पर 150 ml और उच्च प्राथमिक स्तर पर 200 ml इस भोजन के बाद उन्हें दूध भी दिया जाएगा, तो दूध भी वो लेंगे बच्चे।
1: अच्छा।
0: और गुरुवार को रोटी मौसमी सब्जी सोयाबीन फिर जो सोमवार को था वही गुरुवार को भी।
1: अच्छा।
0: दिया जाएगा। शुक्रवार को मौसमी सब्जी सोयाबीन बड़ी युक्त मूंग की तहरी दिया जाएगा, और शनिवार को चावल मौसमी सब्जी युक्त दाल दिया जाएगा।
1: जोन आप बच्चा लोगों के कहत रहनी है कि फल और दूध का जोन व्यवस्था है ओकर बारे में बताई कि ओकर कैसे व्यवस्था स्कूल,
0: जैसे सरकार ने प्रत्येक सोमवार को प्रति बच्चा 4 रुपया की दर से फल देने की व्यवस्था की है, इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, बच्चों को दिया जा रहा है। अब प्रत्येक बच्चों को प्राथमिक स्तर पर 150 ml और उच्च प्राथमिक स्तर पर 200 ml उनको दूध भी ये दिया जा रहा है, तो इस तरह से भोजन उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। अब देखिए, इसमें है भोजन की गुणवत्ता की बात, तो भोजन की गुणवत्ता में भोजन में प्राथमिक के बच्चों को प्रतिदिन प्रति डाइट 450 कैलोरी ऊर्जा वाला भोजन देना है।
1: अच्छा।
0: जिसमें 12 ग्राम प्रोटीन हो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, और उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को 700 कैलोरी प्रतिदिन उनको भोजन में देना है, और यह भोजन कैसा होना चाहिए, 10 ग्राम सोयाबीन होना चाहिए, 10 ग्राम दाल, 50 से 60 ग्राम सब्जी का होना उसमें अनिवार्य है। तो इस तरह से यह व्यवस्था की गई कि 450 कैलोरी प्राथमिक स्तर के बच्चों को और 700 कैलोरी जो है उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को यह भोजन युक्त देना है।
1: भोजन बदे जो धन उपलब्धता है उसके बारे में बताएं कि
0: देखिए उसके लिए कन्वर्जन कास्ट आती है, सरकार प्रत्येक विद्यालय में कन्वर्जन कास्ट जिससे परिवर्तन लागत भी बोलते हैं उसकी व्यवस्था की है, तो इसमें जो है तेल मसाला सब्जी दाल लकड़ी गैस यह खरीदने के लिए प्राथमिक स्तर पर प्रति बच्चा 6 रुपया 78 पैसा आता है, और वहीं उच्च प्राथमिक

0: पर प्रति बच्चा 10 रुपया 17 पैसे आता है।
1: अच्छा,
0: तो जितने बच्चे हैं उतना पैसा इसमें आ जाएगा, उसी में इनको ये भोजन की व्यवस्था की जाती है। और इसकी देखा ये जो है खाता ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापक का जो संयुक्त खाता होता है उसी में यह कन्वर्जन कास्ट आती है। और एक माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाचार्य और अभिभावक संघ के अध्यक्ष के संयुक्त खाते से आती है। जैसे 1 से 8 तक के बच्चों को ये व्यवस्था है, तो जो इंटर कॉलेज के स्कूल हैं उसमें 1 से 8 तक के बच्चों को भी भोजन दिया जाता है।
1: अच्छा,
0: हाँ, क्योंकि वह सरकारी हैं, एडेड विद्यालय हैं, तो इसलिए वहां पर भी इसकी व्यवस्था की गई है। जो खाद्यान्न इसमें आता है वह सरकारी गल्लों की दुकानों से ही लिया जाता है।
1: अच्छा, जो गांव में गल्ला का दुकान है सरकारी वाली, उसी से लिया जाता
0: है। उसी से लिया जाता
1: अच्छा,
0: है।
1: अच्छा, एक बर्तन वगैरह कहाँ से?
0: बर्तन खरीदने के लिए भी सरकार ने पैसा दिया है।
1: अच्छा,
0: इसके लिए प्रति बच्चा 1 थाली 1 गिलास खरीदने के लिए उपलब्ध कराया 113 रुपया 30 पैसे ये उपलब्ध कराया सरकार ने, और स्कूलों पर उसके माध्यम से लोग गिलास और थाली खरीदते हैं।
1: और रसोईया का क्या मानक है बच्चन बदे, एक बारे में बताएं।
0: हाँ, रसोईया का मानक यह है कि प्रत्येक विद्यालय में बच्चे के हिसाब से रसोइयों की नियुक्ति की गई है। जैसे 1 से 25 तक अगर बच्चे हैं तो 1 रसोईया रहेगी, और 26 से 100 बच्चों पर 2 रसोईयां, 101 से 200 बच्चों पर 3 रसोईयां, और 201 से लेकर 300 अगर बच्चे हैं तो 4 रसोईयां, और इसके बाद जो है 1000 बच्चों तक पर जो है 5 रसोईयां, 1001 से 1500 बच्चों पर 6 रसोईयां, 1501 से अगर ऊपर हैं तो 7 रसोईयां रखने की व्यवस्था है। और इन रसोईयों को प्रति माह 2000 रुपये मानदेय दिया जाता है। अब इसके बाद मिड डे मील प्राधिकरण लखनऊ द्वारा इसका अनुसरण भी किया जाता है प्रतिदिन।
1: अच्छा,
0: जैसे उसमें है कि प्रत्येक दिन विद्यालय के प्रधानाध्यापक से टेलीफोन द्वारा भोजन पकने, भोजन करने वाले बच्चों की संख्या और भोजन न बनने के कारण की जानकारी ली जाती है। प्राधिकरण प्रतिदिन फोन करके ये जानकारी लेता है। प्राधिकरण द्वारा अभिभावकों से भी फोन करके इसकी पूछताछ की जाती है। इसे सत्यापित किया जाता है कि वास्तव में भोजन बना या नहीं बना, कितने बच्चे खाए या नहीं खाए।
1: डॉक्टर साहब, आप तो बड़ा बढ़िया जानकारी देनी है हमारी किसान भैया लोग के। एक और बात बताइए हमारी किसान भैया लोग के, कहे से कि वो लोग ये भी जानल चाहेला लोग कि अगर ये पकवान बनावे में या कोनो प्रकार का लापरवाही होता है स्कूल प्रबंधन की तरफ से, तो इमे का दंड का व्यवस्था है और कैसे वो लोग एक शिकायत कर सके, एक बारे में तनी बताइए।
0: देखिये, सरकार ने 7 सितंबर 2009 को एक शासनादेश जारी किया था, उसमें विद्यालय पर लगातार 3 दिन तक भोजन नहीं बनेगा तो वहां के प्रधानाध्यापक एवं ग्राम प्रधान, और अगर इंटर कॉलेज का स्कूल है तो प्रधानाचार्य एवं अभिभावक संघ के अध्यक्ष के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी अगर लगातार 3 दिन भोजन नहीं बना तो। हाँ, तो उसका कारण बताना होगा, अगर कारण उचित नहीं है तो उनके खिलाफ जो है यह कार्रवाई विभागीय कार्रवाई होगी, जो मानक में निर्धारित है उसके अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी
1: डॉक्टर साहब, हम चलत चलत एक बार और आपसे ये आग्रह करब कि ये जो मध्याह्न भोजन योजना है, जोना के पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना कहल जात है, एकरी उपयोगिता के बारे में एक बार फिर हमारी किसान भैरों के तनी दोहरा के बता दी।
0: देखिए, इसमें है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह देख करके ही निर्धारित किया था कि पका पकाया भोजन अगर बच्चों को दिया जाएगा तो वह कुपोषण से उनका बचाव होगा, वो खाली पेट जो आते हैं विद्यालय में उनका पेट भरा रहेगा, इसलिए उनका पढ़ने में भी मन लगेगा। तो एक तो ये हुआ कि भूखे पेट विद्यालय आने वाले बच्चों का भर पेट भरेगा पेट, और उनको पौष्टिक भोजन भी मिलेगा, बच्चों को कुपोषण का शिकार होने से बचाया जाएगा, बच्चों के बीच छुआछूत ऊंच नीच की भावना खत्म होगी, विद्यालय में सामाजिक सौहार्द और समानता कायम होगी, विद्यालय में 100% हमारा नामांकन बढ़ेगा, उपस्थिति बरकरार रहेगी, जो विद्यालय को छोड़ करके बच्चे चले गए हैं नहीं आ रहे हैं वो भी आने लगेंगे, अपवंचित वर्ग असहाय फुटपाथों पर गुजर बसर करने वाले खाना बदोश की जिंदगी जीवाने वाले परिवार के बच्चों को विद्यालय से जोड़कर शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने में मदद मिलेगी, दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों के बीच लाकर उनके अंदर जो बनी हीन भावना है उसको समाप्त किया जा सकता है, पौष्टिक भोजन देकर बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास करने या उन्हें स्वस्थ रखने में मदद हमें मिलेगी, और सर्व शिक्षा अभियान के 100% नामांकन ठहरा और संप्राप्ति के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो इस तरह से जो है मध्याह्न भोजन योजना 100% विद्यालय

0: में लागू है और उसका लाभ बच्चे अभिभावक उठा रहे हैं। जी
1: तो डॉक्टर राम अवतार सिंह यादव जी, आप हमने लोन के कार्यक्रम कृषि जगत में एनी और हमारी किसान भी लोन के इतना नीक जानकारी देनी, एकरा बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बुझावन भैया,
3: हाँ जीतन भैया,
2: और देखा हो बड़ा नगद के बतकही रहल है, डॉक्टर राम अवतार सिंह यादव से बतीना अपन सतीश कुमार यादव भैया फरिया फरिया को पूछना है एकदम।
3: अच्छा ये जीतन भैया देखला
2: हाँ
3: कितना बढ़िया नीक जानकारी दिलन हमारे डॉक्टर साहब, जिसे कहलन कि मध्याह्न भोजन योजना यानी प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना जौन बा, शिक्षा सरकार देते बा बच्चन के और शिक्षा के साथे साथे भोजन के भी व्यवस्था सरकार कैली है, कितना बढ़िया बात है वो। आ एक विषय में जानकारी सतीश कुमार यादव कितना बढ़िया बढ़िया पूछना है और बताना है।
2: अब बहुत बढ़िया बतकही तो देखा होगा, लेकिन जब तक अपने पंचायती में देखा ना मन मनसायन ना होत ना भैया, तो
3: हाँ तो हम
2: आनंद नहीं आवत।
3: बुझत रही है।
2: यही से नाम तुहार बुझावन हो, हम
3: हाँ
2: समझाती।
3: हम समझत हई कि तुहार मन हो कि अब मरमैसान हो जाए, तो आज मरमैसान में का करावत हुआ हो जीतन भैया।
2: देखा हो मन मनसायन में जोन हो सुनील कुमार यादव का ये किसानी गीत हो, तो हूँ सुना किसान भाई भी सुना।
3: बिल्कुल सुनवाओ भैया।

0: वो जावन भैया,
1: हाँ जीतन भैया,
0: अब बड़ा देखा नगद का गौ नहीं रहल है।
1: ये देखा भैया, हमन के पंचायती में हो जीतन भैया,
0: हाँ
1: किसानी गीत हो, देशभक्ति गीत हो, चाहे खेती किसानी का गीत हो, अगर ये ना होला ना तो जैसे लगल है कि हमन के पंचायती बड़ी नीरस लगेले।
0: नीरस
1: आ एक
0: लगला।
1: चीज़ और जानत का,
0: हाँ बुझाओ भैया।
1: ऐसा में कि जब हमन के पंचायती में जब गीत गौनाई होले और ढोल मजीरा हारमोनिया जब बज जाले ना, तो माना
0: हाँ।
1: कि हमारे कृषि जगत के कार्यक्रम में मजा आएगा।
0: मजा आ गल हो। और हम आपसे कहब कि देखा कल के कार्यक्रम के बारे में भी बता देवल जा। देखा
1: बिल्कुल बता दा हो जीतन भैया।
0: देखा बिहानी बिहानी सवेरे जौन हो 6:05 पर खेती के बाद जौन होला, एमन देखा मूंग की खेती के बारे में बताओ हैं अपने दिनेश कुमार सिंह भैया।
1: बिल्कुल बढ़िया भैया। दूसरी चीज़ ये है कि भैया, अब समय बेला भी तो होता चले का,
0: हाँ
1: आई चीज़ और जानते हो, गर्मी बहुत हो जितन भैया,
0: भैया
1: तो
0: देखा।
1: बर्तन की बड़ी सावधानी से रहे की जरूरत बा।
0: हाँ देखा सावधानी की बात कही था अपना ना अपने
1: हाँ
0: पास पुरानी अनबोलता चौगा जो बनले हुआ ना उन्होंने के समझा के नहावा।
1: अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात को कहला है कि मतलब अपन ही चक्कर में मत पड़ रहा है,
0: हाँ
1: हमारे जौन पशु बाण भैया उनकर भी ध्यान दा,
0: हाँ
1: समय से उनके पानी दा,
0: हाँ
1: साँव जी के
0: हाँ
1: उनके नहवावा, आ साथे साथे जो उन्हें समय नर्सरी धानी के बिया पड़ल हो भैया, वो में समय से पानी दे।
0: अरे बुझाओन भैया हम तो कहें कि देखा भैया जाएगा बेला होगल तो 5 लोगों से आज्ञा लेवल जा
1: बिल्कुल लेवल
0: तो
1: जा भैया,
0: पंचो
1: जो
0: राम
1: राम राम।
0: राम।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पहला गीत है फिल्म खुदगर्ज से, आवाजें मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की, शब्द रचना फारूक कैसर का और संगीत सवारा है राजेश रोशन ने।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म इम्तिहान से, आवाज़ कुमार सानू की, शब्द रचना है फैज अनवर का और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 7:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार सुरेश प्रजापति पुत्र पन्ना प्रजापति, जो बियरही भरतपुर डाक भुइली खास थाना जमालपुर चुनार जनपद मिर्जापुर के रहने वाले हैं, ये दिनांक 8 मई 2026 की रात्रि से लापता हैं। सुरेश प्रजापति के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 38 वर्ष, रंग गेहुआ, कद लगभग 5 फीट 3 इंच, इकहरा मजबूत बदन, चेहरा लंबा, आंखें व बाल काले हैं। ये लापता होने के समय भूरे रंग का टी शर्ट और नीला लोअर पहने थे। सुरेश प्रजापति के बारे में जिस किसी सज्जन को जानकारी हो, कृपया अपने नज़दीकी थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर को सूचित करें। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त एक अन्य सूचना के अनुसार साधना देवी पुत्री किशन गौण, जो ग्राम जमुआ बाजार पोस्ट जमुआ थाना कछवा जिला मिर्जापुर की रहने वाली हैं, ये दिनांक 12 मई 2026 दिन मंगलवार को रात्रि 12:30 से अपने मायके जमुआ बाजार से कहीं लापता हैं। साधना देवी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 40 वर्ष, रंग सांवला, लंबाई 5 फीट, दोहरा बदन, चेहरा लंबा, बाल व आंखें काली, ये लापता होने के समय लाल रंग की साड़ी पहनी थी। साधना देवी के बारे में जिस किसी सज्जन को जानकारी हो, वो अपने निकटवर्ती थाने या कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर को सूचित करें।

वाराणसी के रहने वाले हैं। ये दिनांक 9 मार्च सन 2026 से कहीं लापता हैं। धीरज कुमार के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 40 वर्ष, लगभग लंबाई 5 फुट 7 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा सामान्य, सिल्की बाल, आंखें सामान्य हैं। ये लापता होने के समय सफ़ेद शर्ट व काला पैंट पहने थे। धीरज कुमार के बारे में जिस किसी की जानकारी हो कृपया वो अपने निकटवर्ती थाने या थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप शाम 7:20 पर सुनेंगे, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। हमारा अगला कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: दी ये देख कैसे
1: हैप्पी बर्थडे भाई
0: दिखा हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग
2: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है
4: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
2: आई नो ना
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
6: महात्मा गांधी ने कहा था स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं गिर जाएं लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
7: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अयोध्या के श्री राम मंदिर के दान में हेराफेरी के 8 आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीलीभीत में 569 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र किए प्रदान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से दी छूट। और प्रदेश में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल, कल से राज्य के कई हिस्सों में शुरू हो सकता है बारिश का सिलसिला। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में श्री राम मंदिर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तार किए गए 8 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है। मामले की सुनवाई आज अयोध्या जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा की अदालत में हुई। सभी आरोपियों की पेशी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की रिमांड की मांग नहीं की है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। वहीं उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि सरकार पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कर रही है।
8: पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई करे, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी।
7: इस मामले को लेकर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने ऐलान किया है कि उसका कोई भी अधिवक्ता इस मामले में नामजद आरोपियों की ओर से पैरवी नहीं करेगा। अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा कि बार एसोसिएशन मामले की CBI की जांच की मांग भी करेगा।
9: हमारे अधिवक्ता संघ अयोध्या का कोई भी अधिवक्ता ये राम जन्मभूमि चोरी के अभियुक्तों की डिफेंस की ओर से वकालत नहीं करेगा।

0: वकालत करने के वकालत नामा दाखिल करने, अब चूंकि भीड़ है तो इस करने पर प्रत्येक नाम पर प्रमोशन स्वरूप अधिवक्ता संघ को वो 5 लाख रुपए प्रत्येक नाम से वो जमा करेगा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शील नागो की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में आज 569 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश से विस्थापित होकर आए परिवारों को सरकार ने जमीन का मालिकाना हक देकर न सिर्फ उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है बल्कि विरासत को भी संरक्षित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पीलीभीत समेत प्रदेश के सभी जनपदों के विकास को गति देने के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है।
2: आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक हब बन रहा है यूपी। अब यूपी के अंदर विकास हो रहा है। एक इकोनॉमिक कॉरिडोर इसी पीलीभीत से होते हुए जा रही है शामली के लिए, गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक जाएगी। जितने अच्छे मार्ग बनेंगे, जितनी कनेक्टिविटी में गति होगी, उतनी ही तेज प्रगति होगी।
1: कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश सरकार की जनहितकारी नीतियों और सुशासन के चलते पीलीभीत का कायाकल्प हो रहा है।
3: आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, कानून व्यवस्था और विकास की एक नई गाथा प्रदेश में लिखी गई। प्राथमिकता पे पीलीभीत में सभी योजनाएं
1: पीलीभीत के बाद मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद में दानवीर भामाशाह की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में 365 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। साथ ही लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा भी की। प्रदेश सरकार ने ई पंजीकरण मॉड्यूल के संबंध में जारी अपने पिछले आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। स्टाम्प और न्यायालय शुल्क और पंजीकरण विभाग के राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने बताया कि ये निर्णय अधिवक्ताओं और डीड राइटर की चिंताओं और हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
4: स्टाम्प विभाग का एक शासनादेश ऑनलाइन रजिस्ट्री की विभाग की तरफ से एक नवाचार करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें जीव जारी किए गए 4/6/2026 को इस जियो में थोड़ी सी क्रिएटिव न होने के कारण से एक भ्रम किस्ती बन गई। कई जगह अधिवक्ता, कई जगह डेट राइटर को एक भ्रम हो गया कि साथ हमारा रोजगार छीना जा रहा है, और इस भ्रम को हम लोग को बाहर निकालने के लिए अभी फिलहाल 4/6/2026 का जो आया था जियो उसको हम निरस्त करते हैं।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि 7वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के दूसरे दिन देशभर से आए ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ व्यापक मंथन किया। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने लखपति दीदी डैशबोर्ड और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए शी लीप्स डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारम्भ भी किया। इस आयोजन में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी योजना देश भर में लागू होगी, जो मनरेगा की जगह लेगी। इसके लिए 95,682 करोड़ की अंतरिम राशि स्वीकृति दी जा चुकी है। उन्होंने राज्यों से अपील की कि वे समय पर

अपनी औपचारिकताएं पूरी करें ताकि योजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार केन्द्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी और पारदर्शी ढंग से लागू करते हुए ग्रामीण विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। कार्यक्रम में डिजाइन प्रतियोगिता में प्रदेश के अभय गुप्ता और झील गौतम को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया।

0: के लिए सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कल से यूपी टीईटी 2026 के एडमिट कार्ड जारी करेगा। एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। ये परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को होगी। इस परीक्षा के लिए लगभग 15,99,000 से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। जौनपुर के युवा भाला फेंक खिलाड़ी रोहित यादव ने भुवनेश्वर में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इंटरस्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप में रोहित ने 87.05 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। रोहित यादव के भाई राहुल ने कहा कि ये उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ थ्रो था। उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स के लिए चुने जाने पर उनके पूरे गांव में खुशी का माहौल है।
1: इस वाले गेम में क्वालिफाई मार्क था 77 पॉइंट कुछ था एशियन गेम्स के लिए, और वहाँ अपना पर्सनल बेस्ट थ्रो करके 87.05 किए और एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई भी किए हैं, जिसमें दो लोग जाते हैं। वहाँ एक नीरज चोपड़ा, उनका ऑलरेडी क्वालिफाई हुआ था डायमंड लीग से, 85 पॉइंट कुछ किए थे, और यहाँ से रोहित यादव, दो लोग जाएंगे एशियन गेम्स। हम तो खुश है, पूरा परिवार पहले से इंतजार कर रहा था कि हाँ अच्छा हो, अच्छा हुआ, पूरा गाँव खुश है इस चीज से, क्योंकि काफी मेहनत किए थे उसके पीछे।
0: राजधानी लखनऊ और आसपास के जनपदों में बीते 24 घंटों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आगामी 2 दिनों में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। विभाग ने कल राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ भारी वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर के दान में हेराफेरी के 8 आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीलीभीत में 569 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र किए प्रदान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से दी छूट। और प्रदेश में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल, कल से राज्य के कई हिस्सों में शुरू हो सकता है बारिश का सिलसिला। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: बड़ी बहू,
3: ये तुम्हारे नाम।
2: इतनी भी क्या जल्दी थी?
3: अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम।
2: और ये मेरी गुड़िया के नाम।
4: पर दादी, आपके नाम?
5: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
3: शुभ शुभ बोलो।
4: क्या
5: RBI कहता है?
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 7:31 और 12 सेकंड स्टूडियो की घड़ी में हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम में पहला गीत है फिल्म फूल और पत्थर से, आवाज आशा भोसले की, गीतकार शकील बदायूनी और संगीत सवारा है रवि ने।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म धड़कन से, आवाज़ लता मंगेशकर की, गीतकार प्रेम धवन और संगीत से संवारा है रवि ने।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म लोफर से, आवाज़ महेंद्र कपूर की और गीतकार आनंद बख्शी तथा संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम में अगला गीत है महेंद्र कपूर की, मन्ना डे की आवाज़ में, फिल्म तूफान और दिया से। गीतकार भरत व्यास और संगीत से संवारा है वसंत देसाई ने।

अभी आपने सुना मन्ना डे की आवाज़ में फिल्म तूफान और दिया से ये गीत। अगला गीत है फिल्म याराना से, आवाज़ किशोर कुमार की, गीतकार अनजान और संगीत से संवारा है राजेश रोशन ने।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म आपकी परछाइया से, आवाज आशा भोसले की, गीतकार राजा मेहंदी अली खान और संगीत से संवारा है मदन मोहन ने।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम रसरंग यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं देवेंद्र दास।
1: गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यह प्रसिद्ध साखी कबीर साहब की है। कबीर साहब काशी में रहते थे और काशी में पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेटकर उन्होंने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाया था। गुरु बनाने के बाद उनके जीवन में जो क्रांतिकारी बदलाव आया, जो परिवर्तन आया, उसको उन्होंने शब्द के माध्यम से व्यक्त किया। वे अपने गुरु को वंदन करते हुए कहते हैं,

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कबीर के भजन को स्वर दिया है आज के कलाकार देवेंद्र दास ने। कार्यक्रम में आज के कलाकार देवेंद्र दास, गौरव मिश्रा और डॉक्टर भागीरथी हैं।
1: साहब को कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। उन्होंने जो कुछ भी कहा अपने अनुभव से कहा, स्वानुभूत ज्ञान से कहा। कबीर साहब ने साखी सबद रमैनी कहा। साखी के विषय में वो कहते हैं, साखी आखी ज्ञान की, समझ देख मन माही, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नाही। साखी का मतलब है साक्षी, और साक्षी का मतलब है जो हमारे हर कार्यों को देखता है। बिना साक्षी के हमारे जीवन की आध्यात्मिक लड़ाई पूरी नहीं होती। कबीर साहब ने इसीलिए कहा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे शव घड़ा, ऋतु आए फल होए।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत।
1: कबीर साहब ने अपने जीवन में अनेक यात्राएं की थी, पूरे देश का भ्रमण किया, और जिस तत्व की खोज हम सब करते हैं उन्होंने भी खोजा। और अंत में वो कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हम ईश्वर को हर जगह ढूंढते हैं लेकिन अपने अंदर खोजने की कोशिश नहीं करते। कबीर साहब हमें संदेश देते हैं कि अगर हम अपने अंदर उस परमात्मा को खोजने का प्रयास करेंगे तो एक न एक दिन जरूर वे हमें मिल जाएंगे। बस जरूरत है तो खोजी होने की। कबीर अपने शब्द में हमें खोजी बनाने का संदेश देते हैं।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में कबीर दास के भजन आप सुन रहे हैं।
1: अपने शब्द के माध्यम से हम सबको उपदेश करते हैं। ये जो हमारा शरीर है, पांच तत्व का बना है और एक तरह से पिंजड़ा ही है, और इस पिंजड़ा में रहने वाली जो पक्षी है जिसे हम जीवन तत्व कहते हैं, पिंजड़े में रहने के कारण वो अपने को बहुत ही सीमित मानती है, बंधन में मानती है। वस्तुतः है वो इस विशाल ब्रह्मांड का ही एक अंश, लेकिन अज्ञानता के कारण उसे स्वयं का बोध नहीं होता। कबीर साहब कहते हैं कि ये पंछी मुनिया पिंजड़े वाली तेरे सद्गुरु व्यापारी हैं। अगर कोई गुरु तुझे मिल जाए तो इस पिंजड़े से कैसे उड़ना है, इस पिंजड़े से कैसे मुक्त होना है, उसका वो भेद बता देंगे और तुम मुक्त होकर इस ब्रह्मांड में विचरण करोगी।

स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:20 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम रस माधुरी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम रस माधुरी। कार्यक्रम में पहला गीत है फिल्म गोपी से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

कबीर के इस भजन के साथ आज का सुगम संगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज के कलाकार थे देवेंद्र दास, गौरव मिश्रा और डॉक्टर भागीरथी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

कार्यक्रम में मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म प्यार किया तो डरना कैसे अगला गीत सुनिए। गीतकार शकील बदायूनी और संगीत से संवारा है रवि ने।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म पत्थर के सनम से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रस माधुरी। कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म मेरा साया से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की। गीतकार राजा मेहंदी अली खान और संगीत से संवारा है मदन मोहन ने।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम रसमाधुरी यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की।

राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधान

0: आरी जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मॉनसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकट के क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हो। नई दिल्ली में आयोजित दो दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से 0 उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
4: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
5: जिसमें हमने खरीद से प्रोत्साहन दिया है, ट्रैकिंग से प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स को रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
4: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर

0: इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई बढ़ेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर 94.54 रुपए पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: the ceremony in Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Modi says 50-year-old partnership with Seychelles will now advance through innovation, sustainability and shared prosperity. Cabinet approves additional investment of 30,000 crore rupees in National Investment and Infrastructure Fund. West Bengal Assembly passes Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill to curb anti-social activities. IMD issues orange alert for very heavy rainfall in parts of Northeast, Sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Goa, Maharashtra, Karnataka and Kerala tomorrow. And Indian women's cricket team earns one of the first berths for 2028 Olympics. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा दिफाई एजाजात की तकरीब में बहादुरी के एजाजात अता किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशल्स के साथ 50 साल पुरानी शराकतदारी अब जिद्दत तराजी, पायदार तरक्की और मुश्तरका खुशहाली के जरिए मजीद मुस्तहकम होगी। वजीर आजम सेशल्स का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। मरकजी काबीना ने मुल्क में बुनियादी ढांचे की तरक्की में तेजी लाने की खातिर सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे से मुतालिक कौमी फंड NIIF में 30,000 करोड़ रुपये

0: एहतियाती तौर पर ज्यादा से ज्यादा 12 माह तक हिरासत में रखा जा सकता है। हुकूमत के मुताबिक इस कानून का मकसद समाज दुश्मन अनासिर की सरगर्मियों पर काबू पाना, उन्हें सख्त सजा देना और उनकी साजिशी मनसूबाबंदी को नाकाम बनाना है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में हरियाणा और राजस्थान की हुकूमत ने आज नई दिल्ली में जमुना आबी प्रोजेक्ट की तामीर और उस पर अमल दरामद के लिए एक मफाहमत नामे पर दस्तखत किए। इस मौके पर बात करते हुए जनाब शाह ने कहा कि इस मफाहमत नामे से हरियाणा और राजस्थान के लोगों को तकरीबन 3 दहाइयों से दरपेश पानी के मसले का हल हो गया है। उन्होंने कहा कि ये मुआहिदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उसूल मुजाकिरात के जरिए हल की एक बेहतरीन मिसाल है। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि इस मुआहिदे के तहत अगले माह से अक्टूबर तक 3 जेर-ए-जमीन पाइपलाइंस के जरिए यमुना कनाल से राजस्थान को तकरीबन 580 मिलियन क्यूबिक पानी मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन पाइपलाइन से दोनों रियासतों के आवाम को पीने का पानी मुहैया हो सकेगा। इस दौरान जल शक्ति के वजीर सीआर पाटिल ने कहा कि इस मुआहिदे के तहत मानसून के मौसम में राजस्थान के हिस्से का पानी हथनी कुंड बैराज से वेस्टर्न यमुना कनाल के निजाम के रास्ते बिछाई गई जेरे जमीन पाइपलाइन के जरिए फराहम किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनी कुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू सीकर झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: दिल्ली काबीना ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। अगले महीने की पहली तारीख से शुरू होने वाले 4 साला मरहलेवार रोल आउट के लिए मुकर्रर कसीर जहती फ्रेमवर्क 31 मार्च 2030 तक कौमी दारुल हुकूमत को मुकम्मल तौर पर कार्बन के सिफर इखराज की तरफ मुंतकिल करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के बड़े मालियाती अखराजात का अहद करता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में स्ट्रेटेजिक तहकीक और तरक्याती प्रोजेक्टों की कारकर्दगी, जवाबदेही और बरवक्त अमलावरी के लिए DRDO DFP 2026 को मालियाती इख्तियारात का एक वफ़ जारी किया। इस मौके पर जनाब सिंह ने कहा कि DFP 2026 दिफाई अफवाज में तहकीक और तरक्की के एक निज़ाम से निकलने वाले निज़ाम और उभरती हुई टेक्नोलॉजी की तेज तर पैदावार और शमूलियत में सहूलत फराहम करेगा। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि हुकूमत ने बुनियादी, सानवी और तीसरे दर्जे के तिब्बी सहूलती मराकज में तौसी करके मुल्क के सेहत निजाम को नुमाया तौर पर मजबूत किया है। नई दिल्ली में सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी कौंसिल की 16वीं कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि शहरियों और सेहत निजाम के दरमियान राबते के पहले मरकज के तौर पर मुल्क भर में 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर कायम किए जा चुके हैं। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल बरतानिया का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद यूनान के एथेंस में एक आला सतही भारतीय कारोबारी वफ्द की क्यादत कर रहे हैं। जनाब गोयल ने आज यूनान के तरक्यात के वजीर टाकिस थियोडोरी काकोस से मुलाकात की। जनाब गोयल ने कहा कि उन्होंने वसी तर तजारत, सरमाकारी, सनती तावुन और लचकदार सप्लाई चेन्स के जरिए भारत यूनान इकतसादी शराकतदारी को मजबूत करने पर तबादले ख्याल किया। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर फौजी हमले को आर्जी तौर पर रोकने और आबनाए हुरमुस से तजारती बहरी जहाजों की आमदोरफ्त दोबारा शुरू करने पर इतफाक किया है। इस दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुजाकिरात का एक नया दौर कल कतर की राजधानी दोहा में होगा। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि ईरान ने मीटिंग की दरख्वास्त की थी और ये मीटिंग दोहा में होगी, ताहम उन्होंने मुजाकिरात के एजेंडे या दोनों ममालिक की नुमाइंदगी की सतह के बारे में मजीद तफसीलात फराहम नहीं की। ऑपरेशन एमिस्टेड के तहत जलजले के मुतासिर वेनेजुएला में तैनात भारतीय फौज का फील्ड अस्पताल मुकम्मल तौर पर फाल हो गया है। ये वेनेजुएला के

लोगों को 24 घंटे मुफ्त तिब्बी खिदमात फराहम कर रहा है। वेनेजुएला में भारतीय सिफारतखाने ने कहा कि तजुर्बेकार डॉक्टरों पर मुश्तमिल भारतीय तिब्बी टीम ने कराकस में इंटरनेशनल ला रिंकोना डा रेस्ट्रेक पर एक कैंप कायम किया है। उसने कहा कि मेडिकल कैंप अब मुकम्मल तौर पर काम कर रहा है और खिदमात 24 घंटे खुली रहती हैं। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल बिहार कोंकण गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक केरला और माहे में कल शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक अगले दो रोज के दौरान उड़ीसा झारखंड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश विदर्भ छत्तीसगढ़ तेलंगाना तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकल में भी शदीद बारिश होने का इम्कान है। भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाली पहली टीमों में शामिल हो गई है। ताहम मर्दों की टीम को बराह रास्त क्वालिफाई करने के लिए रवा साल के अख्ताम तक ICC की मर्दों की T20 की रैंकिंग में एशिया की सबसे आला दर्जे की टीम बनना होगा। बैन अलाक्वामी क्रिकेट काउंसिल ने इस बात की तस्दीक की है कि भारत ऑस्ट्रेलिया बरतानिया और जुनूबी अफ्रीका ने लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों में खवातीन T20 मुकाबलों में अपनी जगह यकीनी बना ली है। US ओपन बैडमिंटन में भारतीय सरकर्दा खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में चीनी ताइपे के सूली यांग से हार गए और उन्हें चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। इस हार में BWF के खिताब के लिए श्रीकांत के इंतजार को और बढ़ा दिया है क्योंकि उन्होंने 2017 में BWF सुपर सीरीज के दौरान फ्रेंच ओपन में अपना आखिरी बैन अलाक्वामी खिताब जीता था। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर।

0: आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का कार्यक्रम अंजुमन। कार्यक्रम में अगली आवाज़ है सोनू निगम की।
1: जा नहीं सकता, तमाम उम्र मैं तुझको भुला नहीं सकता।

सफर मेरी दीवानगी तू ही तो है। काश तुझे खबर होती ये जिंदगी तुझ बिन हर लम्हा मुझे तड़पाती है। मैं क्या करूं जिंदगी से भागकर कहां जाऊं तेरा पता भी तो नहीं।

अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का कार्यक्रम अंजुमन। आज के कलाकार थे तलत महमूद, अनुराधा पौडवाल, बाबला मेहता, बाबुल सुप्रियो, अल्ताफ रजा और सोनू निगम। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 10 बज रहा है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पहला गीत है फिल्म वंदना से, आवाज लता मंगेशकर की। गीतकार असद भोपाली और संगीतकार रवि।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म जंजीर से, आवाज़ लता मंगेशकर की, गीतकार गुलशन बावरा और संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म सांझ और सवेरा से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, गीतकार हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म मेहरबान से, आवाज मोहम्मद रफी की, गीतकार राजेंद्र कृष्ण और संगीत से संवारा है रवि ने।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म दिल एक मंदिर से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, गीतकार शैलेंद्र और संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने। शंकर जयकिशन के संगीत में सुनिए ये गीत।

अगला गीत है फिल्म जीने की राह से, आवाज़ें आशा भोसले, उषा मंगेशकर की, गीतकार आनंद बख्शी और संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म एक हसीना दो दीवाने से है। आवाज़ें मुकेश की और लता मंगेशकर की, काफिल अजहर का बोल और संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यही आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 और 15 सेकंड हो रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है उस्ताद जाकिर हुसैन का राग तीन ताल में एकल तबला वादन। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं उस्ताद सुल्तान खां।

अभी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद जाकिर हुसैन का राग तीन ताल में एकल तबला वादन सुन रहे थे। ये आपके साथ सारंगी पर संगत किए थे उस्ताद सुल्तान खान।

खान। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमेरिका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने

0: Olympic Games. The International Cricket Council today confirmed that India alongside Australia, Great Britain and South Africa have booked their places in the Women's T20 competition. And that's the end of the news.
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स, वेब्स ओटीटी और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10:20 हो रहे हैं। संपन्न होती हमारी ये सभा कल प्रातः 5:53 पर। पहली सभा के कार्यक्रमों के संग हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। जय हिंद।